0: बात करते हैं अपने
1: बी
0: ओके
1: जैसे आपको ईश्वर ने बनाया वैसे आप रहो, यानी अपना स्वभाव जिसके साथ आप पैदा हुए हो उस स्वभाव में कोई भी गलत रंग नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे इफ यू आर काइंड हार्टेड
0: जी
1: आप दयालु हो स्वभाव से, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं आप ऐसे हो इसलिए छले जाते हो, लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हर एक इंसान को ईश्वर किसी खास वजूद से बनाता है और सबका ही अलग अलग ध्येय होता है लाइफ में। अगर वो समझ में आ जाए जल्दी तो बहुत ही बढ़िया, और अगर ना आए तो जब आप तैयार हो जाते हो तो कोई ना कोई गुरु रूप में आ ही जाता है आपको समझाने के लिए कि आप किस चीज के लिए बने हो। तो अध्यात्म इस अपने आप से जुड़े रहना एट ऑल टाइम्स।
0: बहुत खूबसूरत।
1: और हाँ
0: जी बोलिए।
1: हमारा विचार ये है कि हम मनुष्य हैं और सत्य की खोज में हैं, है ना
0: जी,
1: लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम ही वो सत्य हैं और मानवता में हमने अपने आप को खो दिया है, वो सच्चाई है।
0: ओके ऑलराइट मैम, अगर इस बात को मैं थोड़ा सा आपसे और प्रार्थना करूं समझाने के लिए कि
1: जी.
0: आपने कहा हम मानव हैं और थोड़ा सा हम खो गए हैं, थोड़ा सा हम शायद भटक गए हैं, ऐसा क्यों कहा मैम आपने? मतलब हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं या शायद हमारा ध्यान कुछ ज्यादा ही मटेरियलिस्टिक चीजों में उलझ गया है, मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं इस बात को?
1: जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, पहले ही अध्याय में कहा कि हमको दो चीजों ने जकड़ के रखा है इस संसार में, एक तो शोक दूसरा मोह
0: जी,
1: सौरो एंड डिल्यूजन। सौरोस तो तरह तरह के हमारे शोक होते हैं, है ना, कोई चीज गुम गई या किसी से लड़ाई हो गई या किसी से हमने बात की और उसने सही जवाब नहीं दिया, ऐसे शोकों की मतलब कतार बनी रहती है रोज रोजमर्रा की जिंदगी में भी, और हम उससे उभर नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है, हम अंदर से आनंद रूप हैं, वो हम समझ ही नहीं पाते हैं, हम बहुत दूर आ गए हैं इन सब में उलझते उलझते उलझते, इसलिए कहा कि मानवता में हम भटक गए हैं। और मोह किस चीज का, पहले तो ये गलत फहमी है कि ये थोड़ी टेक्निकल बात है लेकिन बताना जरूरी है
0: जी,
1: कि
0: जी।
1: हम अपने आप को सीमित कर देते हैं कि ये जो शरीर है जिसका नाम मीना है,

0: ये मैं हूँ,
1: जी
0: लेकिन हम सिर्फ इतना नहीं है,
1: जी
0: एक्चुअली पूरा कॉस्मोस हम ही हैं।
1: क्या बात है,
0: हाँ,
1: बहुत
0: ये
1: सुंदर।
0: बेसिकली वेदांत में यही समझाया जाता है कि आप जिसके पीछे भाग रहे हो या जिसे ढूंढने में लगे हो, वो आप खुद हो।
1: बहुत खूब, बहुत सुंदर। मुझे मुझे ठीक से याद आ रहा है मीना मैम, कुछ समय गुजरा मैंने रोंडा ब्राइन की वो बुक पढ़ी थी द सीक्रेट, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और मैनिफेस्टेशन वगैरह के बारे में बोला गया है। तो उसमें एक जगह पर समझाया गया कि हमारा शरीर जो है वो एनर्जी से बना है, कोई भी एक छोटे से छोटा कण इस प्रकृति में एनर्जी से बना है, और एनर्जी ना कभी डिस्ट्रॉय की जा सकती है ना दोबारा बनाई जा सकती है, ये हमेशा है, हमेशा से थी और हमेशा रहेगी।
0: बिल्कुल।
1: अब हमारे शरीर का कोई एक छोटा सा बायोलॉजिकल सेल भी एनर्जी ही है, और ये पूरी दुनिया एनर्जी से बनी है। तो उसमें ये बोला गया, तो फिर हम इस पूरी दुनिया से अलग कैसे हुए? अलग हैं ही नहीं हम, हम भी वही एनर्जी हैं, प्रकृति भी वही
0: बिल्कुल।
1: एनर्जी है। तो हम किस धोखे में जीते हैं कि मैं ही मैं हूं, मेरा अपना स्वार्थ, मेरा अपना पाना। आपने जो बात कही वो थोड़ी थोड़ी मुझे यहां से मैच होती हुई दिख रही है। मतलब उन्होंने शायद थोड़ा से अलग तरीके से इस बात को कहा,
0: जी हाँ
1: लेकिन आपने इस बात को वेदांता के हिसाब से समझाया।
0: जी

0: इसी की कहानी है, ना हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। अब आपसे ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैम, आपने
1: हाँ जी
0: बहुत प्यारी प्रबुद्ध जिंदगी जी है, तो आपको अध्यात्म के बारे में सबसे पहले कब पता चला, किसने बताया?
1: किसी ने बताया तो नहीं, लेकिन जहां तक मुझे याद है
0: जी,
1: करीब 4 साल की उम्र से ही अगर कहीं कई भगवत कथा हो रही है या कहीं कोई संत आए हैं तो मैं बड़ी खींचती चली जाती थी उसकी ओर कि नहीं मुझे जाना है, और वो जो भी बोलते थे कुछ समझ में आता था कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं बहुत प्रभावित होती थी कि ये कितना मतलब साफ सुथरी बातें करते हैं और उनमें कोई इमोशनल अप्स एंड डाउन्स नहीं है। तो रुचि है बचपन से ही इसमें।
0: अच्छा,
1: और टू ऐड टू दैट, मेरी जो नानी थी वो बहुत ही यंग एज में विधवा हो गई थी और बहुत ही आध्यात्मिक थी वो। हर रोज मॉर्निंग में विष्णु सहस्रनाम पढ़ना, शाम को ललिता सहस्रनाम पढ़ना, और दिन भर लेडीज को एडुकेट करना गांव में कि ये स्तोत्र पढ़ो, ये स्तुति करो, ये करो, वो करो। तो एंड शी यूज्ड टू से वन सेंटेंस, ये सब तो रिलीजियस बातें हुई, भक्ति की बातें हुई, मुझे वो एक बात बार बार दोहराती थी कि मनुष्य जन्म जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, उसको ऐसे ही गवाओ मत। तो तब मुझे ये नहीं समझ आता था, लेकिन वो समझने के लिए मैंने ये रास्ता चुना कि इन्होंने ऐसे क्यों कहा मुझसे। तो उसमें मैं बहुत कुछ सीखती चली गई और अब सिखाती गई हूँ थोड़ा बहुत।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम आज सौभाग्यशाली हैं कि जो आपकी टीचिंग्स हैं, जो आपकी नानी की टीचिंग्स रहीं, वो उसका कुछ हिस्सा हमें आज मिल पा रहा है। वी आर सर्टनली फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड कि आपसे बातें हो रही हैं। बहुत सुंदर। दोस्तों, मेरा फिर से आपसे प्रार्थना रहेगी कि बहुत ध्यान से इस बातचीत को सुनिए जो मीना मैम हमें बता रही हैं। एक पॉज लीजिए, विचार कीजिए अभी तक मीना मैम ने जो कहा, तब तक लीजिए एक ये प्यारा सा भजन सुनिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं।

0: तो मीना मैम, आगे बढ़ते हुए हमने बात करी आध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की।
1: यस,
0: जब हम इस तरीके की बातचीत कर रहे होते हैं मैम, तो एक शब्द पीछे नहीं रहता, वो भी फौरन आगे आ जाता है, वो है धर्म।
1: जी,
0: अब कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये सारी बातें नॉर्मल साधारण इंसान के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये सारी भाषाएं साधु संतों की हैं, बहुत पढ़े लिखे लोगों की हैं।
1: हाँ।
0: लेकिन हमें बिल्कुल सरल भाषा में बताइए मैम, क्या फर्क है ये दोनों शब्दों में, आध्यात्म और धर्म? हाँ।
1: धर्म की सहायता से आप अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हो, यानी दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से।
0: जी।
1: अगर आपने बहुत सारा ज्ञान पाया और उसके बाद अगर आप भगवान के भक्त नहीं हुए तो वो ज्ञान व्यर्थ है।
0: जी।
1: और अगर आप सिर्फ भक्ति कर रहे हैं और ज्ञान में आपकी बिल्कुल रुचि नहीं है तो वो एक तरह का पागलपन है, फैनाटिकिज्म जिसे बोलते हैं ना।
0: जी।
1: तो ये ऐसा है कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ी शक्ति है जिन्होंने हम सबको नियंत्रित कर रखा है या जो शासन चलाती है इस संसार में।
0: जी।
1: और आप अगर अपने आप को ही देखिए, आपके पास ये शरीर है, मतलब आपके पास अगर कोई चीज है तो वो आपसे अलग हुई हुई कि नहीं?
0: जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, शरीर हम बोल रहे ना, हमारे पास ये शरीर है।
1: हाँ, तो शरीर आपके पास है तो शरीर आपसे अलग है। मन आपके पास है, आप अपने विचारों को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो मन भी आपसे अलग है। बुद्धि में अलग अलग विचार आते हैं, कई डिसीजंस आप लेते हो, बुद्धि भी आपसे अलग है ना। और इन सब के परे आपको कैसे ये सब दिखता है या समझ में आता है या महसूस होता है या एहसास होता है? क्योंकि आपके पास एक आत्मशक्ति है ना। वो आत्मशक्ति परसीवेबल नहीं है
0: जी,
1: लेकिन अगर आप इन सब से छूट जाओ, ध्यान करते हुए क्या होता है, यही होता है ना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं। ऐसे जब आप माइनस करते जाओगे तो अपने आत्म स्वरूप में पहुंचते हो, और उसमें जो क्या बोलते हैं, अनब्रोकन ब्लिस जो मिलता है वो किसी और चीज में आपको नहीं मिलेगा। ये अनुभव करने की बात है। वैसे पढ़ पढ़ के हम बहुत कुछ इंटेलेक्चुअली समझ तो जाते हैं, लेकिन जब तक ध्यान में बैठकर इसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि हम खुद आनंद रूप हैं। तो रिलीजन हेल्प्स यू, जब आप उस शक्ति को मानते हो, उसके बारे में स्तुति करते हो, उसके लिए कोई नियम पालन करते हो कि थोड़ी सी पूजा कर लें, ये स्तोत्र पढ़ लें, ये मंत्र पढ़ लें, तो आपका मन शुद्ध होता है उससे। और जो शुद्ध मन होता है वो बड़ा पावरफुल हो जाता है कुछ भी करने के लिए। जब तक विचलित रहेंगे आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो धर्म और ये अध्यात्म साथ साथ चलें तो बढ़िया। और धार्मिक व्यक्ति अगर अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करें, उसको तपस्या की तरफ ले जाएं, तो वो जरूर सक्सेसफुल होगा। तो दोनों अलग नहीं है, लेकिन वन शुड कल्मिनेट इनटू द अदर, अंग्रेजी में कहें तो।
0: जी जी, बहुत बहुत सुंदर। आपकी ये बातें सुनकर मेरे दिमाग में अभी दो प्रश्न आ रहे हैं मीना मैम,
1: कहिए।
0: मैं पूछता हूं, लेकिन बस एक छोटे से पॉज के बाद एक छोटा सा भजन सुनते हैं, फिर मैं वापस आता हूं आपके पास।
1: जी

0: तो मीना मैम, जैसे मैंने
1: हाँ
0: आपसे जिक्र किया, प्रार्थना की, कि मेरे दिमाग में दो सवाल आए हैं। मैं इस बातचीत में पूरी एक साधारण सीधी सादी भोली भाली जनता को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो समझना चाहता है। तो
1: राइट राइट
0: प्रश्न मेरा यह हुआ कि ठीक है, आपने बताया कि स्तुति और मंत्र पढ़ना और कोई क्रिया करना और ये सब करना और मन पवित्र करना, मतलब आपने फिर धर्म और आस्था के बीच, और ये सॉरी धर्म और अध्यात्म के बीच के डिफरेंस और सिमिलैरिटीज एंड कनेक्शंस के बारे में भी बात की। बहुत सारे लोगों के लिए ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो
1: मुश्किल
0: सकती
1: है।
0: है। तो एक सीधा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, इन सब चीजों को समझने के लिए क्या ध्यान लगाना एक रास्ता है मैम? नंबर वन, दिस इज पहला क्वेश्चन। अगर फर्ज कीजिए मैं ध्यान लगाने बैठ जाऊं, और जैसा आपने गाइड किया कि पहले मैं कहूं कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मतलब मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, धीरे धीरे
1: जी
0: नेगेटिव कर माइनस करते गए, आपने बोला ना,
1: हाँ हाँ
0: हम डिलीट करते गए चीजों को, और फिर हम अपने आत्मशुद्ध आत्मा तक पहुंचे।
1: जी
0: साधारण मनुष्य के लिए मैं ध्यान लगाने बैठूं और विचार करता चलूं कि मैं मेरा शरीर नहीं हूं, मैं मेरा मन नहीं हूं, तो क्या यही सही रास्ता है मैम? ये मेरा पहला प्रश्न हुआ।
1: ओके
0: दूसरा प्रश्न ये है मैम कि ध्यान लगाते लगाते हम माइनस करते करते आत्मशुद्धि आत्मा तक पहुंच गए, फर्ज कीजिए। आपने कहा ना, आप ये सब करके व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि मुझे ये
1: जी
0: पवित्र की डेफिनेशन बताएं, ये पवित्र की परिभाषा क्या है, मतलब मैं पवित्र हो गया मतलब क्या, इसका मतलब मेरे मन में ऐसा क्या हो गया कि मैं पवित्र हो गया? सो ये दो सवाल है मेरे।
1: ओके ध्यान लगाना जो है वो मोहब्बत होने वाली जैसी बात है।
0: जी
1: यानी आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि मैं अब ध्यान कर रहा हूं और आंखें मूंद के बैठ गए। मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोग सो जाते हैं,
0: जी
1: ध्यान कुछ होता नहीं है उसमें। और ध्यान लगाने के लिए उसके पहले एक क्रिया है कि आपको थोड़ा बहुत अध्ययन किया हुआ होना चाहिए अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में। तब आप उस पर विचार करोगे और तब जाके ध्यान लगेगा आपका, है ना।
0: जी
1: तो आम आदमी के लिए किसी सत्संग में जाना या किसी मंत्र का जप करना एक नियमानुसार, या पीरियोडिकली किसी मंदिर में जाके दर्शन कराना, इन सब चीजों से आस्था बढ़ती है उनकी और मन में एक शक्ति भी मिलती है कि ये जो कर्ता धर्ता ईश्वर हैं वो मेरी देखभाल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उसको दृढ़ बनाता जाता है ये सब प्रैक्टिसेस। तो ध्यान लगाना ही उत्तम है ऐसा नहीं है। ध्यान लगाने वाले लोग जो हैं वो दे आर ऑल क्या कहें, मच लर्नेड। जो ज्ञानी लोग होते हैं
0: जी
1: वो ध्यान लगा सकते हैं आसानी से, और मतलब इस शारीरिक एग्जिस्टेंस से वो उस रेल्म में पहुंच सकते हैं जो कि आम आदमी के लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर आप उस क्या कहते हैं, वो शब्द जो है बड़ा आकर्षक है कि हम ध्यान करते हैं, है ना। मेडिटेशन आजकल एक बड़ा स्टाइल स्टेटमेंट है।
0: हाँ, बड़ा अट्रैक्टिव, बड़ा फैशनेबल है।
1: हाँ, तो उसमें गाइडेड मेडिटेशन नाम की चीज भी होती
0: जी
1: है
0: हाँ जी हाँ, वो भी
1: कि
0: बड़ा फैशनेबल है।
1: हाँ, तो वो जो आपकी मेंटल कसरत कराते हैं उसमें, है ना। तो दैट इज नॉट मेडिटेशन इन द ट्रू सेंस। ध्यान कैसा होता है कि आपको मोहब्बत कैसे होती,
0: जी
1: किसी को आपने देखा और कुछ तो आपको भा गया उसमें और बस आपको अच्छे लगने लगे, है ना। ऐसे ही ध्यान में जब आप आंख मूंद के बैठते हो तो इमीडिएटली ये सब जो हम ये नहीं है ये नहीं है बोल रहे हैं ना, नेति नेति, वो अपने आप माइनस हो जाएगा और अपने स्वरूप में आप फौरन स्थित हो जाओगे। इट्स अ वेरी क्या क्या बोलते हैं उनको, इंस्टेंटली हो जाता है वो,
0: अच्छा
1: कोशिश okay. नहीं करनी पड़ती,
0: एट द स्पर ऑफ द मोमेंट.
1: हाँ
0: ओके ओके. और दूसरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा,
1: पवित्रता. हाँ पवित्रता के माने हम मनुष्यों के लिए 6 शत्रु बताए गए हैं शास्त्र में.
0: जी
1: सबसे पहले तो डिजायर, कामना. ओके अगर वो आपकी पूरी नहीं होती है तो आपको क्रोध आ सकता है, आएगा ही. और अगर कामना पूरी हो जाती है तो लोभ आता है कि ये मैं और करूं और करूं और करूं. जब लोभ आता है तो आप में एक तरह का प्राइड, मद बोलते हैं उसको,
0: जी
1: प्राइड आ जाता है. और अगर वो नहीं फुलफिल होता है आपका लोभ, तो आपको ईर्ष्या, मात्सर्य होने लगता है औरों से, जिनका हो रहा है और आपका नहीं हो रहा है.
0: जी
1: और अगर कामना पूरी नहीं हुई तो आपको क्रोध आएगा. और जब क्रोध आएगा तो आपको सही गलत में फर्क नजर आना
0: बंद
1: हो जाएगा.
0: जी
1: एंड देन इट विल बी योर डिस्ट्रक्शन एक्चुअली. तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य, इनको षटरिपु कहते हैं संस्कृत में, 6 दुश्मन हमारे.
0: जी
1: तो अरे ये सब क्या है, एक के बाद एक कनेक्टेड है. तो अगर हम कामना से दूर रहें तो इन सब से बच सकते हैं. और ऐसा नहीं है, लोग पूछते हैं, मत स्पेशली जो यंग लोग हैं वो पूछते हैं, सो व्हाट, वी शुड नॉट विश फॉर एनीथिंग.
0: करेक्ट.
1: ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. जो आपके लिए जरूरी है, आपके जीने के लिए जो जरूरी है, उसकी कामना करना कोई गलत बात नहीं है.
0: जी.
1: कि आपको अपने आत्म की प्राप्ति करनी है, ये भी गलत आशा नहीं है. लेकिन जो नीड और वांट में जो फर्क है ना, वो अगर आपको समझ आ जाए तो आप पवित्र रहोगे. क्योंकि ये सब भावनाएं जब आती हैं तो मन अपवित्र हो जाता है ना. क्योंकि आपको कैसे बनाया, आपको बिल्कुल साफ सुथरा बना के ईश्वर ने भेजा है.
0: जी.
1: उसमें आप ये सब क्वालिटीज डालोगे तो अपवित्र होगा ही.
0: ओके मैम, आई एग्री विद योर पॉइंट. बात मुझे एक साधारण मनुष्य के दिमाग के हिसाब से 50% मैं कन्विंस हो पा रहा हूं. 50% अभी अभी आपने कुछ एग्जाम्पल्स दिए यंग जनरेशन की, क्या हम विश करना बंद कर दें वगैरह वगैरह. तो वहां पर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, वैसा भी नहीं करना है. तो कई कई मौके आजकल की डेट में ऐसे किसी भी इंसान के साथ आ जाते हैं कि हम बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे थे और किसी ने पीछे से हमारी गाड़ी में टक्कर मारी.
1: जी.
0: और चलिए टक्कर तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस कराया हुआ है, ठीक करा लेना चाहिए. उसमें लड़ाई झगड़ा की क्या बात है, आफ्टर ऑल इंश्योरेंस कराया ही इसीलिए था. अब गाड़ी सड़क पे चलेगी तो ठुकेगी भी.
1: बिल्कुल.
0: लेकिन इससे आगे बढ़ गई है बात. गाड़ी ठुकी, पीछे से ठुकी, मतलब गलती उसकी थी. वो फिर भी आके हमको गेट खोल के बाहर निकाल के मारना शुरू कर देता है.
1: जी.
0: कि किस तरह से तू गाड़ी चला रहा था और तू कौन है और मैं बहुत बड़ा हूं. मैम वहां पर कहां रह जाती है पवित्रता मन की. मैंने कोई गलती की नहीं, फिर भी मैं पिट रहा हूं. ऐसे अत्याचार में तो फिर भड़क पड़ता है, मन करता है गोली मार दे इसको. वहां पे पवित्र मन का क्या मतलब हुआ, पवित्र मन फिर वहां कैसे काम आएगा. मतलब हुआ ये कि मैं पिटता रहूं उससे पवित्र मन लेके.
1: नहीं नहीं नहीं, वहां पे क्या बोलते हैं, जो सही है वो करना चाहिए.
0: जी.
1: और जो गलत है वो नहीं करना चाहिए. लेकिन जब आपके किसी फॉल्ट के बिना आपके ऊपर वो बरस रहा है या मार रहा है, तो फिर आपका भी हक है कि आप उसको भी सही जवाब दें उसी तरह. नहीं तो उसको भी समझ में नहीं आएगा.
0: हाँ.
1: क्योंकि उसको वही भाषा समझ आती है, तो आपको भी उसको वैसे ही समझाना पड़ेगा.
0: ओके क्योंकि रेज जो है ना मैम चारों तरफ बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है। पीछे
1: और उसका भी आप मूल कारण देखिए क्या है।
0: जी जी
1: व्हेन यू जीरो डाउन कि ये क्यों हुआ उसके पीछे भी कोई डिजायर ही होगा। अब देखो
0: जी जी डिजायर शायद ये होगा कि मैं अपने आप को उससे बड़ा साबित करूं।
1: हाँ कुछ भी हो सकता है
0: जी।
1: फेम का डिजायर, पैसे का डिजायर,
0: पावर का
1: किसी
0: डिजायर,
1: पदवी का डिजायर।
0: हाँ। जी जी जी ठीक है। तो दोस्तों इस बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है कहां पर और कितना हमें रिटेलिएट करना है या रिस्पॉन्सिव होना है। रिस्पॉन्सिव होना
1: मतलब रिस्पॉन्सिव होना बेटर
0: है मतलब
1: आपके लिए भी और अपोजिट पार्टी के लिए भी।
0: क्योंकि रिस्पॉन्सिबल शब्द को अगर हम तोड़े तो आता है रिस्पॉन्स एबल मतलब हम रिस्पॉन्स देने लायक हैं।
1: बिल्कुल
0: रिएक्ट और रिस्पॉन्सिबल में यही फर्क है।
1: हाँ
0: चलिए वेल मीना मैम आपने वेदांता भी पढ़ा आपने कई कॉर्पोरेट्स में काम भी किया संगीत से भी जुड़ी रही बहुत आपने ज्ञान भी लिया और मेडिटेशन भी किया और बात को समझा भी।
1: हाँ जी
0: लेकिन आप आज की दुनिया में हैं कोऑर्डिनेट कर रही हैं आज की दुनिया से और आज सोशल मीडिया का जबरदस्त बोलबाला है। अब हम आंख मूंद कर बैठ तो नहीं सकते मैम कि हमको सोशल मीडिया देखना ही नहीं है। तो सोशल मीडिया के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे कि सोशल मीडिया का आध्यात्म पर या स्पिरिचुअलिटी पर या चलिए एक बार को धर्म की बात भी कर लेते हैं इन पर क्या असर हो रहा है सोशल मीडिया का।
1: सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है अगर मुझसे पूछे कि विश्व भर में आपके कोई भी कनेक्टेड दोस्त हैं रिश्तेदार हैं कोई भी हैं उनसे आप पल भर में जुड़ सकते हो
0: जी।
1: पहला तो फायदा ये है। दूसरा आपको जो अच्छी बात लोगों को बतानी होती है वो भी एक क्लिक करने से सबके पास पहुंच जाती है है ना और उसका ही वाइस वर्स भी पॉसिबल है।
0: बिल्कुल
1: तो उससे बच के रहना है। ये नहीं है कि हम उसमें बिल्कुल रहे ही ना या वो देखे ही ना समझ में कैसे आएगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है इफ यू डोंट सी। अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए ना। पहले कहां ये स्टार मेकर या कुछ और था जहां हम अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते थे अब तो हो सकता है। पहले अनलेस एंड अंटिल किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो ने आपको बुलाया नहीं ऑडिशन नहीं लिया तब तक कोई आपको सुन भी नहीं सकता था पता भी नहीं चलता था। अभी तो यू कैन डू इट। जहां तक अच्छी बातों को फैलाने वाली बात है सोशल मीडिया इज वेरी गुड। जहां लोगों के साथ कनेक्ट होने की बात है वहां भी अच्छी बात है और जहां लोगों को सतर्क करने वाली बात है उसके लिए भी सोशल मीडिया बहुत अच्छा है
0: जी।
1: लेकिन उसका गलत इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। और दूसरा उसका एक एस्पेक्ट है कि बहुत अपने फोन में उसको अगर देखते रहें तो आपका नुकसान भी एक तरह होता है कि आपकी आंखों की जो रोशनी है उस पर बहुत बुरा असर होता है उसका
0: जी।
1: इसलिए जितना कम इस्तेमाल करें अच्छा है। सिर्फ अपने काम के लिए उसको यूज करें फिर उसको रख दें। अभी आजकल के अगर आप बच्चों को देखें तो सदा स्क्रीन में कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं देखते रहते हैं पता नहीं क्या।
0: करेक्ट।
1: तो वो गलत बात है वो नहीं होना चाहिए। और जब आप चार लोगों के बीच बैठे हो तो ये तो मतलब अशिष्ट व्यवहार है मुझे पूछे
0: बिल्कुल सही कहा।
1: कि सामने इंसान बैठा है आप उनसे बात करिए ये क्या बात हुई उसमें झांक रहे हैं। घरों में भी होता है
0: जी,
1: माँ बाप बच्चे बैठे हैं सब अपने अपने फोन में पता नहीं क्या देख रहे हैं।
0: आपने बिल्कुल
1: आदतें हैं जो बिगड़ी हुई हैं उनको सुधारने में देर नहीं लगेगी बस मन होना चाहिए कि अब नहीं करना है।
0: बहुत बहुत प्यारी बात कही आपने मैम बहुत बहुत प्यारी बात कही और इसको सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कह रही हैं एक दूसरे एंगल से कि सोशल मीडिया एक दो धार की तलवार है, दोनों तरफ इसकी एजेस हैं, अगर हमने इसको गलत चलाया
1: जी
0: तो हम कट जाएंगे, सो वी नीड टू नो कि इसको हमें चलाना कैसे है, किस तरफ से इसको चलाना है, और बस वो खतरनाक लाइन कब पार होती है बस वही पता नहीं चल पाता। तो दोस्तों टाइम एंड अगेन इस बारे में बार बार बात हो रही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत प्यारा है, लेकिन हमें सजग होना चाहिए कि कहीं ये हमारे सर पर ना चढ़ जाए। चलिए
1: हावी नहीं हो जाए,
0: हावी ना हो जाए क्योंकि हमको गुलाम बनने की बहुत ज्यादा आदत है, फौरन नशे में डूब जाने की आदत हमें बहुत है
1: जी,
0: तो इसलिए थोड़ा संभलिए। चलिए मीना मैम मुझे ये बताइए, बहुत बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की आध्यात्म की शुरू शुरू में भी आपने कहा था प्रैक्टिस करते हैं, हमको चारों तरफ दिखाई देता है, हर फैमिली में कम से कम बुजुर्ग लोग तो हमें ये करते हुए दिखते ही हैं, फिर कुछ यंग लोग भी दिखाई देते हैं। स्पिरिचुअलिटी उनको लगता है बड़ी प्यारी चीज है और उससे हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, हम शांति पा जाएंगे, स्ट्रेस हट जाएगा, फिजिकली भी हम अच्छे हो जाएंगे, लेकिन फिर वो फिर मॉडर्न दुनिया में उलझ जाते हैं, काम में स्ट्रेस लेने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा घर में परिवार में कलह सब कुछ शुरू हो जाता है।
1: यस,
0: तो आफ्टर ऑल कोई भी इंसान आध्यात्म की प्रैक्टिस कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाता, व्हाई?
1: अपनी चॉइस है ना
0: जी।
1: अभी मुझे देख लो, जब मैं बचपन से इसे जुड़ी हुई हूँ लेकिन फुल टाइम देने का वक्त मुझे तब नहीं मिला, कुछ पढ़ाई भी नहीं की, कुछ सीखा भी नहीं, कुछ भी नहीं, चार पांच श्लोक आते थे वही बोल दिया करते थे, रोज स्नान करके फिर स्कूल भाग जाते थे, लेकिन शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके भी सब 15 साल के हो गए, मेरी बड़ी वाली बेटी, तब जाके मैं इसके अध्ययन में लगी, और फिर ऐसे हुआ कि मतलब उन किताबों से मन हटता ही नहीं था, एक के बाद एक, एक के बाद एक मैं बस सीखती चली गई, सीखती चली गई, सीखती चली। वो तो ऐसा है कि आप जब तक पानी में उतरोगे नहीं तैरना सीखोगे नहीं
0: जी।
1: ऊपर ऊपर से देख के अच्छा लगता है ये तो ठीक है, लेकिन अनुभव करने की बात है, यू हैव टू वॉक द पाथ टू नो द पाथ, है ना?
0: ओके,
1: किसी के बताने पे आप कितना ही करोगे, और लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन भी है इसके बारे में, जैसा मैंने कहा ना, आप सीधी सादी जिंदगी जियो कि एक डिसिप्लिन के साथ जियो कि सुबह इस वक्त उठना है, इस वक्त स्नान करना है, इस वक्त खाना है, इस वक्त सोना है, तो वो भी एक स्पिरिचुअल लाइफ ही है। स्पिरिचुअलिटी यानी ये नहीं कि आप माला जपते बैठ जाओ या ऑरेंज वस्त्र पहन लो या किसी मंदिर में रोज जाओ, दैट डज नॉट डिफाइन स्पिरिचुअलिटी। आप अपने अंदर का जो आप हो ना, आपका जो व्यक्तित्व है, उसके साथ हमेशा जुड़े रहो, यही स्पिरिचुअलिटी है।
0: ओके,
1: हाँ
0: बिल्कुल ठीक।
1: अभी कोई दरवाजा खटखटाता है
0: जी,
1: कौन है पूछता है ना,
0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ
1: तो आप कहते हो ना मैं हूँ, तो व्हाट मेक्स यू से कि मैं हूँ, थोड़ा सोचिए उसको, तो वो जो अंदर से आवाज आई कि मैं हूँ, वो हमेशा आपको एहसास दिलाता रहता है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ।
0: ओके,
1: उस मैं से हमेशा जुड़े रहिए, अलग मत होइए, तो दैट टेक केयर्स ऑफ एवरीथिंग एल्स, फिर आप गलत बातों में नहीं पड़ोगे, कोई बिना मतलब की बात कर रहा है तो आप अपने आप वहां से उठ के चले जाओगे, दीज थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली, कोई एफर्ट नहीं लगता है इसमें, खुशी खुशी रहना, एफर्टलेसली जीना, यही स्पिरिचुअलिटी है। जितनी खुशी आप लोगों को बांट सकते हो बांटो, बिना किसी मोल के, वही तो स्पिरिचुअलिटी है। ह्यूमन एक 18 पुराण है हमारे
0: जी।
1: एक श्लोक है उसके बारे में कि अष्टादश पुराणानां केवलं वचनद्वयं कि 18 पुराणों में दो ही बातें कही गई हैं, वो ये है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, किसी को दुख ना पहुंचाएं और जितना उपकार हो सके किसी का भी उतना करें जिंदगी में, तो आप स्पिरिचुअल हो।
0: सुंदर, अति सुंदर। चलिए सिंपल भाषा में सिंपल मैसेज है दोस्तों, विचार करने लायक चीज है। रुकिए ना, एक प्यारा सा भजन सुन लें और फिर हम मीना मैम के पास वापस आते हैं।
2: बहुत मुश्किल है डगर इस संसार की, किसी गुरु की तलाश कीजिए जो हमें इन मुश्किल रास्तों से निकल जाने का उपाय बताए।

0: अगर आपकी बातचीत को सुनकर, हमारे इस प्रोग्राम को सुनकर अगर कोई व्यक्ति कन्विंस हो जाए, सहमत हो जाए कि नहीं ठीक है, आज मुझे कुछ डिफरेंट प्रस्पेक्टिव मिला है अध्यात्म का, रिलीजन का, चलिए जैसा मीना मैम ने कहा मैं प्रैक्टिस शुरू करता हूं, क्यों मैं अपने अंतर्मन में बड़ा दुखी इंसान हूं, बड़ा गुस्सा भरा हुआ है मेरे अंदर, मन करता है इसको मार दूं, उसको मार दूं, मेरे हिसाब से कभी कुछ हो नहीं रहा वगैरह वगैरह। लेकिन आज मीना मैम ने बोला है चलो मैं शुरू करता हूं ध्यान से और आध्यात्म की तरफ मैं बढ़ूंगा, मन को पवित्र करूंगा, जैसे हम लोग की पीछे बातचीत हुई। तो 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप आप क्या बताना चाहोगे कि हमें 1 2 3 4 ये करो तो धीरे धीरे आप आध्यात्म की तरफ बढ़ोगे, मतलब हमें मेथड बताइए।
1: हाँ, सिंपल मेथड्स बताती हूँ
0: जी।
1: जब भी मौका मिले किसी मंदिर में जाके दर्शन कीजिए और अकेले जाइए
0: जी।
1: तो जब आपके और उस अंदर मूर्ति के बीच में जो कुछ भी एक्सचेंज होता है उसको आप मन में लेके वापस आइए, जरूर उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपको कोई कोई भी हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं में कोई भी पसंदीदा है
0: जी,
1: तो उनके नाम का जाप आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको शिव जी पसंद है तो ओम नमः शिवाय, है ना। सो अबाउट 5 मिनट्स 10 मिनट्स आंख मूंद के उनका नाम जाप करो तो उसमें क्या होगा, माइंड स्टेडी होगा
0: जी।
1: तीसरा, जब कभी कोई महात्मा कहीं भी लेक्चर दे रहा हो किसी भी विषय पे, नीड नॉट बी ऑफ योर इंटरेस्ट, लेकिन अगर कोई महात्मा कहीं कोई सत्संग हो रहा है तो मौका मिले तो जाइए उधर, क्योंकि उस पूरे घंटे डेढ़ घंटे में वो लोग जो कुछ भी बताते हैं उनमें कभी कभी हमारे मन में उठ रहे सवालों का भी जवाब मिल जाता है
0: जी।
1: मुझे ऐसी जिंदगी में बहुत सारे जवाब मिले हैं, मैं इंटेंशनली नहीं गई थी लेकिन जाके कुछ पाके आई। तो ये सब चीजें हमको हेल्प करती हैं और फिर आप खुद ही चलने लगोगे कि नहीं नहीं नहीं मुझे ये करना चाहिए। और हमारे शास्त्र क्या हैं, एक आईने की तरह हैं, हमको दिखाते हैं कि हम कितना सही हैं और कितना गलत हैं, किसी कथा के माध्यम से, किसी उदाहरण के माध्यम से या किसी बात के माध्यम से, उनमें जो भी लिखा है, तो वो सब सुनना अच्छी बात है। तो धीरे धीरे परिवर्तन जरूर होगा, ये मेरा विश्वास।
0: सिंपल आसान तरीका है दोस्तों, अपनाने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा हमें अपने आप को अरेंज करना है, वक्त तो वही है 24 घंटे, हमें अपने आप को अरेंज करना है और इन चीजों पर जाना है। नंबर वन ध्यान, नंबर टू कोई अगर कहीं प्रवचन हो रहा हो तो जाके सुनिए। बहुत प्यार से मैम ने कहा कोई जरूरी नहीं आपके इंटरेस्ट की बात हो रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ सवालों के जवाब आपको फिर भी मिल ही जाएंगे। नंबर थ्री, कोई भी देवता हैं, कोई भी डेटी हैं जिनको आप पसंद करते हैं, उनका ध्यान कर लीजिए क्या फर्क पड़ रहा है, बाकी वक्त तो हम गुजारते ही हैं। तो ये 4-5 प्रैक्टिसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है विद ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर हम 5 मिनट 10 मिनट में भी हाफ एन आवर जितना भी हमको मन लगे करें तो धीरे धीरे उस तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत सुंदर मैम, तो बस चलते चलते मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपके सारे जो श्रोता हैं आज जिन्होंने आपको

0: वाओ।
1: एक श्लोक है जो मैं पढ़ूंगी, जो आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ है कि दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। यानी ये तीन चीजें दुर्लभ है लाइफ में। पहला तो मनुष्यत्वम, ह्यूमन बीइंग पैदा होना। दूसरा मुमुक्षुत्वम, यानी अपने मन में एक चाह हो कि मुझे अब फिर लौट के नहीं आना है इस संसार में, मुझे मोक्ष पाना ही है। और तीसरी बात जो दुर्लभ है वो ये है कि कोई महापुरुष हमारे जीवन में आए और हमें ये सब समझाए कि हम कैसे पार लगाएं। और ये सब मिलता है हमको देवानुग्रह हेतु कम, भगवान की कृपा से ही मिलता है। तो चूंकि हमें मानव शरीर मिला है तो उसका पूरा पूरा उपयोग करें उसको याद करते हुए, तो जरूर हम पार लग सकते हैं। दैट इज द मैसेज। और हमारे पास जो बुद्धि है, अभी एक पक्षी या एक पशु जो है बैठ के ध्यान नहीं कर सकता है, उसको ये सब समझ में भी नहीं आएगा कि यू नो ये जन्म क्यों मिला है या हमें क्या करना है, पास्ट में हमने क्या कर्म किए थे, अब क्यों भुगत रहे हैं, कुछ नहीं समझ आता है। लेकिन मनुष्य के पास वो शक्ति है, अपने सारी जो करण मिले हैं हमको, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जो मिले हैं, उनको नियंत्रण में रखने की शक्ति मनुष्य के पास है। और अपने आप के पास पहुंचने का रास्ता भी हमारे पास है, बस थोड़ा सूक्ष्म बनना पड़ेगा। वो जैसे कबीर दास का भजन है ना, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास।
0: जी, अमेजिंग, ब्यूटीफुल।
1: तो अपने साथ रहिए, अपने पास रहिए, जितना हो सके खुश रहिए, जितना हो सके औरों को भी खुश बनाए रखिए। दैट्स ऑल हम मनुष्य के रूप में कर सकते हैं।
0: बहुत सुंदर मैम, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है कि इतनी प्यारी चीजें आपने हमें बताई हैं सिंपल तरीके से, कोई भी व्यक्ति उसको सुनकर प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। आई होप मैंने कुछ तो काम की चीज बताई।
0: जी,
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू।
2: भास्कराय नमः।
0: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: कहिए कहिए ना,
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, एनर्जी चेक, चाय रेडी, दिल रेडी। मैं हूं तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहां बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुंचती हैं। यहां हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहां फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं,

0: और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं, तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।
1: यह है कैसा जादू मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए
2: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना।

65 ईयर्स की उम्र में जब दुनिया ने कहा अब बस, तब एक बजुर्ग ने कहा अभी तो शुरू किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक और छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूं। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया है, शायद अब देर हो गई है, शायद अब वो वक्त निकल चुका है, शायद जो सपना था वो सपना ही रह जाएगा? हम में से बहुत से लोग कभी ना कभी ये जरूर सोचते हैं। कभी 25 इयर्स की उम्र में सोचते हैं, कभी 35 में सोचते हैं, और कभी 45 में, और कुछ लोग तो 60 के बाद मान ही लेते हैं कि अब जिंदगी का काम सिर्फ गुजरना है, जीना नहीं। लेकिन आज की कहानी ऐसे एक आदमी की है जिसने 65 इयर्स की उम्र में पूरी दुनिया को दिखा दिया कि घड़ी की सुई कभी सपनों की दुश्मन नहीं होती, दुश्मन सिर्फ हमारा हार मान लेना होता है। जरा कल्पना कीजिए, एक बुजुर्ग आदमी, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, सफेद सूट, हाथ में एक छोटा सा बैग, और उस बैग में कोई खजाना नहीं, बस एक रेसिपी। जी हाँ, एक रेसिपी, एक खाने की स्वादिष्ट रेसिपी। और उस रेसिपी को लेकर वो आदमी दरवाजे खटखटाता रहा, फिर भी किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट, तीसरे रेस्टोरेंट, चौथे रेस्टोरेंट, और हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, नहीं। दोस्तों, हम तो कभी कभी एक बार मना होने पर भी उदास हो जाते हैं। एक इंटरव्यू क्लियर ना हो, एक आर्टिकल पब्लिश ना हो, एक प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए तो लगता है दुनिया खत्म हो गई। लेकिन उस बुजुर्ग ने एक बार नहीं, 10 बार भी नहीं, 100 बार भी नहीं, 1000 से ज्यादा बार नो सुना, और फिर भी वो रुका नहीं। ये कहानी है कर्नल हॉलन सैंडर्स की, जिसे आज दुनिया KFC के फाउंडर के नाम से जानती है। लेकिन KFC की कहानी चिकन की नहीं है, KFC की कहानी है हिम्मत की कहानी। हॉलन सैंडर्स का बचपन किसी फिल्म की मुश्किलों से भरी कहानी से कम नहीं है। जब वो सिर्फ 5 साल के थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया। सोचिए, सिर्फ 5 साल। जिस उम्र में बच्चे खिलौने मांगते हैं, उस उम्र में जिंदगी ने उनसे जिम्मेदारी मांग ली। उनकी माँ को घर चलाने के लिए काम पर जाना पड़ता था, और छोटे सैंडर्स घर में अपने भाई बहनों की देखभाल करते थे, खाना भी बनाते थे। उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि जो काम वो मजबूरी में कर रहे हैं, वही एक दिन उनकी तकदीर लिखेगा। जिंदगी आगे बढ़ी, लेकिन आसान नहीं हुई। कभी किसान बने, कभी रेलवे में काम किया, कभी इंश्योरेंसेस बेचे, कभी टायर्स बेचे, कभी फेरी बोट चलाई, कभी पेट्रोल पंप संभाला, कभी नौकरी मिली और कभी नौकरी चली गई। ऐसे लगता था जैसे जिंदगी उन्हें एक ही बात सिखा रही हो, हर बार गिरने के बाद उठना। और दोस्तों, मुझे लगता है जिंदगी में सबसे बड़े टीचर्स स्कूल के टीचर्स नहीं होते, सबसे बड़े टीचर्स हमारी असफलताएं होती हैं। वही हमें मजबूत बनाती हैं, वही हमें तैयार करती हैं, वही तो हमें वो इंसान बनाती हैं जो हम बनने वाले होते हैं। सैंडर्स ने एक पेट्रोल स्टेशन के पास एक छोटा सा ढाबा जैसा रेस्टोरेंट शुरू किया। वहां वो मुसाफिरों को खाना खिलाते, और धीरे धीरे एक चीज की चर्चा होने लगी, उनका फ्राइड चिकन। लोग कहते, खाना तो बहुत जगह मिलता है, लेकिन ये स्वाद कहीं और नहीं मिलता। धीरे धीरे उन्होंने अपनी खास रेसिपी बनाई, 11 हर्ब्स और स्पाइसेस का एक सीक्रेट मिक्सचर। आज भी उस रेसिपी को दुनिया के सबसे मशहूर फूड सीक्रेट्स में से गिना जाता है। बिजनेस चल पड़ा, कस्टमर्स भी आने लगे,
नाम होने लगा और फिर एक दिन सब बदल गया। एक नया हाईवे बन गया और ट्रैफिक का रास्ता बदल गया। जो लोग पहले उनके रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते थे अब किसी और रास्ते से जाने लगे। कस्टमर्स कम होते गए, इनकम गिरती गई और आखिरकार रेस्टोरेंट बंद हो गया। सोचिए, आपने पूरी जिंदगी मेहनत की हो और एक दिन सब कुछ हाथ से निकल जाए, कैसा लगता होगा? शायद टूट जाने जैसा, शायद खाली हो जाने जैसा। और उस वक्त सैंडर्स की उम्र थी 65 ईयर्स। जी हाँ, 65 ईयर्स, वही उम्र जहां लोग रिटायरमेंट प्लान बनाते हैं, सुबह पार्क में वॉक करने जाते हैं, पुरानी यादें याद करते हैं और कहते हैं अब जो करना था कर लिया। लेकिन सैंडर्स ने कुछ और कहा। उन्होंने कहा, अभी नहीं, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। और दोस्तों, कभी कभी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वाक्य होता है मैं अभी खत्म नहीं हुआ। कहते हैं उन्हें पेंशन में सिर्फ कुछ डॉलर्स मिलते थे, बस उतना ही। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी रेसिपी लेकर पूरे अमेरिका में जाएंगे, रेस्टोरेंट ओनर से मिलेंगे और उन्हें अपना आइडिया समझाएंगे। फिर शुरू हुआ सफर बसों में, गाड़ियों में, सस्ते मोटेल्स में। कभी गाड़ी में सो गए, कभी बेंच पर बैठकर खाना खा लिया, कभी पूरा दिन घूमते घूमते एक भी डील नहीं मिली। लेकिन हर सुबह वो फिर निकल पड़ते थे, एक और कोशिश, एक और दरवाजा, एक और मुलाकात। मुझे लगता है यही फर्क होता है सपने देखने वालों और सपने पूरा करने वालों में। पहला आदमी सोचता है और दूसरा आदमी करता है। कहते हैं 1009 बार उन्हें मना किया गया, 1009 बार। अब मैं नहीं जानती कि ये संख्या पूरी तरह सही है या नहीं, लेकिन इतना जरूर सच है कि उन्होंने इतने रिजेक्शंस देखे जितने देखकर ज्यादातर लोग कब की हार मान चुके होते हैं। और फिर एक दिन एक रेस्टोरेंट ओनर मान गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। और धीरे धीरे एक सपना एक चेन बन गया, एक रेसिपी एक एम्पायर बन गई। आज दुनिया के कई देशों में KFC है, करोड़ों लोग उसका नाम जानते हैं। लेकिन जब भी मैं KFC का लोगो देखती हूँ, मुझे चिकन नहीं दिखता, मुझे एक बुजुर्ग आदमी दिखता है जो 65 ईयर्स की उम्र में भी सपने देख रहा था, जो हजार बार मना होने के बाद भी मुस्कुराकर अगला दरवाजा खटखटाता था। और दोस्तों, शायद इसीलिए ये कहानी इतनी खास है, क्योंकि ये बिजनेस की कहानी नहीं, ये उम्मीद की कहानी है। ये हमें बताती है कि कभी कभी जिंदगी का पहला अध्याय संघर्ष होता है और दूसरा अध्याय इंतजार और तीसरा असफलता और फिर चौथा अध्याय सफलता। लेकिन हम अक्सर तीसरे अध्याय पर ही किताब बंद कर देते हैं। तो अगर आज आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि बहुत देर हो गई है और आपको लगता है कि लोग आगे निकल गए हैं आपसे, तो कर्नल सैंडर्स को याद कीजिए। एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उस उम्र में देखी जिस उम्र में दुनिया उसे रिटायर्ड देखना चाहती थी। और याद रखिए, सपनों की कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती, हौसलों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, और जब तक आप खुद को मौका देते रहेंगे, जिंदगी भी आपको नए मौके देती रहेगी। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा और फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ, जहां बातें होंगी इधर की और उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार हिस्ट्री की क्लास में गप्पू ने पूछा, सर एक बात आपको पता है? टीचर ने कहा, क्या? गप्पू बोला, इतिहास गवाह है सर, जब भी कोई नया साल आया है, एक साल से ज्यादा टिक नहीं पाया है।

जिस लड़की को जिंदगी भर पीछे खड़ा रहना सिखाया गया। एक दिन उसने पूरा साम्राज्य संभाल लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। क्या आपने कभी किसी शांत इंसान को देखा है, जो ज्यादा बोलता नहीं, जो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात नहीं करता, जो हमेशा दूसरों को आगे रखता है, और फिर एक दिन अचानक पता चलता है कि उस इंसान के अंदर एक पूरा समुंदर छुपा था। आज की कहानी एक ऐसी ही महिला की है, एक ऐसी महिला जिसने कभी दुनिया से कुछ नहीं मांगा, जिसने कभी स्पॉटलाइट की डिमांड नहीं करी, जिसने कभी स्टेज पर खड़े होकर अपनी ताकत का ऐलान नहीं किया, लेकिन जब वक्त आया तो उसने वो सब कर दिखाया, जिसे देखकर पूरा देश हैरान रह गया। ये कहानी है सावित्री जिंदल की। दोस्तों, आज जब हम किसी बिलियनर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, प्राइवेट जेट्स आते हैं, लग्जरी ऑफिसेस आते हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग्स आती हैं, लेकिन हर सफलता की कहानी ऐसी नहीं होती, इतनी सीधी नहीं होती। कुछ कहानियां रसोई से शुरू होती हैं, कुछ कहानियां आंगन से, और कुछ कहानियां जिम्मेदारियों के बोझ से, और फिर वही कुछ कहानियां सिर्फ खामोशी से। सावित्री जिंदल का जन्म 1950 में असम के तिनसुकिया में हुआ। एक छोटा सा शहर, एक साधारण परिवार, और एक ऐसा दौर जहां लड़कियों के सपनों से ज्यादा उनके लिए लिए गए फैसले मायने रखते थे। आज के बच्चे 15 साल की उम्र में करियर काउंसलिंग लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, फ्यूचर के प्लान्स बनाते हैं, लेकिन सावित्री जी की जिंदगी में 15 साल की उम्र में जो हुआ उसने उनका पूरा जीवन बदल दिया। उनकी बड़ी बहन का देहांत हो गया, परिवार टूट गया, घर में शोक छा गया, और फिर एक फैसला हुआ, एक ऐसा फैसला जो आज शायद समझने में भी हमें मुश्किल हो। उनकी शादी उनकी बहन के पति ओपी जिंदल से कर दी गई। सोचिए, एक तरफ 15 साल की एक छोटी लड़की, दूसरी तरफ 35 इयर्स के व्यक्ति, पहले से 6 बच्चों के पिता, और उन बच्चों में से एक लगभग सावित्री जी की उम्र का था। जिंदगी ने उनसे पूछा भी नहीं, बस एक नई जिम्मेदारी उनके हाथ में रख दी और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। दोस्तों, कभी कभी हम बहुत रोमांटिक तरीके से जिंदगी को देखते हैं। हमें लगता है हर कहानी में चॉइस होती है, हर मोड़ पर ऑप्शन होता है, लेकिन सच ये है कई लोगों की जिंदगी में चॉइसेस बहुत कम होती हैं, या मान लीजिए होती ही नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारियां होती हैं। और सावित्री जी की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। वो एक पत्नी बनी, फिर माँ बनी, फिर एक बड़े परिवार का केंद्र बनी, और धीरे धीरे उन्होंने 9 बच्चों को पाला। जी हाँ, 9 बच्चे। सोचिए, आज एक बच्चे का स्कूल प्रोजेक्ट पूरा कराना पेरेंट्स के लिए चैलेंज जैसा लगता है, और वहां एक महिला पूरा परिवार संभाल रही थी। लेकिन दोस्तों, एक और बात हो रही थी जिसे शायद उस वक्त कोई देख नहीं रहा था। वो सीख रही थी चुपचाप, बिना शोर मचाए, बिना किसी को बताए। ओपी जिंदल बिजनेस बना रहे थे, फैक्ट्रीज खड़ी हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, और सावित्री जी सब कुछ देख रही थी। बस
सब समझ रही थी, सब ऑब्जर्व कर रही थी। मुझे लगता है जिंदगी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी क्लासरूम नहीं होती, ऑब्जर्वेशन होती है। कई बार हम बोलते कम हैं और सीखते ज्यादा हैं। साल बीतते चले गए, बच्चे बड़े होते गए, बिजनेस बढ़ता गया और फिर 2005 का वो दिन आया, 31 मार्च 2005, एक हेलीकॉप्टर क्रैश और ओपी जिंदल जी इस दुनिया से चले गए। बस एक पल और सब कुछ बदल गया। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी एक मिनट में वो कर देती है जो कई सालों में नहीं होता। एक पल पहले तक सावित्री जी एक पत्नी थी और अगले ही पल हजारों एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, करोड़ों अरबों का बिजनेस उनके सामने था, स्टील प्लांट्स, पावर प्रोजेक्ट्स, सीमेंट यूनिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर्स और साथ ही एक पूरा परिवार। अब जरा सोचिए, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? बिजनेस बेच देते, किसी और को दे देते, रिटायर हो जाते। लेकिन सावित्री जिंदल ने कुछ और सोचा। उन्होंने बिजनेस संभाला खुद पूरे विश्वास के साथ। और यहीं से कहानी बदलती है। अक्सर दुनिया सोचती है कि लीडरशिप माइक पकड़ने से आती है, स्टेज पर खड़े होने से आती है, लेकिन असली लीडरशिप तब सामने आती है जब आपके पास भागने का मौका ना हो और फिर भी आप रुक कर जिम्मेदारी उठाते हैं। सावित्री जी ने भी वही किया, स्टील बिजनेस को आगे बढ़ाया, पावर प्रोजेक्ट्स को एक्सपैंड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ की, एनर्जी सेक्टर में मजबूती लाई और धीरे धीरे जिंदल ग्रुप और बड़ा होता गया। आज ग्रुप में दुनिया भर में हजारों नहीं 10,000 लोग काम करते हैं, लाखों परिवार उनसे जुड़े हुए हैं और उस एम्पायर को आगे ले जाने वाली महिला कभी एक छोटे से शहर की शान सी लड़की थी। दोस्तों, मुझे इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा कौन सा लगता है आप जानते हैं? ये कहानी पावर की नहीं है, ये कहानी प्रेपरेशन की है। 40 साल, जी हाँ, पूरे 40 साल उन्होंने बिना हेडलाइन बने यही सीखा, बिना अवार्ड लिए सीखती रही, बिना किसी टाइटल के अपनी पहचान को बनाती रही। और फिर जब वक्त आया तो दुनिया को ये जरूर अचानक लगा, लेकिन सच तो ये है कि ये तैयारी 40 साल से चल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बीज जमीन के नीचे सालों तक कुछ नहीं दिखता और फिर एक दिन पेड़ बनकर सामने आ जाता है। आज सावित्री जिंदल भारत के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं, देश की सबसे अमीर महिलाओं में उनका नाम आता है। लेकिन मुझे लगता है उनकी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, उनकी सबसे बड़ी दौलत है धैर्य, सहन शक्ति और जिम्मेदारी निभाने का एक हौसला। क्योंकि एम्पायर इनहेरिट करना आसान है, एम्पायर संभालना बहुत मुश्किल और एम्पायर को बढ़ाना उससे भी मुश्किल। तो दोस्तों, आज अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत किसी को नहीं दिख रही तो उदास मत होइए। हो सकता है कि आप भी अपने जीवन को वो 40 साल दे रहे हों जहां जिंदगी आपको सिर्फ तैयार कर रही है, तराश रही है। हो सकता है आपका समय अभी आया नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कहानी छोटी है। और याद रखिए, सबसे मजबूत लोग हमेशा सबसे ज्यादा शोर नहीं मचाते,
कई बार वो चुप रहते हैं, सीखते रहते हैं और फिर एक दिन दुनिया उनकी कहानी सुनाती है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, मिलूंगी फिर आपसे एक और कहानी के साथ, जहां बातें होंगी इधर की उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: मालिक नौकर से, आज तुमने रोटी में ज्यादा घी लगा दिया है। नौकर बोला, गलती हो गई मालिक, लगता है मैंने आपको अपनी रोटी दे दी।

जिस आदमी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत लगभग कचरे में फेंक दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, आज मैं आपसे एक और अजीब सा सवाल पूछती हूं। आपके घर में कोई पुरानी अलमारी है, कोई संदूक, कोई पुराना ट्रंक जो डब्बा सालों से खुला नहीं, ऐसा कोई सामान जिसे हर सफाई के वक्त देख कर भी आप कहते हैं ये कब तक रखा है और क्यों, और फिर सोचते हैं इसे कबाड़ी को दे देते हैं। सच सच बताइए, हम सबके घर में ऐसी कोई ना कोई चीज जरूर होती है। कुछ पुरानी तस्वीरें, कुछ डायरीज, कुछ खत, कुछ कपड़े, कुछ ऐसे सामान जिनकी कीमत हमने खुद ही जीरो मान ली होती है। लेकिन सोचिए, अगर उनमें से किसी एक चीज की कीमत करोड़ों रुपए निकले तो? अगर जो चीज आपको पुरानी और बेकार लग रही हो वही आपके घर की सबसे कीमती वस्तु हो तो? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक आम आदमी की, एक पुराने बोल की और एक ऐसी सच्चाई की जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। इंग्लैंड के एक शान से शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। साधारण जिंदगी, साधारण घर, साधारण दिन, और एक दिन घर की सफाई शुरू हुई। अब दोस्तों, घर की सफाई सिर्फ घर की सफाई नहीं होती, वो यादों की सफाई भी होती है। आप पुरानी चीजें उठाते हैं और अचानक किसी पुराने जमाने में पहुंच जाते हैं। किसी फोटो को देखकर बचपन याद आ जाता है, किसी डायरी को देखकर कॉलेज याद आ जाता है, किसी पुरानी शर्ट को देखकर कोई दोस्त याद आ जाता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो पुराना सामान देख रहे थे, कभी कुछ अलग रख देते, कभी कुछ फेंक देते, और तभी उनकी नजर एक छोटे से बोल पर पड़ी। ना वो सोने का था, ना वो चमक रहा था, ना उसके साथ कोई कहानी जुड़ी थी, बस एक पुराना सा बोल जो कई सालों से घर में पड़ा हुआ था। आप और मैं होते तो शायद बिना सोचे उसे कबाड़ी के ढेर में डाल देते, लेकिन पता नहीं क्यों उस आदमी ने उसे फेंकने के पहले एक एंटीक एक्सपर्ट को दिखाने का फैसला किया। बस यूं ही क्यूरियोसिटी में, मजाक मजाक में। और दोस्तों, कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ बस यूं ही में शुरू होते हैं। एक्सपर्ट ने बोल देखा, उसे हाथ में लिया, थोड़ी देर चुप रहा, और फिर उसने बोल को दोबारा देखा, फिर तीसरी बार, और फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा, क्या आपको पता है ये क्या है? बुजुर्ग आदमी ने कहा, नहीं, बस एक पुराना बोल है। एक्सपर्ट मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये सिर्फ एक बोल नहीं है। दोस्तों, वो बोल लगभग 1000 साल पुराना था। चाइना की सोंग डायनेस्टी का था, एक ऐसा युग जिसके कुछ ही असली आर्टिफैक्ट्स इस दुनिया में बचे हैं। जिस बोल को आदमी कबाड़ी समझ रहा था वो इतिहास का एक जीता जागता टुकड़ा था। बाद में उस बोल की ऑक्शन हुई और वो लाखों डॉलर्स में बिका। इंडियन करेंसी में सोचें तो कुछ करोड़ रुपए। एक पल के लिए सोचिए, अगर उस दिन उस बोल को फेंकने दिया होता तो क्या होता? अगर उसने सोचा होता क्या फायदा दिखाने का, अगर उसने उसे बेकार समझकर नजरअंदाज कर दिया होता तो? कहानी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन मेरे हिसाब से असली कहानी बोल की कहानी है ही नहीं, असली कहानी हमारी है।
हम सब अपनी जिंदगी में कई ऐसे बोस लेकर घूम रहे होते हैं जिनकी कीमत हमें खुद नहीं पता होती। किसी के पास लिखने का हुनर होता है, किसी के पास बोलने का हुनर होता है, किसी के पास सुनने का हुनर होता है, किसी के पास समझने का हुनर होता है, किसी के पास मुस्कुराने का हुनर होता है, किसी के पास लोगों को जोड़ने का हुनर होता है। लेकिन क्योंकि वो हुनर हमारे अंदर रोज रहते हैं, हमें लगता है उसमें कुछ खास है ही नहीं। एक गायक सोचता है सभी तो गा लेते हैं, एक राइटर शायद सोचता है सब लिख सकते हैं, एक टीचर सोचता है सब पढ़ा लेते हैं। बिल्कुल उस बोल की तरह जो सालों तक घर में पड़ा रहा और किसी ने उसकी कीमत पहचानी ही नहीं। दोस्तों, कभी कभी दुनिया हमारी वैल्यू हमसे पहले पहचान लेती है। आपने देखा होगा कई लोग स्कूल में एवरेज लगते हैं, बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल जाते हैं। कई लोग चुप रहते हैं, बाद में लीडर्स बन जाते हैं। कई लोगों को बचपन में अंडर एस्टिमेट किया जाता है और बाद में वही लोग इतिहास लिखते हैं, क्योंकि असली कीमत हमेशा पहली नजर में नहीं नजर आती। और यहाँ एक और गहरी बात छुपी है। वो बोल हजार साल पुराना था। सोचिए कितने लोगों के हाथ से गुजरा होगा, कितनी पीढ़ियां देखी होंगी उसने, कितने घर बदले होंगे और कितनी कहानियां सुनी होंगी। फिर भी वो बचा रहा और एक दिन उसकी पहचान हुई। बिल्कुल इंसान की तरह हम भी कितनी मुश्किलें देखते हैं, कितनी हार देखते हैं, कितनी निराशा, कितना इंतजार। लेकिन अगर हम टिक जाएं, तो एक दिन हमारी पहचान हो जाती है। मुझे लगता है जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि हम फेल हो गए, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हमने खुद को कभी पहचाना ही नहीं। हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी कि हमारे अंदर क्या छुपा है। हो सकता है आपके अंदर एक आर्टिस्ट हो, एक सिंगर हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, एक स्टोरी टेलर हो, एक हीलर हो, एक लीडर हो, एक राइटर हो। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर आप खुद को मौका ही नहीं देंगे तो दुनिया कैसे पहचानेगी? और इसीलिए आज रात जब आप घर जाएं, सिर्फ संदूक मत देखिएगा, थोड़ा अपने अंदर भी झांकिएगा। हो सकता है आपके अंदर भी कोई ऐसा खजाना छुपा हो जो सालों से धूल में दबा हुआ है। हो सकता है आप भी किसी के लिए अनमोल चीज हो। किसी अनमोल चीज को ऑर्डिनरी समझकर इग्नोर कर रहे हो। याद रखिए, हर पुरानी चीज बेकार नहीं होती, हर साधारण चीज आम नहीं होती, और हर इंसान उतना नहीं होता जितना वो आईने में नजर आता है। कभी कभी सबसे कीमती खजाने सबसे साधारण रूप में छुपे होते हैं, बिल्कुल उस पुराने बोल की तरह। मैं हूं आपकी आरजे तनुषा, मिलूंगी फिर आपसे एक और कहानी के साथ, जहां बातें होंगी इधर की उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: आंटी एक बैंक में गई और बैंक कर्मचारी से बोली, मुझे एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है। बैंक कर्मचारी बोला, जी मैम, किसके साथ? आंटी जी बोली, जिसके खाते में ढेर सारे रुपया हों।

0: का।
1: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर आएंगे। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें।
4: आइए दोस्तों, आपको बताते हैं ऐसी एक शख्सियत के बारे में जिनका देश प्रेम किस तरह से परवान चढ़ा और कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर एक मिसाल बन गया। उस दिन आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे।

वो नौजवान एक किताब को लफ्ज दर लफ्ज पढ़े जा रहा था और कभी आसमान की ओर तो कभी जमीन की ओर मुंह किए आंसू बहा रहा था। लिखने वाले इतालवी विचारक ग्यूसेप मैजनी ने क्या खूब लिखा था, हर लफ्ज धारदार। आपका देश आपका मंदिर होना चाहिए, शिखर पर ईश्वर और आधार में एक समान लोग। पर आपका देश तो गुलामी से लहू लुहान है, हम अपने देश को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हमें तो एक कदम रखते हुए भी देश का आभार मानना चाहिए, पर क्या हम ऐसा मानते हैं? वो युवा सोच सोच कर बिलख रहा था कि कोई इतने साफ तरीके से राष्ट्र व राष्ट्र प्रेम के बारे में कैसे बता रहा है। मैजिनी मनुष्य के कर्तव्य बता रहे थे कि आपका देश क्या है, देश आपसे क्या चाहता है, क्या केवल आप ही देश से उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं और देश आपके प्यार के लिए हर पल तरसता रहता है। देश के बिना आपके पास न तो कोई नाम है, न निशान है, न आवाज है, न ही कोई हक, पर ऐसे देश को आपने कितना प्यार दिया। मैजिनी यहां तक लिख देते हैं कि ईश्वर ने आपको मानवता की सेवा के लिए एक देश दिया है। अपने देश में किसी भी तरह की गुलामी और असमानता से मुकाबले के लिए आपका जन्म हुआ है। उस नौजवान की रुलाई रोके नहीं रुक रही थी। मैजिनी बताए चले जा रहे थे कि वोट, शिक्षा, कर्म, ये सब किसी देश के मुख्य स्तंभ हैं। जब तक आपके हाथ इन्हें मजबूती से खड़ा ना कर लें, आराम मत कीजिए। पर तब अपना देश भारत तो गुलाम था, वोट का सवाल पैदा नहीं होता और शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। नौजवान ने मैजिनी के लिखे हुए को बार बार पढ़ा और हर बार देश और मानवता के लिए आंखें बहती रहीं। उन्होंने दूर देश में हुए और समय के साथ बीत गए विचारक मैजिनी को ही अपना गुरु मान लिया। फैसला कर लिया कि अपना तन मन धन देश की सेवा के लिए समर्पित कर देना है। धिक्कार है अभी तक जो जीवन बीता वो अपने देश के काम ही नहीं आया। तब वो 3 रुपए की छात्रवृत्ति और शिक्षक पिता द्वारा भेजे गए 8 रुपए से काम चलाते थे। अक्सर भूखे रह जाते थे पर देश और समाज सेवा के बारे में लगातार सोचते रहते थे। सबसे पहले दुनिया को थामना होगा, उससे पहले देश को संभालना होगा और उसके लिए अपने समाज की चिंता करनी पड़ेगी और उससे भी पहले अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। संयोग से उन्हीं दिनों वो आर्य समाज से जुड़ गए और उससे अपने राष्ट्रवाद का मेल बैठाया। अंधविश्वास से दूर, वैज्ञानिकता और ज्ञान से भरपूर उनके राष्ट्रवाद ने उन्हें एक प्रभावी वक्ता बना दिया और लोग उन्हें लाजपत राय के नाम से जानने लगे। उनके सामने घर में ही चुनौतियां कम नहीं थीं। दादा जैन थे, पिता एक ऐसे हिंदू जो किसी भी मुसलमान से कम नहीं थे और मां सिख विधि विधान में जी रही थीं। पिता तो तभी मुस्लिम हो जाते जब लाजपत राय 2 साल के थे, तब ऐन मस्जिद की सीढ़ियों पर मां ने पिता को घेर लिया था कि ऊपर वाले की मर्जी समझो, उसने जिस धर्म में पैदा किया उसी में रहो, बच्चों की सोचो, मैं तो धर्म ना बदलूंगी। पिता तब भी दृढ़ थे पर शिशु लाजपत राय इतनी जोर से रोए कि तमाशा खड़ा हो गया। पिता नजरें झुकाए अपना परिवार लिए सीढ़ियां उतर आए। बहरहाल आर्य समाज ने लाजपत राय को मजबूत किया और उन्होंने पिता को भी समझाया कि कौन कहता है कि मूर्ति पूजा कीजिए, सगुण न सही निर्गुण रूप में भी ईश्वर को मानिए और वेद और सनातन को समझिए, उसके आडंबरों के अंदर मूल तत्व को जानिए। पिता को समझ आई कि बेटे की राह सही है, महत्व धर्म का उतना नहीं जितना देश और उसकी आजादी का है। देश सुखी और मजबूत होगा तो उससे धर्म की ही शोभा बढ़ेगी ना। अनेक समाज सेवा संस्थान, डीएवी शिक्षा संस्थान, पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी बीमा कंपनी, जाने कितने ही अनेक संस्थानों की रचना लाला लाजपत राय ने की। 28 जनवरी को जन्मे लाला लाजपत राय कोरे राजनेता नहीं थे, वो जमीनी काम करने वाले आदर्श समाजवादी थे। स्वभाव से निडर, खूब मेहनती और दिखावे से कोसो दूर। लाजपत राय ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल रहे जिन्होंने स्वराज को पहले समझा, कांग्रेस को बाद में समझ में आया और स्वतंत्रता आंदोलन के तेवर तीखे होते चले गए। उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते लाठियां भी खाईं और इसी वजह से उनकी शहादत हुई। ये शहादत भारत की आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा निर्णायक पल साबित हुआ। उसके बाद गरम दल के नेता हों या नरम दल के,
आजादी के रणबांकुरों ने पीछे पलट कर नहीं देखा। ऐसे थे लाला लाजपत राय।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुहारा।
1: इस दुनिया में अच्छे से अच्छे लोग अपना रास्ता बदल देते हैं, अगर आके कोई बता दे कि आगे पुलिस वाला चालान काट रहा है।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। विलुप्त होते बेजुबानों की सुध कौन ले रहा है? अब तो चुपचाप शाम आती है, पहले चिड़ियों के शोर हुआ करते थे। मोहम्मद अलवी का ये शेर लेख के अंत में समझ में आएगा कि यहां क्यों इस्तेमाल किया गया है। भारत देश इन दिनों हिंदू मुस्लिम की नापाक जंग के एक लंबे दौर से गुजर रहा है। CAA NRC पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद देश दो हिस्सों में बट गया है, एक इसके पक्ष में और एक इसके खिलाफ। टीवी डिबेट से लेकर चाय की टपरी तक हर जगह हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और शाहीन बाग ट्रेंड में बना हुआ है। लेकिन इस देशव्यापी गर्मा गर्मी के बीच भारत में रहने वाले पक्षियों को लेकर एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जिस और कम ही न्यूज प्लेटफॉर्म्स और राजनेताओं का ध्यान गया है। कुछ रोज पहले गांधीनगर में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर आयोजित 13वें COP सम्मेलन में स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि भारत में पक्षियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। स्थिति की दयनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि

जो वाले स्नेक ईगल, बड़ी कोयल, सामान्य ग्रीन शैंक जैसे पक्षी लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं भारत में 79% पक्षियों की संख्या घटी है। अब जब रिपोर्ट में कई प्रजातियों के विलुप्त होने की बात कही गई है तो सवाल उठना भी लाजमी है, और ये सवाल किसी एक पर नहीं बल्कि हम सभी पर उठता है। हम सभी मतलब जीव वैज्ञानिकों से लेकर सरकारी तंत्रों और आम इंसानों तक, जिनकी सुबह चिड़ियों की चहचहाट से होती है। गर्मियां शुरू होने को हैं और आसमान में उड़ते परिंदों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। पेट में भूख और कंठ में प्यास लेकर शहरों की छत के चक्कर लगाने वाले पक्षी हों या नदी नालों और जंगलों में बसर करने वाले बेजुबान, इन दिनों अपनी ही अनुकूल जगह पर घुटन महसूस कर रहे हैं। लेकिन 137 करोड़ की आबादी में सिर्फ कुछ फीसदी लोग ही ऐसे हैं जो निजी तौर पर पक्षियों के संरक्षण में योगदान दे रहे हैं, और ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। हाल में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP13 में खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विषय को संबोधित किया था, इसलिए ये कहना भी गलत होगा कि इस बात की जानकारी जिम्मेदार नेताओं या सरकारी तंत्रों को नहीं है। फिर ऐसी रिपोर्ट सामने आने के बाद भी हम भारत में सालों से रह रहे और प्रवासी पक्षियों को लेकर कितने गंभीर हैं, इस पर भी विचार किया जाना जरूरी है। लगातार घटती पक्षियों की संख्या से जीवन वैज्ञानिक चिंतित तो हैं, लेकिन इसकी मुख्य वजह और उसे रोकने के प्रभावी तरीके शायद ही किसी के पास हों। साथ ही पक्षियों की इस दयनीय स्थिति को लेकर सरकारी महकमा कितना गंभीर है, यह भी एक शोध का ही विषय है। अंत में इतना कहा जा सकता है कि शायद हमें आजादी से चली आ रही हिंदू मुस्लिम लड़ाई को अब पीछे छोड़ देना चाहिए और बेजुबानों की घटती संख्या पर गंभीरता अपनानी चाहिए। नहीं तो पहली पंक्ति में इस्तेमाल किया गया मोहम्मद अलवी का शेर हमारी आने वाली पीढ़ियों को कड़वा सच बनकर सताएगा, और इसके लिए इतिहास हमें कभी माफ नहीं कर पाएगा।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: थका मैं, हारा मैं, गिरा मैं, कदमों की आदत ये कब रही, इस तरह काटे रास्ते मैंने, मंजिलों की मेरी तलब रही। तुम्हें तो सिर्फ वो काला लैपटॉप का बैग नजर आता है, वो कंधों पे रोज न जाने क्या क्या दफ्तर ले जाता है। हर शख्स शहर में यहां अजनबी सा लगे, और मेरे गांव का वो बूढ़ा पेड़ भी मेरे यार सा है।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: एक लड़का जो था एग्जाम हॉल में बैठा बड़ा परेशान हो रहा था। टीचर उसके पास गया, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो, आ नहीं रहा क्या, क्वेश्चन बहुत टफ है। कहता नहीं सर, परेशान इसलिए नहीं हूं कि क्वेश्चन टफ है, मैं ये भूल गया हूं कि कौन से क्वेश्चन का जवाब मैंने रखा कहां है।

इंसानों को समंदर की थाह लेते देखा है, पृथ्वी से अंतरिक्ष में छलांग मारते देखा है, इंसान को भगवान के बाद नंबर दो बनते देखा है, आग से अणु तक, दूरियों से पहियों तक, भूख से अनाज तक, आंखों से रोशनी तक, अपनी हर जरूरत को पूरा होते देखा है, आवाज से भी तेज चलने वाले विमानों से लेकर धरती की सतह तले बसने वाली बस्तियों तक हमने हर नामुमकिन को मुमकिन होते देखा है, देख रहे हैं। आज हमारे पास समय को चुनौती देते हुए संसाधन मौजूद हैं। हम कुछ ही घंटों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं, पलक झपकते ही किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। जीवन को हर प्रकार के रस से भर सकने के साधन हमारे पास मौजूद हैं। फिर भी वो कौन

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: देखो भैया, जो तुम्हारे नसीब में है ना, बदल तो तुम सकते नहीं। सब्जी वाले की दुकान पर जो तुम आलू छांट छांट के अलग कर देते हो, लेते नहीं हो ना, वो सब समोसे टिकिया के रूप में आते तुम्हारे ही पेट में।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। रिश्तों की जमीन पे जज्बातों के पेड़। रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं, जितने रूप हम उनके जानते हैं उससे कहीं ज्यादा रूप होते हैं इनके। परत दर परत खुलती जाती है और जिंदगी में कभी हम इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाते कि हमने किसी रिश्ते को पूरी तरह समझ लिया है। जब हमें ऐसा लगता है तभी कोई ना कोई परत उधड़ जाती है और रिश्ते का एक नया अनदेखा पहलू हमारे सामने उजागर हो जाता है। रिश्ते दरअसल इस उपजाऊ जमीन की तरह है, जहां पर जज्बातों के तरह तरह के पेड़ पौधे पनपते हैं और हर पतझड़ हर बहार में रिश्तों को नई रंगत देते हैं। जब ये बहारों में झूमते हैं तो रिश्ते भी खिल उठते हैं, और जब पतझड़ में ये मलिन होते हैं तो रिश्ते भी उदास हो जाते हैं। रिश्तों की जमीन पर उगी छोटी सी बगिया का एक पौधा है विश्वास। यूं तो हर पौधे की अपनी एक अहमियत एक जरूरत है, लेकिन विश्वास नाम का यह पौधा हर रिश्ते के आगाज और पुख्तगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है। विश्वास एक ऐसा पौधा है जो बढ़ता तो बहुत धीरे धीरे है, लेकिन उखड़ एकदम से जाता है। कैसी अजीब बात है, जो पौधा नाजुक से नाजुक रिश्ते को एक मजबूती देता है, खुद इतना नफीस और नाजुक होता है कि हल्की सी धसक इसे जड़ से उखाड़ फेंकती है, और फिर भले ही उसे कितना ही अच्छे से फिर से रोपा जाए, ये पहले जैसा हरा भरा नहीं रह पाता। दरअसल इस पौधे पर उगने वाले फल भी वैसे ही होते हैं, जब तक पेड़ पर लगे हैं तभी तक स्वादिष्ट और सुंदर दिखते हैं। एक बार शाख से टूटकर गिरे कि जमीन पर कांच से छितरा जाते हैं। उम्मीद के फल, वफादारी के फल, सहयोग के फल, प्यार के फल, संभाल के फल। इसके एकदम विपरीत है शक का पौधा। पौधा क्या, विष बेल है। एक बार जड़ जमाने का मौका मिल जाए बस, तो फिर क्या मजाल कि कोई उखाड़ सके।

0: तो दोस्तों प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: हमारे जल संसाधन।
6: पानी या जल प्रकृति की अनमोल देन है। जीवन और उसके अस्तित्व के लिए यह इतना जरूरी है कि इसके बिना तो जीवन ही असंभव है। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, ना होता जल तो जग जाता जल। वास्तव में जीवन की उत्पत्ति जल से ही प्रारंभ हुई है। हमारे शरीर का लगभग 65% भाग पानी ही है। दैनिक जीवन की प्रत्येक घरेलू प्रक्रिया में, जैसे खाना बनाने से लेकर पीने के पानी तक, नहाने से लेकर कपड़े धोने तक, शॉर्ट से लेकर सफाई तक, प्रतिदिन एक व्यक्ति लगभग 120 लीटर पानी खर्च करता है, जिसमें औसतन 2 लीटर पानी पीने के लिए ही चाहिए।
7: हमारे देश में पानी का सबसे अधिक उपयोग कृषि में फसलों की सिंचाई के लिए होता है। मवेशियों को भी काफी मात्रा में पानी चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न उद्योगों में भी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक अच्छा घोलक, शीतक और सफाई का माध्यम है। बिजली बनाने का एक मुख्य साधन पानी ही है, जिसे जल विद्युत या पन बिजली कहते हैं। आज भी परिवहन का सबसे सस्ता साधन नदियों में चलने वाली नौकाएं या समुद्री जहाज ही हैं।
6: काफी हद तक मौसम भी तो पानी और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। जलाशय और खासकर विशाल सागर जो ऊष्मा ऊर्जा के बैंक का कार्य करते हैं, जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और उसे छोड़ते हैं। इस कारण समुद्र तट के क्षेत्रों की जलवायु समुद्र से दूर के क्षेत्रों से भिन्न होती है। समुद्र तट के इलाकों में न तो सर्दी में ज्यादा सर्दी और न ही गर्मियों में ज्यादा गर्मी ही पड़ती है।
7: मगर ये पानी आता कहाँ से है, यानी इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं?
6: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पर कुल पानी का लगभग 97% महासागरों और समुद्रों में है, जो कि धरती की 3/4 सतह पर फैले हुए हैं। समुद्र का पानी खारा होता है, इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। शेष 3% ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। इस 3% में से 2% जल हमारी पहुंच के बाहर है, क्योंकि ये जमा हुआ है। हिम के रूप में पहाड़ों की चोटियों पर, या ग्लेशियरों के रूप में, या फिर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और ध्रुवों पर बर्फ की विशाल और मोटी चादर के रूप में, जहां पेंगुइन और सील रहते हैं। इस प्रकार सिर्फ 1% जल ही नदियों और झीलों में है, या फिर भूमिगत जल जो हम कुओं और नलकूपों के द्वारा निकालते हैं, और कुछ हवा में नमी और बादलों के रूप में। इसे यूं समझें कि अगर धरती पर 9 चम्मच

0: पानी जमी हुई बर्फ के रूप में है तो नदियों में बहता पानी एक बूंद के बराबर है।
1: सच कहा जाए तो पानी हमारे आसपास चारों तरफ है। यहाँ तक कि रेगिस्तान की सूखी हवा में भी पानी की आर्द्रता अवश्य होती है। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में कुछ न कुछ मात्रा में पानी मौजूद रहता है और उसके नीचे भूमिगत जल।
0: आपने सही बताया, मगर पानी तो वर्षा से भी आता है।
1: हमारे खेतों की फसलों के लिए और पीने का पानी काफी मात्रा में वर्षा से ही आता है। इस विषय पर आप कुछ और बताना चाहेंगे?
0: हाँ, क्यों नहीं। हमारे देश में जलवायु की विविधताएं हैं। कहीं थार जैसे रेगिस्तान हैं, तो कहीं हिमालय जैसे बर्फ से ढके हुए पहाड़। इसलिए वर्षा में काफी असंतुलन और असमानता है। जैसे राजस्थान के जैसलमेर में 20 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा प्रतिवर्ष होती है, तो आसाम के चेरापूंजी में लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी तरह मुंबई और पुणे के बीच सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी पर भौगोलिक कारणों से मुंबई में मानसून के समय लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इतने ही समय में पुणे में लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तभी तो किसी कवि ने कहा है, भारत तेरी अजब कहानी, दो कोस पर बदले पानी और 100 कोस पर वाणी।
1: फिर भी हम वर्षा के मामले में भाग्यशाली हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में औसत प्रतिवर्ष 115 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो विश्व के अन्य भागों की तुलना में बहुत अधिक है। भारत सबसे अधिक वर्षा के क्षेत्र में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कई कारणों से कुल वार्षिक वर्षा का 10वां भाग ही हम उपयोग में ला पाते हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर स्थितियां बदली नहीं तो आज से 40 वर्ष बाद भी 1/4 से ज्यादा पानी हम उपयोग में नहीं ला सकेंगे।
0: हमारे देश में व्यापक जल स्रोतों का प्राकृतिक खजाना है। कहीं विशाल नदियां, तो कहीं आभूषणों जैसी झिलमिलाती झीलें, कहीं झरझर करते जलप्रपात। और तीन तरफ फैला लंबा समुद्री किनारा, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है।
1: पानी तो एक मुख्य समाचार बन जाता है जब देश के किसी भाग में सूखा पड़ जाता है

0: या गर्मियों में महानगरों में पानी का अभाव हो जाता है, जीवन के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।
1: हमारे देश में पानी की प्रत्यक्ष अधिकता भ्रामक है और हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें पानी का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी का हम दुरुपयोग भी करते हैं और कभी कभी अधिक और अनुचित उपयोग भी करते हैं। परिणाम स्वरूप पानी की गंभीर कमी की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं।
0: हमारे देश में हर एक को आवश्यकता अनुसार पानी क्यों नहीं मिल पाता है, इसके क्या कारण हैं?
1: पानी की कमी के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती हुई पानी की आवश्यकताएं, पीने के पानी का मुख्य स्रोत भूमिगत जल है। अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यह संसाधन तीव्र गति से कम हो रहा है। कई प्रदेशों में भूमिगत जल का बहुत उपयोग होने लगा है। भूमि के नीचे से जल निकालने की दर भूमि में जल रिसने की दर से अधिक है। परिणाम स्वरूप भूमिगत जल स्तर यानी वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है।
0: देखिए, बरसात तो सिर्फ वर्षा ऋतु में होती है ना, इसलिए दूसरे समय के लिए पानी का संचय करना पड़ता है, और पानी का संचय करना कोई आसान काम नहीं है।
1: पानी को जमा करके रखने का एक मुख्य तरीका है बांध बनाना। पानी को बड़े पैमाने पर बांध बनाकर उसे एक जगह पर विशेष उद्देश्यों के लिए रोक लिया जाता है। बांध के जल का उपयोग कृषि में सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से किया जाता है और सूखे में पानी की कमी से बचा जा सकता है। भारत में भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध, मिस्र में अश्वान बांध और पाकिस्तान में तरबेला बांध और अमेरिका में कूली और हैवर बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के उदाहरण हैं। वर्षा के पानी को जमा करके खेती के लिए और यहाँ तक कि घरेलू जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सावधानी से जमा किया हुआ पानी साफ होता है और सुरक्षित भी।

0: रेडियो 10 के अभिल 90.8 एफएम जाबुआ की आवाज।
1: वन में मेरा मन है। पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन बचाएं। अमित बेटा।
2: जी माँ।
1: मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दादाजी और सोनिया दीदी के पास जाकर बैठो।
2: ठीक है माँ।
1: और हाँ, देखो उन्हें तंग मत करना।
2: अच्छा माँ, मगर तुम जल्दी आना।
1: हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम जाकर खेलो।
2: अच्छा माँ।

0: सोनू दीदी बोलो, ये देखो मैंने शेर का चित्र बनाया है।
1: अरे वाह, इतना सुंदर।
2: अरे वाह भाई वाह अमित, अरे तुमने तो शेर का चित्र बहुत अच्छा बनाया है।
1: शेर तो जंगल का राजा होता है, पर अमित तुमने जंगल तो बनाया ही नहीं।
0: अरे हाँ सुनू दीदी,
1: हाँ
0: ये जंगल कैसा होता है?
1: जंगल
2: जंगल हमारे गांव के पास ही है बेटे।
1: बिल्कुल ठीक।
2: देखो जंगल का मतलब

0: शीशे लोहे का उपयोग कर सकते हैं।
1: दादाजी
0: बोलो बेटे,
1: हम पेड़ काटने से पहले पेड़ लगा भी तो सकते हैं।
0: अरे वाह वाह अमित भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटे। सोनिया बेटी।
2: हाँ जी।
0: देखो जरा कौन आया है।
2: हाँ दादाजी, मैं अभी देखती हूँ।

0: रेंजर चाचा आप? आइए नमस्ते।
1: नमस्ते बेटी नमस्ते। काका नमस्ते।
2: अरे भाई रेंजर, आओ भाई, और सुनाओ कैसे हो? आओ इधर आओ, इधर
1: सब ठीक है काका।
0: चाचा जी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा, और सुनाओ बच्चों, दादाजी से क्या बातें हो रही थी?
0: हम जंगल के बारे में बात कर रहे थे चाचा जी।
1: अच्छा
0: रेंजर चाचा, आप तो जंगल में रह चुके हैं।
1: हाँ?
0: आप हमें बताइए कि वनों को बचाने के लिए लोगों को कैसे बताया जाए?
1: बच्चों ये बातें अनेक तरीकों से बताई जा सकती हैं।
0: वो कैसे?
1: जैसे टीवी रेडियो पर वनों के महत्व को बताकर, अखबारों में वनों के महत्व पर लेख लिखकर,
2: बिल्कुल,
1: और पोस्टर बैनर के जरिए वन बचाने का संदेश देकर।
0: अच्छा चाचा जी, वनों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है?
1: बच्चों पेड़ों को बचाने के लिए अनेक आंदोलन हुए हैं।
0: अच्छा।
1: वर्षों पहले उत्तराखंड के लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसमें गांव के सभी लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया।
2: देखा बच्चों?
0: हाँ दादाजी।
1: ठीक इसी प्रकार कर्नाटक के सिरसी जिले के सालकड़ी गांव के निकट एक जंगल में अप्पिको आंदोलन शुरू हुआ। वहाँ वन विभाग ने जब पेड़ काटने शुरू किए तो गांव के स्त्री पुरुष और बच्चे पेड़ों से चिपक गए।
0: अच्छा।
1: इससे मजबूर होकर पेड़ काटने का काम रोकना पड़ा।
2: देखा?
1: इसी तरह राजस्थान के खेड़जली गांव और उत्तरकाशी क्षेत्र के तिलाड़ी गांव के लोगों ने वनों को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है।
2: अच्छा भाई रेंजर, ये बताओ कि इस विषय में हमारी सरकार क्या कर रही है?
1: काका हमारी सरकार ने भी वनों को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
0: वो कौन सी कदम है चाचा जी?
1: जैसे बिना इजाजत पेड़ काटने वालों को जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ती है।
0: अच्छा।
1: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वनों की कटाई पर नजर रखता है और इसके अलावा सरकार ने सामाजिक वानिकी नाम की एक योजना भी बनाई है जो अब कई जगह चल रही है। इस योजना के तहत लोगों को ये बताया गया है कि गांव के लोग खुद पेड़ लगाएं।
0: अच्छा।
1: और वन काटने के बजाय इन्हीं पेड़ों से अपनी जरूरतों को पूरा करें।
0: अच्छा।
1: और झूम खेती करने वालों के लिए सरकार ने एक स्थायी कृषि प्रणाली बनाई है ताकि लोग झूम खेती छोड़ दें।
0: अच्छा।
1: इन सब के अलावा जंगलों की रक्षा से संबंधित शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए हमारी सरकार ने अनेक शिक्षण संस्थान भी खोले हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे वन अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी।
0: चाचा जी।
1: हाँ बेटा।
0: फिर तो मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा कि वन कितने जरूरी हैं।
1: शाबाश।
0: हाँ, और मैं भी अपने हर एक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और अपने सभी साथियों को भी पेड़ लगाने को कहूंगी।
1: बहुत अच्छे।
2: अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बगीचे में चलकर इसकी शुरुआत आज ही से करें।
0: चलो चलो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: दो गौरैया।
2: इस घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगू संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि दो गोरैया सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई, पिताजी देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही हैं?
3: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं।
2: अच्छा,
3: देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर।
2: हाँ, अरे हाँ हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
4: दो तीन दिन बाद क्या देखते हैं कि गोरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है। माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं।
3: अब ये देखो, इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया, उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से।
5: अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
3: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे हैं। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
5: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
3: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़। इसमें हंसने की क्या बात है?
5: चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
3: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
5: ठीक है,
3: चल चल चल, हट हट।
5: ये अब नहीं निकलेंगी।
3: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
4: मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गोरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती तो कभी किचन के दरवाजे पर, उधर माँ को चिठोली सूझती।
5: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ
3: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
2: जी,
3: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे
2: जी,
3: वो सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख
2: जी। अच्छा पिताजी।
3: हट, हट,
4: अब पिताजी लाठी उठाकर फिर गौरैया से लोहा लेने को लपके। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची।
5: अरे अरे,
3: अरे
5: क्या करते हो जी,
3: गलती से लग गया।
5: आराम से।
4: गोरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। माँ तालियां बजाने लगी और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
3: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
4: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
3: अरे
5: वो देखो, फिर से आ गई घर में।
4: दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गोरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
3: देखता हूँ मैं तो।
5: अरे सुनो सुनो, देखो जी इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
3: बाहर मत निकालो, तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
5: सुनो तो, रुक जाओ।
4: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़े और उन्हें बाहर खदेड़ दिया।
3: गई।
4: दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठे। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही है। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
6: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अभी चूर कर ये।
4: दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो न जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठा कर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंसती,
5: तुम्हारे बस की नहीं है।
3: फिर कोशिश करता।
4: तभी मेरी नजर बाहर बैठी गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
3: क्या देखो,
4: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा ची ची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके। बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
3: पिताजी देखो देखो देखो, ऊपर देखो माँ, पिताजी
5: हाँ।
3: वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे।
5: अरे हाँ बेटी।
4: अरे पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। ची ची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ है, कहाँ है हमारे माँ बाप। माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
5: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया। आ जाओ गोरैया।
4: और तभी गोरैया झट से उठकर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली।
3: अरे
4: वो उनकी नन्हे नन्हे चूचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे।
3: सच में
7: छोटे और बड़े।
8: अरे छोटे बड़े।
9: जी दादाजी।
8: मैंने तुम्हारे लिए जगह बना दी है ताकि तुम यहाँ आराम से रह सको।
9: जी दादाजी।
8: यहाँ जगह भी अच्छी है और खाने को भी कितना कुछ है। जाओ बेटा अब तुम खेलो।
9: हम खेलेंगे।
8: हाँ जाओ बेटा
9: खेलेंगे।
10: ओ भाई छोटे।
11: हाँ भाई बड़े।
10: आज हम पार्टी करते हैं।
11: हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, लेकिन पार्टी किस खुशी में?
10: हम यहाँ इतने दिनों से रह रहे हैं बिना किसी परेशानी के।
11: हाँ भाई बड़े ये तो तुमने सही कहा, यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं। हमें तो यहाँ खाना भी कितना अच्छा मिलता है और हमारी तो रहने की जगह भी बढ़ती जा रही है।
10: सही कहा भाई तुमने, अब हम अपने और दोस्तों को भी यहाँ रहने के लिए बुला सकते हैं।
11: हाँ भाई बड़े मैं भी अपने सारे दोस्तों को बुला लूँगा।
10: सभी मिलजुल कर रहेंगे, रोज पार्टी करेंगे।
11: हाँ हाँ हम सब खेलेंगे और खूब पार्टी करेंगे।
1: इस तरह छोटे और बड़े वहाँ बड़े आराम से रहने लगे। क्या आप जानते हो वो छोटे और बड़े कौन थे और वो कहाँ रहने लगे? सोचो। सोचो सोचो। नहीं समझ आया तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। वो छोटे और बड़े कोई और नहीं बल्कि चीनू के दांत में रहने वाले कीटाणु थे और चीनू चॉकलेट खाकर बिना ब्रश किए जो सो गई थी। इसलिए आज छोटे और बड़े अपने और दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे।

0: मेरे को तो चॉकलेट और मिठाई मिली।
1: छोटे
2: हाँ भाई बड़े,
0: चलो और कुरेदते हैं दांतों में।
2: हाँ लगता है कुछ और खाने को मिले।
3: कीटाणुओं के शोर करने से चीनू के दांत में दर्द हो जाता है और उसकी नींद टूट जाती है, और वो इसकी शिकायत अपनी मम्मी से जाकर करती है।
4: आ, आ, आ, मम्मा मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
5: क्या दांत में दर्द? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना रोजाना ब्रश किया करो।
4: मम्मा मैं तो रोज ब्रश करती हूँ।
5: तुम सिर्फ सुबह ब्रश करती हो ना, रात को तुमने चॉकलेट खाई थी तब किया था ब्रश?
4: नहीं मम्मी।
5: देखा अब दिखाओ जरा कहाँ हो रहा है दर्द। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ तुम्हें। परेशान मत हो, दर्द ठीक हो जाएगा, बस जल्दी से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा।
3: चीनू की माँ और चीनू डॉक्टर के पास जाते हैं।
5: नमस्ते डॉक्टर साहब।
6: अरे नमस्ते नमस्ते कमला जी, आइए आइए।
5: देखिए ना डॉक्टर साहब, इसके दांत में दर्द हो गया है।
6: बस बस घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा?
4: चीनू।
6: चीनू, लगता है चीनी ज्यादा खाती हो हैं? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा मुँह खोलो मुँह खोलो। हाँ थोड़ा सा और। एक सेकंड बस, ये लो इस पे दवा लगा देता हूँ। हाँ इसे खा के कुल्ला करो, बस अब कुछ दर्द कम हुआ बेटा? हुआ ना? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखो बेटा ये जो तुम्हारा दर्द है ना, ये कीटाणु की वजह से है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं। और ये इसलिए लगता है क्योंकि आप समय से दो बार ब्रश नहीं करते होंगे, क्यों है ना कमला जी?
5: जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
6: देखो बेटा कभी भी लापरवाही मत करना, क्योंकि दांत जो है हमारी सुंदरता का प्रतीक है ना, कितने अच्छे लगते हैं दांत। तो इसीलिए हमेशा दो बार, एक तो हमें सोकर उठने के बाद ब्रश करना चाहिए, और उसके बाद सोने से पहले यानी रात को भी ब्रश करना चाहिए। और हमें कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या पता है? ऊपर नीचे, ब्रश को ऊपर नीचे करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि खाने का कोई भी अंश दांतों में फंसा ना रह जाए, समझे? और हाँ समय समय पर डॉक्टर से दांतों की जांच भी करवानी चाहिए। कमला जी आगे से आप भी ध्यान रखिएगा।
5: जी बिल्कुल।
6: है ना
4: डॉक्टर साहब, क्या मैं कभी चॉकलेट नहीं खा सकती? कभी नहीं मीठा खाऊंगी मैं।
5: डॉक्टर साहब इसको मीठा बहुत पसंद है, ये मीठा के बगैर नहीं रह सकती।
6: समझ गया। देखो बेटा ऐसी बात नहीं है कि तुम मीठा नहीं खा सकती, तुम मीठा बिल्कुल खा सकती हो, चॉकलेट भी खा सकती हो, मिठाई भी खा सकती हो, लेकिन हाँ खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना और दांत अच्छे से साफ करके सोना, जैसे मैंने बताया दो बार ब्रश। समझ गए ना? और एक बात और, अगली बार जब आओगी ना तो हमारे लिए भी चॉकलेट लेकर आओगी। लाओगी चॉकलेट? ये हुई ना बात। शाबाश, जाओ शाबाश।
3: ये सारी बातें सुनकर चीनू के दांत के कीटाणु परेशान हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं।
0: अरे भाई छोटे।
4: हाँ भाई बड़े।
0: आप तो हमारे आराम के दिन गए।
4: हाँ
0: हम तो अब भूखे ही रह जाएंगे।
4: हाँ, चलो दादाजी से चलकर।
0: हाँ चलो चलो दादाजी। दादाजी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है।
4: भूख लगी है।
7: हाँ बेटा मैं समझता हूँ। बेटा ये जगह अब बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है और यहाँ खाने को भी अब कुछ नहीं रहा। चलो हम किसी और दांत में चलकर वहाँ जगह बनाते हैं। चलो
0: चलो आओ, दादा, चलो
4: चलो
0: दादा, चलो।
3: इस तरह सारे कीटाणु चीनू का दांत छोड़कर नए घर की तलाश में निकल जाते हैं। चीनू भी अब रोज रात को ब्रश किए बिना नहीं सोती। बच्चों, अगर आप नहीं चाहते जो कीटाणु अभी अभी बेघर हुए हैं वो आपके दांत में आकर अपना घर बना लें, तो आप भी चीनू की तरह रोज रात को ब्रश करने की आदत डाल लें।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी RJ राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके

0: उपाय है।
1: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
0: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे।
1: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
0: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
1: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर सिंह के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
0: जी ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
2: जी मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
1: जी बताइए।
0: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की गोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
0: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
1: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
0: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
1: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
0: जी
1: और डॉक्टर साहब
3: क्या फाइलेरिया की बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
1: बताइए।
0: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
1: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
0: ये जब अभियान चलता है हम सभी से यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
1: जी और डॉक्टर साहब एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण मौसम या उम्र में ही होता है?
0: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
1: अच्छा। जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक ज्यादा
0: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
3: जी। और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
1: जी बताइए।
0: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।

0: जी
1: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
2: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो। टंट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
8: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। किसान साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। किसान साथियों, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगा हुआ है। वैसे ही किसान साथियों, आज पुनः हम आपके सामने प्रस्तुत है कुछ और नए बिंदुओं को लेकर, खेती बाड़ी से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। तो आज हम चर्चा करेंगे कृषि से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और जानेंगे कैसे हम हमारी आय के स्रोतों में वृद्धि कर सकते हैं, कैसे हम हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि कर सकते हैं, कैसे हमारी आमदनी को हम बढ़ा सकते हैं और इसमें कैसे हमें एक रोजगार के अवसर कौन कौन से हैं कृषि में, और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। परंतु आज का जो हमारा विषय है वो है सब्जियों की खेती के ऊपर। सब्जियों की खेती हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है और सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी आवश्यक है, कितनी मात्रा में हमें सब्जियों का फलों को लेना चाहिए हमारे रोजमर्रा के भोजन में, आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
9: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
10: का उपयोग रोजाना के भोजन में किया जाना जरूरी है। इसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में और विटामिन, खनिज लवण और रेशा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो संतुलित भोजन का आधार है। लेकिन हमें रोजाना के भोजन में सब्जियों की प्रचुर मात्रा मिलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि सब्जियों की खेती और उनकी पैदावार अच्छी हो। सब्जी फसल की अच्छी पैदावार तभी मिलेगी जब हम फसल में समसमायिक कार्य करेंगे और समय एवं मौसम के हिसाब से सब्जी फसल की देखभाल करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सब्जी उत्पादन और पोषण सुरक्षा के तमाम पहलुओं के ऊपर, करेंगे विचार विमर्श। सब्जी उत्पादन और पोषण सुरक्षा पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सब्जी विज्ञान के प्रमुख डॉक्टर बीएस तोमर जी।
11: नमस्कार।
10: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश जी।
11: नमस्कार।
10: और इसके साथ ही प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सचिन सुरेश जी, और आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट।
9: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का बहुमुखी योगदान है, लेकिन पोषण सुरक्षा पर भी जोर दिया जाना जरूरी है। सब्जियों से विभिन्न प्रकार के औषधीय पोषक तत्व और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। सब्जियों में आलू वर्गीय, कद्दू वर्गीय, गोभी वर्गीय सब्जियों, दलहनी सब्जियों और पत्ते वर्गीय सब्जियों जैसे पालक और मेथी आदि का काफी औषधीय महत्व है। ऐसे में स्वस्थ जीवन के लिए इन सब्जियों का उपयोग औषधीय खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। सब्जियां सूक्ष्म तत्व जनित कुपोषण को दूर करने में सहायक होती हैं। इस संदर्भ में सब्जियों के उत्पादन और वर्ष भर इनके ताजे और प्रसंस्कृत उत्पाद के रूप में बाजार में उपलब्धता को सुनिश्चित करना काफी जरूरी है, और इसके लिए किसानों को न सिर्फ सब्जी फसलों की अधिक से अधिक खेती करनी होगी, बल्कि फसल की अधिक पैदावार के लिए उनमें समसामयिक कार्य भी करने होंगे। जैसे इस समय बैंगन, मिर्च व भिंडी की फसलों में निराई गुड़ाई व जल निकास एवं रोग व कीटों से रोकथाम की व्यवस्था करें। बैंगन में रोपाई के 30 दिनों बाद 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, मिर्च में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और फूलगोभी में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग प्रति हेक्टेयर की दर से करें। इस समय बैंगन में कॉक्सिनेला बीटल का प्रकोप होता है, इससे बचाव के उपाय करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में प्रति हेक्टेयर 25 किलो नाइट्रोजन या 54 किलो यूरिया को दो भागों में बांटकर बुआई के 30 या 45 दिनों बाद टॉप ड्रेसिंग करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में मचान बनाकर उस पर बेल चढ़ाने से पैदावार में बढ़ोतरी होगी और फल स्वस्थ होंगे। सभी सब्जियों में उचित जल निकास की व्यवस्था करें। पूसा संकर 3 लौकी की बुआई इस महीने की जा सकती है और इस किस्म की तुड़ाई 50 से 55 दिनों में शुरू हो जाती है। वहीं खीरा और अन्य सब्जियों को फल छेदक कीटों के हमले से बचाएं। मिर्च की फसल में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई, सिंचाई व जल निकास की उचित व्यवस्था करें। भिंडी की फसल में बुआई के 50 दिनों बाद 40 किलोग्राम नाइट्रोजन या 87 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से दूसरी टॉप ड्रेसिंग करें और भिंडी की तुड़ाई सही समय पर करें। आमतौर पर फूल आने के 8 से 10 दिनों के भीतर भिंडी की फली की तुड़ाई जरूरी है। इस तरह अगर सही समय पर सब्जियों की बुआई और उनमें समसामयिक कृषि कार्य किए जाएं, तो सब्जी फसल की अच्छी पैदावार के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है।
1: तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट, और आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं डॉक्टर बीएस तोमर का। डॉक्टर तोमर, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सब्जी उत्पादन और पोषण सुरक्षा के बारे में, तो ये हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है?
2: देखिए ज्योत्सना जी, पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे देश में कितना सब्जी उत्पादन हो रहा है और कितनी हमें और इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जी फसलों में हमारी पैदावार दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत अच्छी है
1: जी।
2: और हमारी जो आबादी है उसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये मूल्यांकन करें कि हमें कितनी सब्जियों की आवश्यकता है, अगर हम उत्पादन के आंकड़ों को आबादी के हिसाब से बांट करके देखें तो हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी के लिए तकरीबन 300 ग्राम से अधिक सब्जी की उपलब्धता आती है
1: जी।
2: लेकिन अगर उसमें से हम जो सब्जियां हमारी कटाई के उपरांत खराब हो जाती हैं या उनका प्रसंस्करण हो जाता है या उनका विदेश में निर्यात हो जाता है, उस मात्रा को अगर हम निकाल दें तो हमारी प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है सब्जियों की वो कम होती है। अब हमारी प्रश्न है कि हमारी जो कितनी सब्जियों का इस्तेमाल हमको प्रतिदिन करना है, इसमें हम बताना चाहेंगे कि हमारा राष्ट्रीय पोषण आहार संस्थान है हैदराबाद में, या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जिसको हम आईसीएमआर के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है। अगर हम ये 300 ग्राम सब्जी प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं प्रति व्यक्ति, तो निश्चित रूप से हमारी जो शरीर की पोषण की आवश्यकता है जिसमें हमें प्रतिदिन विटामिन्स, मिनरल्स, रेशा या ऐसे रसायन तत्व जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। और इस प्रकार से हमारी जो आबादी है, हम उसको सब्जियों के माध्यम से बेहतर पोषण दे सकते हैं, बेहतर स्वास्थ्य देने में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। और पिछले 2 सालों में जो कोरोना वैश्विक महामारी हमारे पूरी दुनिया ने देखी है, उसमें निश्चित रूप से सब्जी फसलों का या बागवानी फसलों का विशेष महत्व सामने आया है, क्योंकि ये ऐसी फसलें हैं जो ना कि व्यक्तियों को या उनको स्वास्थ्य के साथ साथ देश में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करती है और हमारे उद्योगों के विकास में मददगार होती है और साथ ही साथ इनके प्रसंस्करण या इनके वैल्यू एडिशन की भी अपार संभावनाएं हमारे देश में हैं, जिससे कि हम अपनी बढ़ती हुई मांग को विशेष करके शहरी क्षेत्रों में, जो हमारे दोनों परिवार के सदस्य पति पत्नी जॉब में आते हैं, उनके पास सब्जियों को तैयार करने का समय कम होता है, ऐसे में ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके परिवार में भी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 300 ग्राम से अधिक सब्जियों का इस्तेमाल हो, तो उसमें मूल्य संवर्धित सब्जियों का भी महत्व है, ताकि वो कम समय में उनको तैयार करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए उपलब्ध करा सके।
1: बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि जो सब्जी उत्पादन है और जो पोषण सुरक्षा है वो आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, रुक करते हैं डॉक्टर दिनेश का। डॉक्टर दिनेश, आपसे हम बात करने वाले हैं रोगों के बारे में, तो सबसे पहले हमारे जो किसान हैं उनको आप ये बताएं कि सब्जियों में किसी भी प्रकार का रोग ना लगे उसके लिए बीजोपचार जो है वो बहुत जरूरी होता है, तो किस तरह से बीजोपचार वो कर सकते हैं जिससे कि आगे सब्जियों को किसी भी तरीके का नुकसान ना झेलना पड़े।
3: ज्योत्सना जी, सब्जी उत्पादन के उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रति मतलब हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी जितनी संख्या है, जनसंख्या है, उसके हिसाब से हमें, जैसे डॉक्टर तोमर ने कहा कि 300 ग्राम करना है, तो 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाना है, तो इसको पूरा करने के लिए बीज उपचार, क्योंकि कई बीमारियाँ होती हैं, जैसे इसमें अल्टरनेरिया का, जिसमें कॉलीफ्लावर आते हैं, फूल गोभी होती है, उसमें बीज के द्वारा आते हैं, तो बीज का उपचार करना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि उसका जो प्राइमरी जो इनाकुलम होता है, जो पैथोजन होता है, जो रोग फैलाता है, वो बीज पे होता है, तो उसको हमको वहां से खत्म करना है, जिससे कि वो आपके मेन फील्ड में न जा सके या जो आप नर्सरी डाल रहे हैं उसमें वो न जा सके। तो इसके लिए एक बीज उपचार करना दो तरह से हम कर सकते हैं। पहला बीज उपचार हम कवकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। कवकनाशी के लिए दवा जैसे कार्बेंडाजिम आती है, उसका 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप कर सकते हैं, या उसमें हमारे जो थेराम है, थेराम फंजीसाइड्स हैं, उसको हम उपचार कर सकते हैं 2.5 ग्राम पर किलोग्राम बीज के हिसाब से, या उसमें होता है जैविक उपचार। जैविक उपचार का मतलब होता है कि जिसमें बायो कंट्रोल, जैसे सीडोमोनास का है, ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा को आप 4 ग्राम या 5 ग्राम पर किलो जो पाउडर बन के आता है, टर्कम पाउडर बेस होता है, उसके लिए उपचारित करना चाहिए पर केजी के हिसाब से। उपचारित करने के लिए होता है कि आप बड़ा सा बर्तन ले लिए, जैसे आप क्वांटिटी आपकी बीज है, सब्जियों को इसे कम मात्रा में बीज लगता है, उसी हिसाब से आप एक बर्तन लीजिए और उसमें बीज डालिए 1 किलो, जैसे 1 किलो है या जिस हिसाब से है उसी हिसाब से आप फंजी साइज उसमें डाल के थोड़ा मॉइस्चर कर लीजिए और फिर उसको मिला दीजिए ठीक से उसको, और फिर थोड़ा सा छाई में सुखा के फिर आप प्रयोग करें। इसी तरह से जैविक नियंत्रक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं कि जो 4 से 5 ग्राम पाउडर बायो कंट्रोल, चाहे ट्राइकोडर्मा हो या सुडोमनास हो या बेसिलस हो, ये सुडोमनास और बेसिलस ये मतलब जीवाणु है और ट्राइकोडर्मा कवक होता है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि रोग जो बीज के द्वारा फैलता है वो नहीं फैलेगा, तो इससे आप नियंत्रित कर सकते हैं।
1: तो अभी बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर हमें डॉक्टर दिनेश ने दी, किस तरह से आप जो है वो बीजोपचार कर सकते हैं जिससे किसी भी तरीके का रोग जो है वो आपकी सब्जी फसल को ना लगे। कीटों के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है, तो इसके लिए आइए रुक करते हैं डॉक्टर सचिन का। डॉक्टर सचिन, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमने रोगों के बारे में जाना बीजोपचार का, क्या कीटों का प्रबंधन करने के लिए भी बीजोपचार पहले करना जरूरी है, और अगर है है, तो किस तरह से हमारे किसान कर सकते हैं जिससे कि कीटों का प्रकोप सब्जी फसल पे ना हो पाए और बाजार में जब उनकी सब्जी की फसल जाए तो उनको उससे आर्थिक मुनाफा भी मिले।
4: सब्जी का महत्व बहुत अभी बढ़ गया है जैसे कोरोना के बाद, जैसे अभी सब्जी और एवं फल उसका उत्पादन और जैसे हम अभी खाना भी लोगों ने ज्यादा शुरू कर दिया है क्योंकि उससे भरपूर मात्रा में विटामिन्स मिलते हैं, फिर मिनरल्स मिलते हैं
1: जी।
4: और जैसा कि सर ने बताया कि कुछ रोग जैसे साहब ने बताया विल्ट आता है, ब्लाइट्स आते हैं, तो उसके लिए बीजोपचार किया जाता है। तो मैडम जैसे सब्जियों में जैसे बैंगन है, टमाटर है, उसमें एक सूत्रकृमि नाम का एक रोग लगता है सूत्रकृमि से, तो उससे जड़ों पे गांठे बनती है। तो मैडम अगर हमारे पास अगर नर्सरी के टाइम में भी अगर हम सीड डाल रहे हैं तो उसमें हम नर्सरी को भी हम उसको उपचारित कर सकते हैं। जैसे कार्बोप्यूरान नाम की एक दवा आती है, जैसे 3 ग्राम प्रति वर्ग किलो वर्ग मीटर में आपको डालनी है, तो उसके उसको गांठों को मारता है। और अगर नर्सरी अगर आपने ट्रीट नहीं की है उससे, तो आप कार्बोसल्फान नाम की दवा आती है, तो उसका ढाई एमएल प्रति 10 लीटर में घोल बना के जो भी आपके ट्रांसप्लांटिंग के लिए आपके पौधे तैयार है जैसे टमाटर की है, बैंगन की है, तो उसको आप 20 से 25 मिनट उसमें डुबा के रखिए, फिर आप उसको मेन नर्सरी में लगा सकते हैं। और जैसे सब्जियों के फसल में जैसे अब इमिडाक्लोपिड नाम की एक दवा आती है, उससे हम बुरी उपचारित करते हैं, लेकिन बाकी फसलों में जैसे कपास है या अदर, लेकिन जैसे सब्जियों के फसल में मैडम जैसे पत्ती वाली सब्जी होगी तो लगाने के 20-25 दिन के बाद ही हम उसको खाने के लिए तोड़ते हैं, तो उसके लिए उसका बीज उपचारित करना अच्छा नहीं है क्योंकि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जाता है। तो टाइको सूत्रकृमि के लिए आप जरूर बीज उपचारित कर सकते हैं। जैसे आप कुछ मैंने कार्बोसल्फान बताया तो क्लोरोपाइरीफास नाम की भी दवा आती है, उसका भी आप 2 से 2.5 ml का एक घोल बना के 10 लीटर में आप उसको भी बैंगन या टमाटर है उसके पौधों की जड़ों को आप उपचारित करके लगा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और काफी अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। और हम अभी आपसे आगे ये भी जानेंगे कि कौन कौन से प्रमुख कीट हैं जिनका प्रकोप हो सकता है सब्जियों पर, लेकिन डॉक्टर तोमर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इस समय हमारे कौन कौन से क्षेत्र के जो किसान हैं कौन कौन से सब्जी फसल लगा सकते हैं।
2: देखिए जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से निरंतर रुक रुक के वर्षा होती रही है, इससे सब्जी फसलों की रोपाई एवं बिजाई में देरी हुई है या कई किसान भाइयों की पौध तैयार रही है, विशेष करके जैसे मिर्च है, बैगन है, फूल गोभी की अगेती किस्म है, या प्याज की जो पौध से रोपाई होनी है खरीफ प्याज की, या गांठों से प्याज की रोपाई होनी है, और या सीधे बिजाई होनी है मूली की, पालक की, या पत्तेदार सब्जियों में दलहनी फसलों में लोबिया, सेम आदि की जो रोपाई है उसमें कहीं ना कहीं देरी हुई है। हालांकि वर्षा किसानों के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छी है और इससे जो जल की गुणवत्ता हमको मिलती है वो बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे कि अभी हमारे अगर पत्तेदार सब्जियों की बात करें तो अभी हमारे किसान भाई दिल्ली उसके आसपास या उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में पालक की जो आल ग्रीन किस्म है या भारती पूसा भारती, इन दोनों किस्मों को बिजाई के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं दलहनी फसलों में लोबिया की, तो हमारे किसान भाई पूसा धारणी, पूसा कोमल, पूसा सुकोमल आदि किस्मों का इस्तेमाल बिजाई के लिए कर सकते हैं। अगर हम सेम की बात करते हैं तो सेम में हमारे किसान भाई पूसा सेम 3, पूसा सेम 2, और भाई हमने पूसा की एक किस्म का और विकास किया है जिसको हम पीली, थोड़ा पीलापन लिए हुए फली होती हैं, उस किस्म को भी किसान भाई DB10 के नाम से उस किस्म को हमने विकसित किया है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहाँ तक बात है मूली की, अगेती, साग सरसों की, अभी किसान भाई वर्षा के स्वभाव को देखते हुए मूली की अगेती किस्मों की बिजाई की जा सकती है, या हमारी जो स्थानीय रूप से मिलने वाली किस्में हैं शलजम की जो लाल रंग की होती हैं, उनकी बिजाई भी हमारे किसान भाई अपने खेतों में कर सकते हैं। और मूली की किस्म के बारे में हम बताना चाहेंगे, पूसा चेत की एक किस्म है जिसकी बिजाई अभी किसान भाई अपने खेतों में कर सकते हैं। अगर हम बात करें लाल रंग की छोटी मूली जिसको हम पूसा मृदुला के नाम से जानते हैं, उसकी बिजाई भी किसान भाई मेड़ों के ऊपर कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो हमारी सब्जी फसलें हैं जिसमें फूल गोभी है, अगेती उनकी पौध तैयार है, उसके खेत की तैयारी करके उसको मेड़ों के ऊपर रोपाई किया जा सकता है। और उसकी जो किस्म अभी जिसकी पौध तैयार है रोपाई के लिए, उसमें हम बताना चाहेंगे पूसा मेघना, कार्तिक शंकर या अगेहनी जो समूह की फूल गोभी की किस्म है, किसान भाई उसकी

0: अभी बिजाई के रोपाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मिर्च की, बैंगन की, अगर पौध तैयार है तो अभी थोड़ा देरी हुई है, लेकिन अभी भी हमारे किसान भाई मिर्च की और इसकी बैंगन की रोपाई अपने खेतों में कर सकते हैं। तो ये तो रही सब्जी फसलों की बात। और अगेती जो गाजर है उसके लिए खेत की तैयारी की जा सकती है, जिसमें पूसा वृष्टि किस्म को किसान भाई लगा सकते हैं। फिर अगस्त के अंतिम सप्ताह में किसान भाई अपने खेतों में पूसा साग वन, एक पूसा की किस्म है साग सरसों की, उसकी बुआई कर सकते हैं। सफ़ेद रंग की जो सलजम होती है पूसा श्वेती, उसकी बिजाई कर सकते हैं। और प्याज जो खरीफ के मौसम में लगाने वाली पौध से तैयार है, खेत की उचित तैयारी करके उसकी रोपाई अगस्त के पहले सप्ताह में ही करने की सिफारिश की जाती है, ताकि उसके कंद नवंबर के पहले पखवाड़े में बाजार में किसान भाई बेचने के लिए तैयार कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर दिनेश, अब मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि हमें सब्जियों का अच्छा उत्पादन अगर हासिल करना है, क्योंकि इस वक्त कोरोना काल में जब हम बात करते हैं कि सब्जियों की प्रमुखता जो है वो बढ़ गई है, अब लोगों के भोजन के अंदर सब्जियों का सेवन ज्यादा होने लगा है, यहां तक कि लोग अपने घरों में भी जो है वो सब्जियों को उगाने लगे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें किसानों की, तो सब्जी उत्पादन से पहले कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो किसानों को विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है?
2: किसान भाइयों, आप अगर सब्जी उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले चीज़ आती है कि आप सिलेक्शन, आप फील्ड, आप कौन से फील्ड में आप उगाना चाहते हैं, तो ऐसे भूमि का चुनाव करें जहां जल निकास की समुचित व्यवस्था हो। दूसरा ये होता है कि आप एक ही फसल सब्जी की बार बार एक ही फील्ड में खेत में आप न लगाएं, जिससे क्या होता है कि जो मृदा वाहक जो होते हैं, रोग होते हैं, वो आपके फसल में लग जाएंगे। तीसरे है कि आप खेत को बदलते रहिए, जिसको फसल चक्र बोलते हैं, उसको आप अपनाइए। साथ में आप ये ध्यान रखिए कि आप बीज का जो आप चुनाव करते हैं वो बीज सर्टिफाइड हो, और उसमें ज़्यादा जो बीमारी बीज के द्वारा फैलती है डिजीज फ्री, मतलब रोग रहित होना चाहिए। तो इसे ध्यान में रखिए, जो आप अगर सब्जी का किसी भी सब्जी को जो आप उगाना चाहते हैं वो सब में ध्यान कॉमन होता है, रखना होता है। और दूसरे है कि आप कोशिश करिए कि रेजिस्टेंट वेराइटी जो आती हैं, जो उसके रोग रहित मतलब रेजिस्टेंट होती हैं, उसके लिए आप उगाएं, जिससे कि आपको बीमारियां कम लगे और आपका उत्पादन ज़्यादा हो। इसके साथ ही आपको जैसे बीमारी तीन तरह से फैलती है, अगर आप ध्यान रखें तो पहला ये होता है कि मिट्टी के द्वारा होता है, तो जिससे कि आप फसल चक्र अपनाते हैं तो उससे कम कर सकते हैं। बीजोपचार करेंगे बीज के द्वारा जो फैलती हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि जो हवा के द्वारा फैलती है, जो आपके पैड़ी जो पत्तियों पर बीमारी लगती है या तने में बीमारी लगती है सब्जियों में, उसको आपको उपचारित करना है। तो सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, खेत की आप सफाई रखते रहिए, जो खरपतवार हैं उस पर उस कुल के उसके जो आप सब्जी लगा रहे हैं उस कुल के खरपतवार हैं उसको आप खेत से निकाल दीजिए, और जो फसल बची हुई पिछली फसल के हैं वो सबको वहाँ से हटा के आप उसको नष्ट कर दें, क्योंकि बीमारी जो होती है उससे आपको फैलती है। तो इसको हम बोलते हैं समेकित रोग प्रबंधन। अगर आपको लास्ट में ये होता है कि आपको अगर कोई उपचार नहीं है, तब आप जाके केमिकल का चुनाव करें, स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आप फसल का चुनाव करें और आप अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं, आप सुरक्षित उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि फसलों में जो न्यूट्रिएंट की मात्रा होती है वो आपको बचा सकते हैं और आपका अधिक से अधिक उत्पादन हो सकता है।
1: बिल्कुल, अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर सचिन का। डॉक्टर सचिन, ये बताएं कि इस मौसम में प्रमुख रूप से कौन कौन से ऐसे कीट हैं जिनका हमला हो सकता है, और सबसे जरूरी बात जानने के लिए यह है प्रबंधन के बारे में, तो हम इनके बारे में जरूर आगे जानेंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि कौन कौन से बरसात के मौसम में कीट लग सकते हैं फसलों में, और किसान उनको पहचाने कैसे? सबसे ज्यादा ये जरूरी होता है कि किस तरह से पहचान की जाए कि कौन सा कीट लगा है, और उसके बाद हम प्रबंधन के बारे में आपसे जरूर जानकारी लेंगे।
3: जैसे मैडम अभी बरसात का मौसम है, तो जैसे हम किसान भाई लोग जैसा कि जो गोबर की खाद डालते खेत में, तो ज्यादातर ये देखा है कि गोबर की खाद सड़ी भी नहीं होती, अच्छी सड़ी गड़ी नहीं होती है, तो उसके जो पौधे हैं जो जिसका भी हमने ट्रांसप्लांट किया, जैसे बैंगन हो या टमाटर हो, मिर्च हो, तो उसमें सफेद गिडार नाम की एक ग्रव आता है मैडम, जो जड़ों को खाता है। तो अगर आपका अगर पौधा बैंगन हो या टमाटर हो, मिर्च हो या फिर ये हो, उसका अगर पौधा सूख गया है तो अगर आप उसको बाहर निकालते हैं तो उसमें आपको सफेद सी गिटार जैसे सफेद वाला नारा दिखाई देता है तो व्हाइट ग्रह है। तो इसके लिए मैंने जैसे पहले ही बताया कि आपको जो गोबर की खाद हो वो अच्छी सली गड़ी होनी चाहिए और आपको उसको उपचारित भी आप कर सकते हैं। जैसे आप जब खाद डालते हो तो आप उसमें मेटराइजिया माइनस लिए जैसे ब्यूवेरिया देसियाना है जैसे जैविक कीटनाशक है तो उसकी मात्रा आप जब आप खाद डालते हो तो उसमें आप चार से पाँच किलो मिला के जैसे 100 किलो में आप अच्छे से मिला के फिर आप तब दोगे जैसे 200 ग्राम प्रति वर्ग किलोमीटर में खाद दी जाती है तो उसका नियंत्रण करता है। और जैसे बरसात का मौसम है अभी तो सुंडियों का ज्यादा प्रकोप होता है मैडम, जैसे बालों वाली सुंडी होती है जैसी उबड़ वाली सुंडी होती है जैसे ऊन जैसी वो चलती है तो ये पत्तियां खाती है जैसे पालक में खाएगी चौलाई में खाएगी और बैंगन में जैसा अभी बैंगन में कीट आता है उसको प्ररोह छेदक बोलते हैं। तो जैसे ही बैंगन हम मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं जैसे 20-25 दिन के बाद तो जब पौध आपका मेन खेत फील्ड में जैसे 30 से 40 दिन का होता है तो उसकी जो प्ररोह होती है जैसे अगली शूट्स होती है वो नीचे गिर जाती है और जैसा लगता है कि वो सूख गई है। तो अगर आप उसको तोड़ के अगर उसमें देखेंगे तो उसमें गुलाबी रंग का एक छोटी सुंडी होती है तो वो उसका प्ररोह छेदक छेदक।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: तरह से उनकी पहचान की जाए। डॉक्टर सचिन एक बार फिर आपके पास वापस आती हूँ और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपनी जानकारी को आगे बढ़ाएं।
3: हाँ तो मैंने जैसे भी बताया मैडम बैंगन वाला प्ररोह छेदक का तो ये मैडम ये कीट जैसा है कि जैसे अर्ली शूट्स को भी नुकसान देता है तो फलों को भी मैडम जैसे छोटे फलों या बड़े फलों उसमें आपको छेद दिखाई देते हैं और उसमें से उसका जो विष्ठा होती है जैसे हम उसको एक्सक्रीटा बोलते हैं वो भी बाहर निकलती है। तो ऐसे फल आपको तोड़ के तुरंत नष्ट कर देनी चाहिए। तो और बैंगन में व्हाइट फ्लाइज सफेद मक्खी आती है तो छोटे छोटे छोटे व्हाइट फ्लाइज होती है और ये जैसे ही आप पत्ती उल्टी करोगे पत्ती के नीचे बैठते हैं तो जैसे ही आप पत्ती को घुमाओगे तो जल्दी उड़ जाते हैं तो इसको सफेद मक्खी बोलते हैं। फिर टमाटर में ब्लाइट नाम की कीट आती है जो लाल रंग के छोटे छोटे सूक्ष्म से कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे बैठकर उसमें से क्लोरोफिल को खाते हैं तो पत्तियों को सफेद से धब्बे पड़ते हैं। अगर आप ऐसे पत्तियों पे जिसमें माइट का प्रकोप हुआ है उसके ऐसे पत्तों को आपके उंगली में अगर आप उसमें खींचोगे तो आपके हाथों को भी लाल रंग दिखाई देता है। तो मैडम और चेपा नाम का एक एफिड जिसको हम अंग्रेजी में एफिड बोलते हैं या माऊ बोलते हैं तो ये छोटे छोटे हरे कलर के छोटे छोटे कीट होते हैं जो पत्तियों पे या नई शाखाओं पे आके रस को चूसते हैं पत्तियों से और टहनियों से। ये बैंगन में भी आता है और जैसे कद्दू और ये जो सब्जी है उसमें रेड पंपकिन बीटल आता है जिसके जो बॉडी पे जो विंग्स होते हैं वो लाल कलर की होती है और उसका जो जो उदर भाग होता है जो एब्डोमेन का वो थोड़ा सा खुला होता है। और बैंगन में एक एपिलेक्ना बीटल भी आता है जो जैसे छिल्ली जैसा बना देता है पत्तियों को पत्तियों का क्लोरोफिल खाता है और उसमें सिर्फ लैमिनार जो वेंस होती है वही वैसी की वैसी रहती है
1: जी।
3: तो ऐसे कई प्रकार के कीट है जैसे मैंने पहले बताया सफेद कीटार जो जमीन के मीन्स पॉलर रीजन को खाता है फिर पत्तियों पे आने वाली सुंडी है कई प्रकार की जैसे और भिंडी पे आती है उसपे धब्बे वाली सुंडी आती है उसपे वो भी प्ररोह को भी छेद करती है और नए वाले जो जो फल आते हैं उसपे भी उसके वो छेद करते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर सचिन। डॉक्टर तोमर क्योंकि बात हो रही है पोषण सुरक्षा को लेकर और सब्जियों में किस तरह के पोषक तत्व जो है वो मौजूद होते हैं ये जानना हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बेहद जरूरी है तो ये बताएं कि कौन कौन सी ऐसी अच्छी सब्जियां हैं और अब तो विदेशी सब्जियों की खेती भी हमारे देश में प्रमुख रूप से होने लगी है तो कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं जिनका सेवन हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए क्योंकि आज का जो समय है वो है अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का तो अगर इसके बारे में जानकारी हासिल करें आपसे तो क्या बताएंगे।
0: देखिए जैसे हमने प्रारंभ में कहा था ज्योत्सना जी कि प्रति व्यक्ति 300 ग्राम सब्जियों का इस्तेमाल हमको प्रतिदिन करना है। इन 300 ग्राम में हमको क्या क्या इस्तेमाल करना ये भी जानना जरूरी है। 300 ग्राम में सबसे पहली बात आती है कि आप अपने खाने में पत्तेदार सब्जियों का समावेश करें और उसकी मात्रा रहेगी 125 ग्राम। और आपको 100 ग्राम सब्जियां लेनी हैं, आपको ये जो अपनी जड़ कंदमूल वाली हैं जिसमें आलू है, प्याज है, लहसुन है, शलजम है, चुकंदर है, इनका इस्तेमाल करना है
1: जी।
0: और 75 ग्राम आपको फल वाली सब्जियां जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची है, इनका इस्तेमाल करना है और इसको नियमित रूप से इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने ले लिया और एक अगले दिन नहीं लिया, तो आपको नियमित रूप से जब आप 300 ग्राम सब्जी का इस्तेमाल करते हैं और इस अनुपात में करते हैं कि 125 ग्राम पत्तेदार सब्जियों को और 100 ग्राम आप कंद मूल वाली सब्जियों को और 75 ग्राम आप फल सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको हमारे शरीर की जो आवश्यकता होती है विटामिन्स की, मिनरल्स की, रेसे की, एंटीऑक्सीडेंट की, उसकी आपूर्ति इनसे संभव है। अब सब्जियों से क्या मिलता है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर हम बात करते हैं पत्तेदार सब्जियों की, पत्तेदार सब्जियां विटामिन सी, विटामिन ए और इसके साथ आयरन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, इनके अंदर इनकी उपलब्धता होती है। और हमने अपने संस्थान संभाग में एक विलायती पालक की किस्म विकसित की है
1: जी,
0: जिसको हम पूसा विलायती पालक के नाम से जानते हैं। उसके अंदर विटामिन सी की मात्रा 74 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होती है, जबकि सामान्य पालक और अन्य पत्तेदार सब्जियों में इसकी मात्रा 35 से 40 मिलीग्राम के बीच में होती है
1: जी।
0: तो अगर एक व्यक्ति एक दिन में 100 ग्राम पत्तेदार सब्जी का इस्तेमाल साग के रूप में, पराठे के रूप में, दाल में डाल के, चटनी के रूप में करता है, तो उसके शरीर की जो आवश्यकता है विटामिन सी की, आयरन की, अगर ये देखें कि जो धनिया पत्ती है वो आयरन का बहुत अच्छा स्रोत मानी जाती है, और अगर हम एक चम्मच प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो प्रतिदिन की आवश्यकता आयरन की है उसकी हम आपूर्ति कर सकते हैं
1: जी।
0: और आपने बात कही थी कि अभी किसानों के अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में भी हमारे लोग जिनके पास गमलों में खेती करते हैं, सब्जियों को उगाते हैं, छत पे उगाते हैं, उनके लिए पत्तेदार सब्जियां, पालक है, मिंट है या धनिया है, बथुआ है, ये बहुत अच्छी उनके लिए पसंद हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि सल्फर हमारे शरीर में वर्षा के मौसम में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है
1: जी।
0: और हमारी आपूर्ति कहाँ से हो सकती है, प्रतिदिन प्याज का इस्तेमाल करना है, हरी प्याज का इस्तेमाल करना है, लहसुन का इस्तेमाल करना है, तो उससे हमारी शरीर की जो आवश्यकता है प्रोटीन इसकी, सल्फर की, उसकी आपूर्ति हो जाती है और हमारी त्वचा में होने वाले बहुत सारे रोगों को हम इनसे बच सकते हैं। और हमारे संभाग ने बंचिंग ऑनियन में किस विकसित की है जिसको हम पूरे वर्ष उगा सकते हैं और बिना कीड़ों के, बिना रोग के, क्योंकि उसमें कोई रोग और कीड़ा लगता नहीं है, और उसको एक बार लगा दिया तो बहुवर्षीय प्रवृत्ति होने के कारण उसको हम निरंतर उगा सकते हैं। तो जो हमारे किचन गार्डन में रुचि रखते हैं लोग शहरी क्षेत्रों में या हमारे छोटे शहर हैं, आजकल तो सब्जी उत्पादन का प्रचलन बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी फैल गया है, क्योंकि बड़े शहरों में तो आजकल धूप की उपलब्धता एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि मल्टी स्टोरी बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हो गया, लेकिन जो हमारे छोटे कस्बे हैं, शहर हैं, उनमें अभी भी एक फ्लोर वाले मकान बनते हैं जिनमें आगे और छत के ऊपर पर्याप्त स्थान रहता है
1: जी।
0: इसके अतिरिक्त जो हमारी जड़ वाली फसलें जैसे गाजर की हम बात करें, गाजर के अंदर लाइकोपीन होता है और पीली गाजर में बीटा कैरोटीन होता है जो हमारी आंखों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं, या काली गाजर है जिससे हमें बहुत सारे मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, उसको हम कांजी के रूप में या वैल्यू एडिशन के रूप में बहुत सारी औषधियों में उसके रंग को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, या टमाटर का जो लाल रंग आप देखते हैं ये भी लाइकोपीन की वजह से, विटामिन सी का स्रोत है। इस प्रकार से अनेकों अनेक सब्जियां हैं, बैगन जो हमारे देश की भारतीय मूल की सब्जी है, या करेला है, इनके अगर गुणों को देखें, करेले के अंदर जो कड़वापन है मेमोरडिसिन या चेरिंटिन की वजह से है, और ये हमारे शरीर में विशेष करके डायबिटीज के लिए बहुत लाभकारी है,
1: इसलिए करेले का इस्तेमाल कहा जा सकता है। कि कुल मिलाकर कई सारी सब्जियां हैं जो हम अपने देश में जिनकी फसल ले रहे हैं और उनके अंदर कई तरह के गुण जो है वो मौजूद हैं, जिनका अगर हम प्रतिदिन सेवन करें तो हम अपने स्वास्थ्य को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर दिनेश, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि बरसात के इस मौसम को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर रोगों का जो प्रकोप है वो हो सकता है, और किसान किस तरह उनकी पहचान करें।
2: इसमें देखिए इस बरसात में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे आप नर्सरी जब उगाते हैं तो नर्सरी में जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्च हो गया, आप फूल गोभी हो गई, ये सभी जो उगाते हैं नर्सरी में ही जो डंपिंग आपकी बीमारी आती है, और जो उसमें क्या होता है जैसे नर्सरी आप डालेंगे तो उसमें पैचेज बन जाते हैं जिससे कि वो वहाँ पे ग्रो नहीं करता है, या तो बीज सड़ जाएगा या तो थोड़ा सा नर्सरी होएगा फिर वो पौधा गिर जाएगा। तो एक डंपिंग आपकी बीमारी होती है जो आर्द्र गलन बोलते हैं, वो ज़्यादातर जो नर्सरी वाले पौधे जैसे बताया हमने उसके लिए होता है। तो उसके लिए भी क्या है कि आप बीज उपचार करिए उसको, और शुद्ध और नर्सरी जो आप उगाएंगे उसको थोड़ा सा ऊपर उठा करके रेस नर्सरी होगा जिससे कि पानी के निकास नहीं होगा, पानी निकास हो जाएगा जिससे कि जो बीमारी डंपिंग आप होती है वो नहीं लगेगी। तो ये सभी को नर्सरी उगाने के आती है। इसके बाद जो बीमारी आती है जैसे आपके भिंडी है, येलो मजेक की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सभी है बरसात के समय में भिंडी में येलो मजेक का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, या उसमें विल्टिंग आ जाती है, फंगस के द्वारा बीमारियाँ आती हैं। तो जैसे येलो मजेक का आता है तो उसमें वेक्टर का जैसे व्हाइट फ्लाई है, व्हाइट फ्लाई को जैसे डॉक्टर सचिन ने बताया कि कीटों का कैसे प्रबंधन करेंगे, तो व्हाइट फ्लाई को अगर आप नियंत्रित करते हैं तो उससे आपका जो बीमारी होती है ये वायरस के द्वारा वो नहीं होगी। और दूसरे इसमें बीमारी जैसे टमाटर अगर आप उगाना पा रहे हैं तो टमाटर में बहुत सी बीमारी लगती हैं, नर्सरी से स्टार्ट करके फलों तक में लगता है। इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम जैसे अगर आप इस समय पहाड़ पे आप जाइए पहाड़ी एरिया में तो वहाँ पर आपको फाइटोथोरा की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अभी उसमें टमाटर जो आपके यहाँ आ रहा है वहीं से आता है जो इसमें जो आ रहे हैं, तो फाइटोथोरा की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसको आप स्प्रे जैसे करेंगे उसको छिड़काव करना है तो मेटालेक्सिल दवा आती है या रिडोमिल की दवा आती है, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि आपको फाइटोथोरा की या एक अल्टरनेरिया ब्लाइट टमाटर में आती है वो आती है। दूसरा एक बैक्टीरियल लीफ स्पॉट एक बीमारी आती है। तो ये सभी बहुत सी बीमारियां हैं। एक बहुत ज़्यादा इसमें फल सड़ने लगता है जो टमाटर में मेजर प्रॉब्लम आती है, जो आई बॉट उसको कहते हैं, आई स्पॉट आती है बीमारी, वो भी फाइटोथोरा के द्वारा होती है। तो उसको जैसे अभी स्टेकिंग करके करते हैं तो रखेंगे तो जो जमीन के सतह पर जो फल होंगे उसको अगर नहीं जमीन पे नहीं टच करेंगे तो उससे वो बीमारी से बच सकते हैं, और साथ में मैंको जो दवा आती है उसको स्प्रे करते रहेंगे तो सबसे बचा जा सकता है। जो इम्पोर्टेंट है मिर्च में भी जैसे लीफ कर्ल की बीमारी आती है वो भी व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलती है
1: जी।
2: तो ये सभी का सभी फसलें करीब करीब सब प्रभावित होती हैं रोगों से, और ये रोग आपके उत्पादन को कम करते हैं, साथ साथ जो न्यूट्रिएंट वैल्यू सब्जी की होती है उसको भी कम करते हैं। तो इससे अगर आप न्यूट्रिएंट को पोषण को ध्यान में रखते हुए आपको रोगों का प्रबंधन करना बहुत आवश्यक होता है, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके सब अगर आप प्रबंधन ठीक से करेंगे तो इससे आपको अधिक उत्पादन मिलेगा, अच्छी क्वालिटी के उत्पादन मिलेगा जिससे आपको अधिक पोषण साथ साथ अधिक आपको आमदनी होगी। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए आपको ये सभी करना है
1: जी। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर सचिन का। डॉक्टर सचिन, कई बार फसलों का अधिकतर उत्पादन हासिल करने के लिए या कहीं अधिक उत्पादन हासिल करने के लिए, जल्दी उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमारे जो किसान हैं वो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, या फिर कहें कि जैविक तरीका ना अपनाकर अगर कीटों का प्रबंधन करना चाहें तो वो अधिक मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग कर लेते हैं जिससे कि फसल को भी नुकसान पहुंचता है और साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य को भी। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, अगर कीटों का प्रकोप हुआ है तो कीटनाशकों का प्रयोग करें या कोई जैव तरीका भी है उसका प्रबंधन करने का?
3: मैडम, जैसे कि आपने बताया कि जैसे रेसिड्यू जो प्रॉब्लम है उससे मानव स्वास्थ्य पे बहुत हानि पहुंचती है, तो सबसे पहले जब कीट लगता है मैडम तो जरूरी नहीं आपको कीटनाशकों का उपयोग करना है, क्योंकि एक आर्थिक दहल स्तर एक सीमा हमने तय की है वैज्ञानिकों ने हर क्रॉप में। जैसे बैंगन में अगर प्ररोचेदक लगा है तो उसकी अगर स्तर प्रकोप का स्तर अगर 5% से कम है तो आपको छिड़काव करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे काफी सभी डिसीजेस के लिए या फिर कीटों के लिए ये स्तर निर्धारित की गई, तो उससे ऊपर अगर वो दर स्तर जाती है तभी कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। और सबसे पहले जब हम कीटनाशकों का जब चयन कर

0: स्वास्थ्य को जो है वो अच्छा बना सकते हैं। डॉक्टर तोमर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि पोषण सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को?
1: देखिए, हमारा सागीय संभाग विज्ञान सब्जियों की पोषण गुणवत्ता बढ़ाने में कार्य कर रहा है और हमने इस दिशा में काफी प्रगति भी हासिल की है। हमारे संभाग में हमने बैगन की, आप आमतौर पे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बाजारों में देखते हैं कि आपको नीले रंग का बैगन ही अधिकतर मिलता है
0: जी।
1: हमने सफेद रंग का बैगन, हरे रंग का बैगन का विकास किया है जो पोषण दृष्टि से दूसरे अन्य बैगनों से बहुत बेहतर है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट की अमाउंट है फ्रैक के माध्यम से या क्यूप्रेक के माध्यम से टोटल एंटीऑक्सीडेंट हमने इनमें देखा है। तो हमारी जो ये दो किस्में पूसा हरा बैगन, पूसा सफेद बैगन, इनको हमने पोषणता की दृष्टि से इनका मूल्यांकन करके पाया कि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बहुत अधिक है। दूसरा, हमने गाजर की किस्म में सुधार किया। जैसे आप देखते हैं गाजर कम लाल होती है, तो हमने पूसा रुधिरा एक किस्म है जो अत्यधिक लाल रंग वाली होती है जिसमें अंदर लाइकोपिन की मात्रा अधिक होती है
0: जी।
1: तो कम खाने से भी हमें अधिक पोषण मिलता है। या काले रंग की गाजर असिता हमने विकसित की है
0: जी।
1: हमने बात की कि पोषण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जैसे विलायती पालक की बात की, ऐसे तो हमारे संस्थान के द्वारा पालक में चार किस्मों का विकास किया गया है, पूसा आल ग्रीन, भारती और ये पूसा ज्योति और पूसा हरित। तो ये चारों किस्में विटामिन सी, विटामिन ए के लिए बहुत ही उत्तम है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि बथुआ एक हमारा खरपतवार होता है और उस खरपतवार को हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कई किसान भाई चारे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी उत्तर भारत की सर्दी के मौसम में प्रमुख पत्तेदार सब्जी के रूप में इस्तेमाल होती है। इसमें हमने सुधार करके दो किस्मों का विकास किया, पूसा बथुआ एक, पूसा ग्रीन। ये दोनों जो है ढाई से तीन मीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं, लंबे समय तक इनके पत्तों को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, कटाई करना उपयुक्त है और इनकी पैदावार सामान्य जो हमारा जंगली बथुआ है उसे अधिक होती है। अधिकता के स्थिति में इसका इस्तेमाल चारे के रूप में भी किया जा सकता है और इसका वैल्यू एडिशन करने की भी अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि बथुआ सर्दी के मौसम में उपलब्ध होता है, नवंबर से लेकर के फरवरी तक मिलता है। अगर हमको जुलाई अगस्त में भी बथुआ खाना है तो इसका हम सुखा करके इसका वैल्यू एडिशन करने की संभावना है। या ऐसे ही हमने साग सरसों, आमतौर पे आप देखते हैं जो बाजार में साग के लिए साग सरसों मिलती है
0: जी,
1: वो किस्में होती हैं जो हम तेल के लिए उगाते हैं और उनको जब छीदा करते हैं या उसी को सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हमने पूसा साग वन किस्म का विकास किया जिसके अंदर विटामिन सी की मात्रा अधिक है, रेशे की मात्रा कम है, जल्दी तैयार होती है। ऐसे ही हमने भिंडी में एक किस्म का विकास किया, पूसा भिंडी पांच, जिसमें विषाणु रोग नहीं आता है। ऐसी स्थिति में किसान को छिड़काव कम करना पड़ता है, उत्पादक बहुत देती है और इस देश में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा इसको बड़े पैमाने पर इसका

0: बिल्कुल।
1: तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि लोबिया एक हमारी किस्म है, लोबिया आप देखते हैं उसमें पीत वरण रोग बहुत प्रचलित है, बहुत नुकसान करता है।
0: ठीक है।
1: हमने किस्म का विकास किया पूसा धारणी, जिसकी पोषण गुणवत्ता बहुत अच्छी है, 20 से 25 सेंटीमीटर आकार की फली होती है, उसमें प्रोटीन की मात्रा 6.5 से 7% होती है 100 ग्राम के, उस पे देखें
0: जी।
1: तो ये उपलब्धि हमारे संभाग की रही है,
0: साग के विज्ञान के क्षेत्र में जो पोषण सुरक्षा कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। डॉक्टर दिनेश, अब आपसे मैं बहुत संक्षेप में ये जानना चाहूंगी कि जैविक तरीके से सब्जी का उत्पादन कैसे हमारे किसान जो है वो हासिल कर सकते हैं।
2: ज्योत्सना जी, जैविक उत्पादन के लिए एक होता है कि हम जो केमिकल है उसको न प्रयोग करें, उसके जगह पे हम जैविक, जैसे आपको जैविक नियंत्रक होते हैं जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, सुडोमोनास हो गया, बेसिलस हो गए, और इसी तरह से जैसे कीट नियंत्रण के लिए बेवेरिया वैसियाना हो गया, मेटाराइजियम हो गया, ये सभी को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जिससे कि आप उसको, चाहे हम उसको सीड ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग करें या उसमें मृदा में भी डाल सकते हैं। मृदा में डालने का तरीका ये होता है कि आपको जैसे फार्मुलेशन होता है ट्राइकोडर्मा का, 1 किलोग्राम फार्मुलेशन है, 100 किलोग्राम गोबर की खाद में सड़ी हुई होनी चाहिए, उसमें मिला करके 1 हफ्ते तक छाए में उसको रखिए और उसको पलटते रहिए, जिससे कि उसमें एरिएशन हो और उसमें जो कवक की ग्रोथ है हरी हरी उसमें आ जाएगी। फिर उसको मिक्स करके आप उसमें खेत में डाल सकते हैं
0: जी।
2: तो करीब 3 किलो के लगभग होता है, जो 1 हेक्टेयर के लिए काफी होता है, उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो मृदा के द्वारा बीमारियां फैलती हैं, जो आप केमिकल प्रयोग करते हैं उसको बचाने के लिए आप इसका ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास का फार्मुलेशन कर सकते हैं, जिससे कि आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरह से स्प्रे करना है तो सुडोमोनास या बेसिलस का फार्मुलेशन आप 10 ग्राम 5 से 10 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके और उसको आप स्प्रे करिए, जब आप बीमारी लगने के पहले भी कर सकते हैं, बीमारी लगने के बाद भी कर सकते हैं, तो इस तरह से आप नियंत्रित कर सकते हैं।
0: ठीक है, तो अब आइए एक बार रुक कर लेते हैं डॉक्टर सचिन का। डॉक्टर सचिन, कीटों का प्रकोप फसल पे ना हो पाए इसके लिए कई सारे विकल्प हैं और उनमें से एक है ट्रैप्स। तो कौन कौन से ट्रैप्स हैं जिनका प्रयोग जो है वो हमारे किसान कर सकते हैं, जिससे कि फसल के ऊपर कीटों का कम से कम जो है वो प्रकोप हो? बहुत संक्षेप में चाहूंगे उत्तर।
3: जैसे हम बैंगन हो, टमाटर हो या फिर मिर्च हो, इसी जब नर्सरी डालते हैं तो नर्सरी में मैडम एक येलो स्टिकी ट्रैप आते हैं, ये मार्केट में भी उपलब्ध है या किसान खुद बना भी सकता है। आपके पास अगर, किसान के पास अगर कार्डबोर्ड है तो उसको पीला रंग लगा के उस पर वो ग्रीस चिपका के वो नर्सरी में लगा सकता है। तो सफेद मक्की हो या फिर चेपा हो या फिर थ्रिप्स हो, थ्रिप्स के लिए मैडम ब्लू कलर के ट्रैप्स यूज किए जाते हैं जो मिर्च में आती है। तो ये क्या है, जो नर्सरी में जो कीट प्रारंभिक अवस्था में जो आता है वो उसको उसके तरफ आकर्षित होकर उसको चिपक जाता है। तो यही पौध जब आप मेन फील्ड में जाएगी तो उस पर कीट रहित होगी। और जब खेत में जैसे हम पाए जाते हैं तो फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं मैडम, जैसे बैंगन में प्ररोह क्षेत्र के लिए अलग फेरोमोन ट्रैप्स है, फिर टमाटर में जो फल क्षेत्र हेलिकोबार्पा नाम की जो कीट आती है उसके लिए अलग फेरोमोन ट्रैप है, और जो भिंडी में जो फल क्षेत्र आता है उसके लिए अलग है। तो इसकी मात्रा मैडम 5 से 10 ये ट्रैप आपको पर हेक्टर लगाने हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मादा कीट होती है उसी प्रजाति की, तो वो समझ के नर कीट उसके तरफ आकर्षित होते हैं, वो ट्रैप में अंदर फंस के वो मर जाते हैं, या फिर ट्रैप में आपको अगर इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड है तो वो भी वहां मर जाते हैं। तो उसका फिर जनरेशन वही रोक के आपको फिर हानि कम होती है। और बाकी ट्रैप्स है जैसे कद्दू वर्गीय जो सब्जी है उसमें मैडम एक फ्रूट फ्लाई नाम की कीट आती है, तो उसके लिए आपको मिथिलीजिनर ट्रैप्स है, जैसे आपके पास अगर खाली बॉटल जो होती है पानी की उससे भी आप बना सकते हैं, तो उसमें मिथिलीजिनर नाम का एक जो रसायन है वो यूज होता है, तो उसकी मात्रा उसको अल्कोहल में मिलाना है और अल्कोहल में ही आपको स्पिरोसेट नाम का एक कीटनाशी उसको डालना है। तो अल्कोहल की मात्रा 6%, 4% उसमें होना चाहिए मिथिलीजिनर और 1% उसमें स्पिनोसेट। तो इसके इसमें आपको जो प्लाईवुड के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको आप इसमें डुबो कर रख सकते हैं 3 से 4 दिन। तो ये अगर खाली बॉटल में अगर फील्ड में अगर लगाओगे तो उसमें उसके जो नर होते वो उसके आकर्षित होके उसमें मारे जाते हैं। तो ये मैडम फल मक्खियों के लिए बॉटल ट्रैप्स हो गए, फिर मैंने पहले बताया कि येलो ट्रैप्स, स्टिकी ट्रैप्स हो गए, ब्लू स्टिकी ट्रैप्स और फेरोमोन ट्रैप, तो ये कई प्रकार के ट्रैप्स है जो आप खेतों में लगा सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर सचिन, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर तोमर और डॉक्टर दिनेश, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और इतनी अहम जानकारियां जो है वो विषय के संबंध में हमारे दर्शक

0: लोगों तक पहुंचाई, उन सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, आपने बहुत से बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी को जाना, कैसे हम यहाँ पर कीट पतवार का कैसे नियंत्रण कर सकते हैं और भी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में किसान साथियों आपने जाना। और यहाँ पर अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटी अभी 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटी अभी 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। लेकर आई हूं एक और इंस्पायरिंग कहानी जिंदगी के रंग गीतों के संग में। आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी वुमन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने स्ट्रगल को स्ट्रेंथ बना दिया और नेचर को अपनी पहचान बना दिया। हैंडमेड केमिकल फ्री स्किन केयर ब्रांड नेचुरल नेक्टर की फाउंडर मिसेस संगीता सिंघल जी। तो चलिए जानते हैं संगीता जी को थोड़ा और उनकी ब्रांड के बारे में इस एपिसोड में।
2: तो संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
3: नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद SN रेडियो का, मुझे अपनी सफर और अपना थॉट आपके शायद शेयर करने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ।
2: हम भी बहुत एक्साइटेड है मैम, और हम शुरू करेंगे आपकी शुरुआती जर्नी और शुरुआती सफर से, जहाँ पे आपने ये डिसाइड किया कि आपको नेचुरल स्किन केयर में जाना है। ये किस तरह से हुआ ये सफर तय कि ये मेरी कॉलिंग है या स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मुझे जाना है? क्योंकि मैं जानती हूँ आपके लिए ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी रही है। तो किस तरह से आपने ये पहचान, अपनी पहचान को पहचाना और उस पे, उस रास्ते पे चलना शुरू किया, वो बताएं हमारे श्रोताओं को।
3: मेरे लिए ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये बल्कि एक इमोशनली जुड़ा हुआ है। जब मैंने देखा कि बाजार में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो नेचुरल कह तो देते हैं लेकिन उनकी शुद्धता इतनी नहीं होती है, जब मैंने खुद के ऊपर ट्राई किया तो मुझे कभी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। फिर धीरे धीरे मैंने खुद में ही स्किन केयर प्रोडक्ट बनाए और उसपे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए
2: जी।
3: ये मेरा एक पेशन है और इमोशनल है, दोनों है
2: जी। जी, तो कभी कुछ ऐसा हुआ, कोई रिएक्शन हो गया या कोई ऐसा इंस्टेंस जो आपको हंसा देता है, आज भी गुदगुदा देता है, आज भी अगर वो साझा करना चाहे तो?
3: मेरे प्रोडक्ट में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ मार्केट के प्रोडक्ट मुझे कभी सूट ही नहीं हुए हैं।
2: अच्छा जी जी जी, तो आपकी स्किन सेंसिटिव है या किस तरह से, कोई एक ऐसा इंस्टेंस या एनेक्डोट हमारे साथ साझा करना चाहें कि कभी कुछ ट्राई किया हो और इस तरह का कुछ रिएक्शन हुआ हो?
3: हाँ, मुझे एक्चुअली बचपन से ही स्किन सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम था, तो जनरली हमारी मम्मी वगैरह क्या करती थी, हमें मुल्तानी मिट्टी से नहला दिया करती थी और ज्यादा जब ड्राइनेस होती थी तो ग्रीसिन लगा दिया करती थी। लेकिन मार्केट में धीरे धीरे ना वो भी एकदम प्योर नहीं आने लगा कि ग्रीसिन भी हमें प्योर मिल जाए या मुल्तानी मिट्टी भी हमें प्योर मिल जाए।
2: करेक्ट,
3: जब मार्केट की साबुन वगैरह भी हम यूज करते थे ना तो मुझे बड़ी ईचिंग सी, रैशेज और ऐसे लाल लाल स्पॉट्स हो जाते थे स्किन पर, और जब थोड़ा सा भी वेदर चेंज होता था तो हाथ पैरों में ना इसकी स्किन उतरती थी। सही बात है, इसलिए फिर मुझे लगा कि यहाँ से बचपन से धीरे धीरे धीरे मैं कोशिश करती रही डे बाय की कुछ घर की चीजों की रेमेडी बनाऊ, कुछ घर की चीजों का यूज करूँ, इस तरह से फिर मेरा सफर शुरू हुआ।
2: वाओ, थैंक गॉड आपका सफर शुरू हुआ सो दैट हमारे स्किन के लिए एक अमेजिंग प्रोडक्ट आया नेचुरल नेक्टर के नाम से। तो मैम, इसी एहसास के साथ हम लेंगे एक सॉन्ग का ब्रेक, हमारा पहला गीत आज का, राही नए नए रास्ता नया नया। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक संगीता जी। मैम, अब आगे चलते हैं और जानते हैं थोड़ा और डीप में कि आपने हमें बताया कि नेचुरल के नाम पे बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरल नहीं है, एक्चुअली केमिकल बेस्ड हैं। बट एज अ यूजर, एज अ कंज्यूमर, जब मैं आज भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ और मैं स्किन केयर में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे पहचान सकती हूँ एज अ ले पर्सन कि ये सिर्फ एक अच्छी मार्केटिंग का प्रोडक्ट है या एक जेन्युइन हेल्थ केयर का या स्किन केयर का प्रोडक्ट है जिसपे मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ? तो वो जो कॉम्पोनेंट है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का, वो क्या है? क्या वो प्राइस है? क्या वो इंग्रेडिएंट्स हैं? कैसे एक ले पर्सन, एक कंज्यूमर पहचान सकता है कि असली क्या है और सिर्फ मार्केटिंग क्या है?
1: इसके लिए सबसे बेस्ट है इंग्रेडिएंट्स
0: जी।
1: और मार्केटिंग तो देखिए, जो अच्छे पैसा खर्च कर सकता है वो तो मार्केटिंग में पैसा खर्च सकता है, लेकिन जैसे हम जैसे जो लोग हैं जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और सिंगल हैंड से काम कर सकते हैं, तो मार्केटिंग में हम कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। पैकेजिंग बहुत मैटर करती है, लेकिन मेरे लिए पैकेजिंग मैटर नहीं करती है, क्योंकि हम इंग्रेडिएंट्स बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, न कि हम पैकेजिंग बेचते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि मेन इंग्रेडिएंट्स पे बहुत डिपेंड करता है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है। और इसका एक सबसे बड़ा पहचान ये भी है कि उनकी लाइफ सेल्फ बहुत शॉर्ट होती है। जितना वो नेचुरल होगा उनकी लाइफ उतनी ही कम होगी।
0: ओके नाइस। और कोई ऐसा एक इंस्टेंस बता सकते हैं जहाँ पे, या कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे कोई साबुन हो या कोई एक क्रीम हो जो आपके प्रोडक्ट्स में से कुछ हो, जिससे कोई कंज्यूमर एक आइडिया लगा सके कि हाँ, ये प्रोडक्ट नेचुरल है, सच में नेचुरल है? कोई ऐसा एक नुस्खा अगर आप शेयर करना चाहें?
1: जनरली मैं अपना रोज वाटर है, सपोज कीजिए मेरा खुद का ही, जो मार्केट में रोज वाटर आता है वो जनरली बोलते हैं कि रोज वाटर ओरिजिनल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। लेकिन मैं सबसे ही पूछती हूँ कि जब रोज वाटर हम खुद बनाते हैं, आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, लेकिन वो कभी उसमें कलर नहीं आता है, क्योंकि पिंक रोज से हम बनाते हैं उसको, हम स्टीम करते हैं, जनरली स्टीम डिस्टिलेशन से ही बनाया जाता है, तो उसका जो पानी कलेक्ट होता है वो व्हाइट ही पानी कलेक्ट होता है, वो पिंक पानी कभी कलेक्ट होता ही नहीं है। तो पिंक कैसे हो गया? और अगर पिंक हो भी गया सपोज कीजिए, तो आप उसको फूड में कैसे यूज करेंगे, आप आईज में कैसे डालेंगे? तो मेरा जो रोज वाटर है वो प्योर व्हाइट है, उसे आप फूड में भी यूज कर सकते हैं, स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और आईज में भी।
0: ओके नाइस। हाँ, तो चलिए नेचुरल नेक्टर का रोज वाटर जरूर यूज करना पड़ेगा आपकी बारी। तो इस बार जब मैं शॉपिंग जाऊंगी तो मेरा रोज वाटर जब खत्म होगा तो मैं नेचुरल नेक्टर का ही रोज वाटर यूज करूंगी। आगे चलते हैं मैम, आपकी जर्नी में आपने बताया आपके हस्बैंड का ये सपना था, बेसिकली उनका ये ड्रीम था, और फिर आपके इन-लॉज ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया, बहुत इम्पोर्टेंस दी, हर तरह से आपको एक फैमिली सपोर्ट हमेशा रहा। तो इस ये जो आपके स्ट्रेंथ थी, इसने आपके सफर को किस तरह से एक मीनिंग दिया, एक मतलब दिया, एक मकसद दिया? और क्या डिफरेंस होता है उन लोगों में जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती और उन लोगों में जिनके पास इस तरह का सपोर्ट होता है? आप कोई एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें जो बहुत पर्सनल हो, जो आपको लगता है कि इंस्पायर कर सकता है हमारे श्रोताओं को और आपके जैसी वुमेन फोक को जो अपना बिजनेस शुरू तो करना चाहती हैं, जिनके पास सपने तो हैं बट शायद सपोर्ट नहीं है?
1: जी मैम, इसमें मेरे हस्बैंड का और मेरे इन-लॉज का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि जब परिवार साथ होता है ना तो एक बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ होती है। जब हम कभी डगमगा रहते हैं, हमें डीमोटिवेट आ जाता है या कुछ, तो वो हमें हिम्मत देते हैं, वो हमें बोलते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं मिका। जब मैं आपको एक फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैंने जब शुरू किया, मैंने एक छोटी सी एग्जीबिशन लगाई, बहुत छोटी सी, जब मुझे बोलना भी नहीं आता था कि मैं अपने प्रोडक्ट को बेचूं कैसे, क्या बोलूं मैं ऐसा कि लोग बाग मेरे प्रोडक्ट को खरीदें, क्यों खरीदेंगे वो मेरा, क्योंकि वो मुझे जानते ही नहीं है, मेरे ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे? तो मैं उन्हें यही बोलती थी कि मैं क्या बोलूंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं। तो बोले कि जो तुमने बनाया है, तुमने उसमें डाला है, उसको फील किया है, उसको शेयर करो।
0: करेक्ट।
1: तो सामने वाले को महसूस होगा कि जो हम बोल रहे हैं वो फेक नहीं है, वो सच्चाई है। मैंने वैसा ही किया। फिर जब एग्जीबिशन लगाई तो किसी किसी दिन हम ऐसा होता था कि हमारी एक प्रोडक्ट भी सेल नहीं होता था। फिर मैं घर आती, मुझे लगता है यार मैं तो बिजनेस बंद कर देती हूँ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं इतना डीमोटिवेट हो जाती थी। फिर बोलते थे नहीं, डीमोटिवेट, सब दिन एक जैसा नहीं होता, आज अच्छा बिका है, कल हो सकता है कम बिके, कल इससे भी ज्यादा तुम अच्छा कर पाओ।
0: बिल्कुल।
1: तो वो मोटिवेशन बहुत काम आता था इसमें। और एक पता नहीं, ऐसा मैं मानती हूँ कि एक शायद ठाकुर जी का भी मेरे बहुत सपोर्ट रहा, हाथ रहता है कि जब उन्हें लगता है कि हमारा एक हाथ जाने वाला है तो भी वो हमें दो रास्ते खोलने के लिए एक मोटिवेशन दे देते हैं कि भैया पता नहीं आगे फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा होने वाला था, तो एक उनकी भी मुझे बहुत हिम्मत रही कि नहीं नहीं मुझे करना ही है, करना ही है, करना ही है।
0: कोई ऐसा डिवाइन मोमेंट या कोई ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस कभी हुआ हो जब आप बिल्कुल गिव अप कर चुके हों और फिर एकदम से एक यू नो एक रे ऑफ होप दिखी, तो वो अगर आप साझा करना चाहें कि वो मैं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं वो बहुत बार ऐसे मोड़ पे ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं जीवन में जहां पे वो सच में गिव अप करना करने वाले होते हैं, बट कहीं ना कहीं से एक रे ऑफ होप उनको मिल सकते हैं या वो ढूंढ सकते हैं, तो उस एक इंस्पायरिंग सफर को अगर आप शेयर करें तो बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे मैम, अगर आपके जहन में अगर कुछ आ रहा है अभी जो आप साझा करना चाहें।
1: जी मैम, मैं एक चीज करती हूँ शेयर आपसे।
0: जी
1: मैं मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार थे, अभी तो नहीं रहे, लेकिन जब वो नहीं रहे तो मुझे ऐसा लगता था कि जब उनका सपोर्ट खत्म हो गया तो शायद मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं अकेली, मेरे से होगा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा मतलब मैं सोचती रहती थी, क्योंकि बिजनेस करने की हिम्मत भी खत्म हो गई। डीमोटिवेट इतना ज्यादा हो गया, फिर मुझे लगा कि नहीं, एक्चुअली बच्चों ने बोला, मेरे फादर मदर इन लॉ ने भी बोला कि जब तुम्हारा सपना है ये और उसका सपना है ये, तो उसके सपने को पूरा करने के लिए तुम्हें मोटिवेट होना है, तुम्हें गिरना नहीं है। फिर मुझे भी डे बाय डे यही फील होता रहा कि नहीं, ये मेरा सपना है, इसे तुझे अपने जीते जी, मेरे जीते जी इसको पूरा करना ही करना है, करना ही है, इसको किसी भी तरह से आपको छोड़ना नहीं है। और फिर लोगों का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला, जो मेरे प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो काफी सालों से मेरे कस्टमर बने, वो भी मुझे कहते थे कि मैडम कोई बात नहीं ना, हम तो आपके साथ है ना, हम तो रेगुलर आपसे मंगाते ही हैं, हम भी लोगों को बोलेंगे, एक से दो, दो से तीन होंगे, आप इतने अच्छा बिजनेस करती हैं, इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाती हैं, आप करिए, आप हिम्मत मत हारिए, हम आपके सपोर्ट में हैं। उससे बहुत लोगों का सपोर्ट रहा, मेरे को कस्टमर का सपोर्ट भी मुझे बहुत मिला।
0: जी जी, तो कहते हैं जैसे एक रास्ता बंद होता है तो 100 रास्ते खुलते हैं, उसी तरह से शायद आपकी जर्नी रही मैम। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द लॉस ऑफ योर हस्बैंड। हम पूरी एसएन फैमिली की तरफ से आपको यू नो एक कंडोलेंस देना चाहते हैं और आपको आपके आपकी शख्सियत के लिए आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि यू नो इतने ब्लॉकेजेस के बाद भी आप आगे बढ़ते रहे और आपने उनके सपने को जिंदा रखा। दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप उस सपने को मर जाने दें और अपने ग्रीफ में बह जाएं, और दूसरी चॉइस होती है जो बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत कम लोग ले पाते हैं, बट वो होती है उस सपने को जिंदा रखना और उसको आगे ले जाना। तो वो करके आपने ऑलरेडी उनको एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट पे कर दिया है और आई एम श्योर वो जहां भी हैं वो बहुत प्राउड हैं और बहुत हैप्पी हैं आपकी जर्नी को लेकर। तो बहुत कंग्रेचुलेशंस मैम। इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे एक प्यारा सा गीत, जब कोई बात बिगड़ जाए।

0: क्या बेहतरीन और सदाबहार नगमा है ये। मैम आगे चलते हैं और जानेंगे आपसे कि आई एम श्योर आपके सफर में बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स रहे हैं। ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी जैसे जीवन आगे चला, और लोगों का ट्रस्ट जीतना जैसे आपने बताया कि शुरुआत में किस तरह से लोगों को बिलीव कराएं अपने प्रोडक्ट में, क्या कहें उनसे, तो वो सब जो चैलेंजेस थे उन सबके बीच क्या कोई ऐसी प्रैक्टिस है आपकी, क्या कोई ऐसा विश्वास है आपका, या कोई ऐसी एक आपका एक तरीका है आपका इस सब से निकल के हमेशा चलते रहने का एक जज्बा बनाए रखना, क्या है वो ऐसी चीज जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है? क्या वो डिवाइन पावर है, क्या वो इनर स्ट्रेंथ है, क्या वो कोई प्रैक्टिस है, मेडिटेशन, योगा, जो भी, वो अगर आप साझा करना चाहें हमारे श्रोताओं के साथ।
1: जी मैम, इसमें सबसे बड़ी जो ताकत है वो है कि एक तो हमारा परिवार का सपोर्ट, दूसरा है मेरा एक इसमें मोटिवेशन जो मुझे मिला वो सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे हस्बैंड से मिला। वो लास्ट तक जो उनका मोटिवेशन था वो यही था कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी आखिरी सांस तक इस बिजनेस को करना ही करना है। और मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि हम डीमोटिवेट होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, लेकिन हमें डीमोटिवेट की तरफ जाना ही नहीं है। कई लोग मिलते हैं ऐसे जो कहते हैं कि नहीं छोड़ दो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत कमी थोड़ी आ रही है, तुम्हारे पैसे से थोड़ा सा घर चलेगा, ये वो सब। लेकिन नहीं, हमें अपने सपने के लिए भी जीना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और आएंगे चैलेंज तो आते ही हैं, फाइनेंशियल चैलेंज भी आते हैं, बिजनेस में बहुत चैलेंजेस आते हैं, सपोर्ट भी नहीं मिलता है, कस्टमर का भी नहीं मिलता है, लेकिन हाँ अगर हम कोशिश करते रहते हैं तो मिलता है सपोर्ट।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपको कितना समय हो गया इस बिजनेस में मैम?
1: मुझे इसमें हो गए हैं 8 या 10 इयर्स, 8 to 10 इयर्स।
0: वाओ वाओ, अमेजिंग। एक डेकेड, एक दशक हो गया है ऑलमोस्ट। आई एम श्योर आप एक मदर भी हैं, और एक मदर होने के साथ साथ बिजनेस संभालना और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक केयर करना, तो इमोशनल बैलेंस और मेंटल बैलेंस को किस तरह से आप मेंटेन करते हैं? कभी बच्चों के साथ कोई चैलेंजेस आए या कोई ऐसा इंस्टेंस, अगेन मैं कोई एक कोई वाक्य अगर आप साझा करना चाहें कि कभी ऐसा हुआ हो जिसने आपको स्ट्रेंथ दी हो, जो परेशानी के साथ आया बट जाते जाते आपको स्ट्रेंथ देकर गया जब आपने उस मोमेंट को संभाला, उस लम्हे को जिया, तो किस तरह से, और आपके बच्चे किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं इस वेंचर में?
1: मदर होने के साथ साथ जो एंटरप्रेन्योर दोनों रोल्स जो मैंने निभाए हैं वो वाकई में इमोशनली तो बहुत होते हैं, और एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये हमारे एक हिंदुस्तानी महिला के लिए, तो शायद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसमें मेरे बच्चों ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, जब मुझे लगता था कि मुझे बच्चों के साथ अभी बाहर जाना है या उनको कहीं, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जा पाती थी, तो वो मुझे बोलते थे कोई बात नहीं आप अपना बिजनेस करो, हम चले जाएंगे, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर लेंगे, तो वो कर लेते थे इस तरह से मैनेज। और एक दूसरा पॉजिटिव मुझे वहां से आया जब मैंने मेडिटेशन और योगा करना शुरू किया। मैं जब भी थोड़ा सा भी डीमोटिवेट होती हूँ या कहीं से भी मुझे लगता है कि नहीं मेरा बिजनेस, मेरा मतलब शरीर भी लो जा रहा है, माइंड से भी या फिजिकली भी मैं लो फील करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, अपना सिर्फ जनरली म्यूजिक अपने लगा लेती हूँ और अपना सिर्फ और सिर्फ ध्यान में अपने बैठ जाती हूँ, 1 घंटा आधा घंटा, दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है मैं नहीं सुनती नहीं हूँ।
0: बिल्कुल।
1: अब वो एज आ चुकी है कि हमें अपने लिए भी जीना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और एक कटआउट जोन क्रिएट कर लेना अपनी पसंद की चीजों के साथ, और अपने साथ एक मी टाइम एंजॉय करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। आपको म्यूजिक का शौक है क्या? आप गाते भी हैं मैम?
1: नहीं, मुझे सुनना बहुत पसंद है, मुझे गाने का इतना शौक नहीं है, लेकिन आप पुराने गाने मैं बहुत सुनती हूँ।
0: जी जी।
1: और मैं जहाँ रहती हूँ सोसाइटी में वहाँ मैं योगा भी रोज आती हूँ सुबह, मुझे उनसे भी थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि वो योगा सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि योगा और मेडिटेशन भी हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल है।
0: बिल्कुल, हमें बहुत सेंटर करता है हमारे थॉट्स को, हमारे बिखरे हुए थॉट्स को। तो अगला गीत मैं आपकी पसंद का ही सुनाना चाहूंगी। पहले एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके प्रोडक्ट्स में आपने बताया कि केयर और ट्रस्ट का जो एलिमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो सबसे ऊपर है हर चीज से ज्यादा बढ़ के, तो क्या आप मानते हैं कि जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं उनमें जो मेकर है उसकी एनर्जीज, उसके इमोशंस ट्रांसफर होते हैं? कभी कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो इंटेंट है प्योर, वो भी ट्रांसफर होता है आपके प्रोडक्ट में? किस तरह से आप इसको देखते हैं?
1: हाँ, मैं पूरी तरह मानती हूँ कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स में मेकर का इमोशनल बहुत और एनर्जी दोनों जुड़ी हुई होती है। जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसे ये ध्यान रखते हैं कि जैसे हमारी स्किन जितनी सेंसिटिव है, बच्चों की स्किन जितनी सेंसिटिव है, बड़ों की, उतनी ही सबकी स्किन सेंसिटिव है। हर की स्किन को बेबी केयर की ही नीड होती है। तो मुझे अपनी स्किन पे सबसे पहले मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ, फिर अपनी स्किन पे ट्राई करती हूँ, फिर मुझे लगता है कि मेरी स्किन पे रिजल्ट थोड़ा ठीक आ रहा है या कुछ 19-20 है या कम ज्यादा आ रहा है ड्राइनेस या वो, तो मैं मेरे बच्चों पर या जैसे छोटे बच्चे हैं उन पर या मेरी मदर पर, हर एज पे मैं ट्राई करके फिर उसको मार्केट में लॉन्च करती हूँ, ताकि सामने वाले पर उसको स्किन पर इतना खराब रिजल्ट ना आए। अगर फायदा ना हो तो कम से कम वो उसको यूजलेस भी ना जाए उसके लिए।
0: और आपके जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि बेबी प्रोडक्ट्स हैं और एडोलेसेंट हैं, किस तरह टीनेज हैं, किस तरह से आपकी प्रोडक्ट रेंज है, और सबसे आपका जो जिसको आप रेकमेंड करेंगे सब लोगों के लिए स्किन केयर का एक बेसिक कोई प्रोडक्ट जो आप सबको रेकमेंड करना चाहें नेचुरल नेक्टर का।
1: मेरे प्रोडक्ट वैसे देखिए न्यू बॉर्न बेबी भी यूज कर सकता है क्योंकि नेचुरल है
0: जी,
1: तो हमें जरूरत नहीं है कि हमारी स्किन भी बेबी सॉफ्टी ही होती है, जैसे बच्चों की है उतनी ही हमारी है। तो मेरे प्रोडक्ट सारे नेचुरल, चाहे आप मेरे यहाँ का बॉडी वॉश यूज कीजिए, चाहे हैंड वॉश यूज कीजिए, चाहे मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, चाहे स्क्रब यूज कीजिए।
0: जी जी, तो आप
1: जो बॉडी वॉश आप लगा रहे हैं वही बच्चे लगा सकते हैं।
0: वाओ वाओ, वो इतने नेचुरल हैं
1: जी।
0: राइट, तो मैम आपकी पसंद का कोई गाना बताएं जो अब हम प्ले करना चाहेंगे।
1: जो भी आप पसंद, मेरे भी पुराने गाने सब पसंद आते हैं।
0: अच्छा, फिर भी कोई आपका फेवरेट, टॉप फेवरेट अगर अगर आप सुनना चाहें तो हम आपकी फरमाइश पे प्ले करना चाहेंगे।
1: सागर जैसी आंखों वाली।
0: वाओ क्या बात है, तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत फिल्म सागर से, सागर जैसी आंखों वाली। ये तो बता तेरा नाम है क्या।

0: बहुत ही प्यारा गीत। मैम आगे चलते हैं। मेरा सवाल अब है आपके कस्टमर से रिलेटेड, क्योंकि नेचुरली 10 साल हो गए तो एक कस्टमर बेस आपका, एक लॉयल कस्टमर बेस बन गया होगा। तो जब वो आपके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, आपको ट्रस्ट दिखाते हैं, आपको लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी दिखाते हैं, तो वो फीलिंग आपको अंदर से किस तरह से फुलफिल करती है? और कोई कस्टमर एक्सपीरियंस अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें, कि आई एम श्योर 10 सालों में बहुत सारे कस्टमर एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, तो कोई एक या दो एक्सपीरियंस जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आप कभी नहीं भूल पाते, जिसने आपकी जर्नी को बहुत शेप किया है, वो अगर हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें।
1: मैम जब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं और दोबारा उसे जब परचेज करते हैं तो मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है कि उन्हें इतना ट्रस्ट मेरे ऊपर किया कि वो मेरे प्रोडक्ट दोबारा लेने आ रहे हैं। टच वुड मैं यही कहूंगी कि अभी तक जितने भी कस्टमर जो जुड़े हैं, कुछ को छोड़कर बाकी 90% ऐसे हैं जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं। यहाँ तक कि वो अपने बर्थडे, एनिवर्सरी या जैसे कुछ छोटे ओकेजन भी होते हैं ना, तो वो मुझसे हैम्पर बनवाते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैम आप ये पूरे साल भर का कैलेंडर हमारा रखिए, ये है, आप इस एड्रेस पे इस डेट को ये पहुंचा दीजिएगा आप हैम्पर। इतना मुझे बहुत खुशी होती है कि उन्होंने मेरे सफर में मेरा सपोर्ट किया, कि ट्रस्ट जमाया मेरे ऊपर। और कई कस्टमर तो मेरे ऐसे हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ, थोड़े दिनों पहले एक ब्यावर के कस्टमर है मेरे, मैंने फर्स्ट एग्जीबिशन की थी ब्यावर में, पहली बार मैं उनसे मिली। एक्चुअली उनके हस्बैंड को बाहर जाना था फॉरन, उनकी यहाँ से फ्लाइट थी जयपुर से, वो मुझे ऐसे बोले कि मैम मैं प्रोडक्ट मंगा नहीं पाई हूँ, अब आप ब्यावर पहुंचा नहीं सकते क्योंकि आज उनको निकलना है और जयपुर से उनकी फ्लाइट है, लेकिन वो जयपुर जब तक पहुंचेंगे तब तक 11:30 बज जाएगी क्योंकि उनकी नाइट में फ्लाइट थी। फिर भी मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उनको बोलिए कोशिश करिए, मैं कोशिश करती हूँ ऐसा कि मैं उन्हें ये हमारे यहाँ 200 फिट तक मैं उन्हें दे देती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि बहुत सारा उन्होंने मुझसे, मतलब उनको फील भी बहुत हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उनकी तरफ से कोशिश की, मतलब चलो ठीक है मैं, अब वो फॉरेन जा रहे हैं, उन्होंने बोला कि आपके अलावा मैं यूज नहीं कर पाऊंगा वहां जाकर भी, क्योंकि मुझे आप ही के फेस वॉश और बॉडी वॉश सूट होता है। फिर मैं उनको वहां तक, लकीली मैं 11:30 उन्हें वहां देने गई, वो इतने खुश हुए और उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि मैडम आपके प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट बाद में हम देखते हैं, पहले आपका जो कस्टमर के प्रति डेडिकेशन है कि आप उस कस्टमर के लिए कितना डेडिकेट हो जाते हैं कि भाई हाँ मुझे वो प्रोडक्ट उसे देना है।
0: राइट,
1: वो मुझे, हमें बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे भी सामने वाले का सुनकर बड़ा अच्छा, मुझे लगता है कि हमें कोशिश तो करें ना हम।
0: करेक्ट, वो पर्सनल केयर में, सच में पर्सनल केयर आनी चाहिए जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट है उसमें।
1: मुझे लगता है कि उन्होंने यूज किया, अब वो बेचारे परेशान हो रहे हैं कि कहाँ से मैं लूंगा, क्या करूंगा, ये वो सब, तो मुझे लगा कि नहीं उन्हें मुझे देना चाहिए।
0: बहुत ही प्यारा सा एक एक्सपीरियंस आपने साझा किया। ऐसा और कोई इंस्टेंस जो आपके जहन में भी आ रहा है जो आप साझा करना चाहें?
1: ऐसा ही एक एक्सपीरियंस और है, मेरे एक कस्टमर है, उनका एक छोटा बेबी है, तो उन्होंने अपने ये बाहर की जितने भी आते बच्चों के प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया, उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने कहा हाँ आप यूज कर सकते हैं कोई इशू नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे बेटे को, वो 6 या 7 मंथ का था, कि उसे स्किन पर रैशेस हो गए हैं, रेड, जैसे हम मालिश करते हैं तो वो रेडिश हो

0: रहा है उसका, तो अब मैं क्या करूँ?
1: जी
0: फिर मैंने उन्हें बोला आप कुछ मत कीजिए, मैं आपको एक क्रीम भेज रही हूँ अभी सिर्फ छोटी सी ट्रायल के लिए, आप उसको उसी क्रीम से बॉडी मसाज कीजिएगा जब मालिश कराते हैं बच्चों की, आप उसी से कीजिएगा, आपको रिजल्ट आता है तो बेस्ट है, नहीं आता तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं उसके लिए ट्राई करूंगी कि कुछ और इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड कर आपको भिजवा सकूं।
1: राइट
0: फिर मैंने उन्हें क्रीम भेजी, उनको वास्तव में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, फिर उन्होंने गूगल पे जाके बहुत अच्छा रिव्यू भी डाला
1: जी
0: और काफी लोगों को शेयर किया कि उन्होंने मेरे छोटे से बच्चे को जो इतनी एलर्जी हो गया था, जिसको पानी से अगर मैं वॉश भी करती थी तो भी वो चिल्लाता था, हम सोचते थे कि छोटा बच्चा रो रहा है पानी से, बच्चे डरते हैं कई बार,
1: हाँ
0: लेकिन पता चला कि वो स्किन एलर्जी थी उसको, कि वो कुछ भी अड़ रहा था ना उसकी स्किन के, तो वो रो रहा था। वो तब से आज दिन तक अपने बच्चों को मेरी ही बनाई हुई क्रीम्स लगाते हैं।
1: वाह हाउ अमेजिंग। इन एक्सपीरियंसेस में कितनी पर्सनल एक टच होती है और कितना एक आपको लगता होगा कि आप कितना चेंज ला पा रहे हैं किसी के जीवन में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड केयर। तो क्योंकि
0: बिल्कुल
1: बच्चों से ज्यादा कोमल और आप सॉफ्ट, और एक मन जो एक सॉफ्ट हो जाता है वो बच्चों की तरफ बहुत ज्यादा जाता है, और जब बच्चों को तकलीफ में देखते हैं तो बहुत दुख होता है। तो आई एम श्योर ये प्रोडक्ट्स एक मैजिक की तरह काम करते होंगे उनके ऊपर। आगे चलते हैं मैम, मेरा आखिरी सवाल आज का, क्योंकि आपने खुद ने अपने आप को इतना बुलंद बनाया है, अपनी शख्सियत को इतना बुलंद बनाया है अपने कर्मों से, अपने कॉन्शियस डिसीजन से, और हर ऑड के अगेंस्ट, हर परेशानी के अगेंस्ट आप खड़े हुए हैं। तो आज की जो वुमेन फोक हैं, जो अपने सपनों को जीना चाहती हैं बट कहीं ना कहीं किसी रोड़े की वजह से, किसी ब्लॉक की वजह से उसको फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज हो, कोई प्रैक्टिकल मैसेज जो वो अपना सकती हैं, तो वो क्या होगा?
0: मैं हर महिला से यही कहना चाहूंगी कि अपने सपनों को भी कभी मत छोड़िए, हम परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने और सबके लिए जीते हैं, सबके लिए, सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हम सबके लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो छोटे छोटे कदमों से हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने भी शुरुआत की थी तो एक दो प्रोडक्ट से की, और जनरली मार्केट से छोटी छोटी दो बॉटल खरीद कर अपने फ्रेंड सर्कल को दिया, अपने रिलेटिव्स को दिया, वहां से मैंने शुरुआत की। छोटे छोटे कदमों से हम बहुत ऊपर की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं,
1: जी।
0: मुश्किलें आएंगी लेकिन हमें उनसे कभी घबराना नहीं है, और जब एक महिला खुद पर भरोसा करती है ना तो वो अपने साथ पूरे परिवार को, पूरे राष्ट्र को और पूरे समाज को भी आगे ले जाती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक महिला जब उठती है तो सच में वो पूरे परिवार को लेकर ऊपर जाती है और पूरा एक यूनिट उसके साथ ग्रो करता है। तो वो एक सिर्फ वुमन कर सकती है, एक सिर्फ औरत कर सकती है, ये शक्ति भगवान ने हमें दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी प्यारी, इतनी सरल और इतनी सहज बातें हमारे साथ साझा करने के लिए, आपके बिजनेस के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके जीवन के बारे में, जिसने बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर आज इंस्पायर किया होगा। थैंक यू मैम। आप
0: थैंक यू
1: कुछ
0: मैम।
1: जी आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में?
0: मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि एसएम रेडियो का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये मेरा पहला इंटरव्यू था और मुझे बहुत अच्छा लगा, जिंदगी के रंग गीतों के संग आपका ये खूबसूरत प्रोग्राम, आपको बहुत बहुत बहुत बधाई हो, और मुझे तो कुछ शब्द भी नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ मुझे कितनी खुशी हो रही है अंदर से।
1: आई एम सो ग्लैड मैम, हम इक्वली खुश हैं और इक्वली एक्साइटेड हैं इस प्रोग्राम की एयरिंग के लिए, क्योंकि आई एम श्योर आपकी बातों से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, जो हमारी जिंदगी के रंग गीतों के संग का मकसद है और एसएन रेडियो का मकसद है, लोगों को खुश करना और उन्हें इंस्पायर करना थोड़ा सा। तो दोस्तों, संगीता जी की जर्नी ने हमें ये सिखाया कि जब फेथ, फैमिली सपोर्ट और सेल्फ बिलीफ हो तो हर कहानी खूबसूरत बन सकती है। कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रंग स्ट्रगल्स के बाद ही आते हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, मिलूंगी आपसे फिर से एक नए मेहमान के साथ और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए आप अपने सपनों पर थोड़ा और भरोसा करिए, थोड़ा और बिलीफ रखिए, और जिंदगी के रंग गीतों के संग को महसूस करते रहिए। नमस्कार
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: આપના આ પઢંગલા ભાઈઓનું ઘણું ઘણું સ્વાગત કરીએ છે આપણા ઝાબુઆના સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટેન્ટાવેલ 90.8 FM ઝાબુઆની આવાજ પર.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा.
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
3: हर घर सूर्य घर.
4: आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें. आइए दोस्तों आपको बताते हैं ऐसी एक शख्सियत के बारे में जिनका देश प्रेम किस तरह से परवान चढ़ा और कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर एक मिसाल बन गया. उस दिन आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे. वो नौजवान एक किताब को लफ्ज दर लफ्ज पढ़े जा रहा था और कभी आसमान की ओर तो कभी जमीन की ओर मुंह किए आंसू बहा रहा था. लिखने वाले इतालवी विचारक ग्यूसेप मैजनी ने क्या खूब लिखा था, हर लफ्ज धारदार. आपका देश आपका मंदिर होना चाहिए, शिखर पर ईश्वर और आधार में एक समान लोग. पर आपका देश तो गुलामी से लहू लुहान है. हम अपने देश को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, हमें तो एक कदम रखते हुए भी देश का आभार मानना चाहिए. पर क्या हम ऐसा मानते हैं. वो युवा सोच सोच कर बिलख रहा था कि कोई इतने साफ तरीके से राष्ट्र व राष्ट्र प्रेम के बारे में कैसे बता रहा है. मैजनी मनुष्य के कर्तव्य बता रहे थे कि आपका देश क्या है, देश आपसे क्या चाहता है. क्या केवल आप ही देश से उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं और देश आपके प्यार के लिए हर पल तरसता रहता है. देश के बिना आपके पास न तो कोई नाम है, न निशान है, न आवाज है, न ही कोई हक. पर ऐसे देश को आपने कितना प्यार दिया. मैजनी यहां तक लिख देते हैं कि ईश्वर ने आपको मानवता की सेवा के लिए एक देश दिया है. अपने देश में किसी भी तरह की गुलामी और असमानता से मुकाबले के लिए आपका जन्म हुआ है. उस नौजवान की रुलाई रोके नहीं रुक रही थी. मैजनी बताए चले जा रहे थे कि वोट शिक्षा कर्म ये सब किसी देश के मुख्य स्तंभ हैं. जब तक आपके हाथ इन्हें मजबूती से खड़ा ना कर लें आराम मत कीजिए. पर तब अपना देश भारत तो गुलाम था, वोट का सवाल पैदा नहीं होता और शिक्षा का बहुत बुरा हाल है. नौजवान ने मैजनी के लिखे हुए को बार बार पढ़ा और हर बार देश और मानवता के लिए आंखें बहती रहीं. उन्होंने दूर देश में हुए और समय के साथ बीत गए विचारक मैजनी को ही अपना गुरु मान लिया. फैसला कर लिया कि अपना तन मन धन देश की सेवा के लिए समर्पित कर देना है. धिक्कार है अभी तक जो जीवन बीता वो अपने देश के काम ही नहीं आया. तब वो 3 रुपए की छात्रवृत्ति और शिक्षक पिता द्वारा भेजे गए 8 रुपए से काम चलाते थे. अक्सर भूखे रह जाते थे पर देश और समाज सेवा के बारे में लगातार सोचते रहते थे. सबसे पहले दुनिया को थामना होगा, उससे पहले देश को संभालना होगा और उसके लिए अपने समाज की चिंता करनी पड़ेगी और उससे भी पहले अपने परिवार की रक्षा करनी होगी. संयोग से उन्हीं दिनों वो आर्य समाज से जुड़ गए और उससे अपने राष्ट्रवाद का मेल बैठाया. अंधविश्वास से दूर वैज्ञानिकता और ज्ञान से भरपूर उनके राष्ट्रवाद ने उन्हें एक प्रभावी वक्ता बना दिया और लोग उन्हें लाजपत राय के नाम से जानने लगे. उनके सामने घर में ही चुनौतियां कम नहीं थीं. दादा जैन थे, पिता एक ऐसे हिंदू जो किसी भी मुसलमान से कम नहीं थे और मां सिख विधि विधान में जी रही थीं. पिता तो तभी मुस्लिम हो जाते जब लाजपत राय 2 साल के थे. तब ऐन मस्जिद की सीढ़ियों पर मां ने पिता को घेर लिया था कि ऊपर वाले की मर्जी समझो, उसने जिस धर्म में पैदा किया उसी में रहो, बच्चों की सोचो, मैं तो धर्म ना बदलूंगी. पिता तब भी दृढ़ थे पर शिशु लाजपत राय इतनी जोर से रोए कि तमाशा खड़ा हो गया. पिता नजरें झुकाए अपना परिवार लिए सीढ़ियां उतर आए. बहरहाल आर्य समाज ने लाजपत राय को मजबूत किया और उन्होंने पिता को भी समझाया कि कौन कहता है कि मूर्ति पूजा कीजिए, सगुण न सही निर्गुण रूप में भी ईश्वर को मानिए और वेद और सनातन को समझिए, उसके आडंबरों के अंदर मूल तत्व को जानिए। पिता को समझ आई कि बेटे की राह सही है, महत्व धर्म का उतना नहीं जितना देश और उसकी आजादी का है। देश सुखी और मजबूत होगा तो उससे धर्म की ही शोभा बढ़ेगी ना। अनेक समाज सेवा संस्थान, डीएवी शिक्षा संस्थान, पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी बीमा कंपनी, जाने कितने ही अनेक संस्थानों की रचना लाला लाजपत राय ने की। 28 जनवरी को जन्मे लाला लाजपत राय कोरे राजनेता नहीं थे, वो जमीनी काम करने वाले आदर्श समाजवादी थे। स्वभाव से निडर, खूब मेहनती और दिखावे से कोसो दूर। लाजपत राय ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल रहे जिन्होंने स्वराज को पहले समझा, कांग्रेस को बाद में समझ में आया और स्वतंत्रता आंदोलन के तेवर तीखे होते चले गए। उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते लाठियां भी खाई और इसी वजह से उनकी शहादत हुई। ये शहादत भारत की आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा निर्णायक पल साबित हुआ। उसके बाद गरम दल के नेता हों या नरम दल के, आजादी के रणबांकुरों ने पीछे पलटकर नहीं देखा। ऐसे थे लाला लाजपत राय।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: इस दुनिया में अच्छे से अच्छे लोग अपना रास्ता बदल देते हैं, अगर आके कोई बता दे कि आगे पुलिस वाला चालान काट रहा है।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। विलुप्त होते बेजुबानों की सुध कौन ले रहा है? अब तो चुपचाप शाम आती है, पहले चिड़ियों के शोर हुआ करते थे। मोहम्मद अलवी का ये शेर लेख के अंत में समझ में आएगा कि यहां क्यों इस्तेमाल किया गया है। भारत देश इन दिनों हिंदू मुस्लिम की नापाक जंग के एक लंबे दौर से गुजर रहा है। CAA NRC पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद देश दो हिस्सों में बट गया है, एक इसके पक्ष में और एक इसके खिलाफ। टीवी डिबेट से लेकर चाय की टपरी तक हर जगह हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और शाहीन बाग ट्रेंड में बना हुआ है। लेकिन इस देशव्यापी गर्मा गर्मी के बीच भारत में रहने वाले पक्षियों को लेकर एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जिस और कम ही न्यूज प्लेटफॉर्म्स और राजनेताओं का ध्यान गया है। कुछ रोज पहले गांधीनगर में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर आयोजित 13वें COP सम्मेलन में स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि भारत में पक्षियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। स्थिति की दयनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध पश्चिमी घाटों पर साल 2000 से पक्षियों की संख्या में 75% तक की कमी आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गिद्ध, छोटे पंजों वाले स्नेक ईगल, बड़ी कोयल, सामान्य ग्रीन शैंक जैसे पक्षी लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं भारत में 79% पक्षियों की संख्या घटी है। अब जब रिपोर्ट में कई प्रजातियों के विलुप्त होने की बात कही गई है, तो सवाल उठना भी लाजमी है, और ये सवाल किसी एक पर नहीं बल्कि हम सभी पर उठता है। हम सभी मतलब जीव वैज्ञानिकों से लेकर सरकारी तंत्रों और आम इंसानों तक, जिनकी सुबह चिड़ियों की चहचहाट से होती है। गर्मियां शुरू होने को हैं और आसमान में उड़ते परिंदों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। पेट में भूख और कंठ में प्यास लेकर शहरों की छत के चक्कर लगाने वाले पक्षी हों या नदी नालों और जंगलों में बसर करने वाले बेजुबान, इन दिनों अपनी ही अनुकूल जगह पर घुटन महसूस कर रहे हैं। लेकिन 137 करोड़ की आबादी में सिर्फ कुछ फीसदी लोग ही ऐसे हैं जो निजी तौर पर पक्षियों के संरक्षण में योगदान दे रहे हैं, और ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। हाल में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP 13 में खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विषय को संबोधित किया था, इसलिए ये कहना भी गलत होगा कि इस बात की जानकारी जिम्मेदार नेताओं या सरकारी तंत्रों को नहीं है। फिर ऐसी रिपोर्ट सामने आने के बाद भी हम भारत में सालों से रह रहे और प्रवासी पक्षियों को लेकर कितने गंभीर हैं, इस पर भी विचार किया जाना जरूरी है। लगातार घटती पक्षियों की संख्या से जीवन वैज्ञानिक चिंतित तो हैं, लेकिन इसकी मुख्य वजह और उसे रोकने के प्रभावी तरीके शायद ही किसी के पास हों। साथ ही पक्षियों की इस दयनीय स्थिति को लेकर सरकारी महकमा कितना गंभीर है, यह भी एक शोध का ही विषय है। अंत में इतना कहा जा सकता है कि शायद हमें आजादी से चली आ रही हिंदू मुस्लिम लड़ाई को अब पीछे छोड़ देना चाहिए और बेजुबानों की घटती संख्या पर गंभीरता अपनानी चाहिए, नहीं तो पहली पंक्ति में इस्तेमाल किया गया मोहम्मद अलवी का शेर हमारी आने वाली पीढ़ियों को कड़वा सच बनकर सताएगा, और इसके लिए इतिहास हमें कभी माफ नहीं कर पाएगा।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: थका मैं, हारा मैं, गिरा मैं, कदमों की आदत ये कब रही? इस तरह काटे रास्ते मैंने, मंजिलों की मेरी तलब रही। तुम्हें तो सिर्फ वो काला लैपटॉप का बैग नजर आता है, वो कंधों पे रोज न जाने क्या क्या दफ्तर ले जाता है। हर शख्स शहर में यहां अजनबी सा लगे, और मेरे गांव का वो बूढ़ा पेड़ भी मेरे यार सा है।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: एक लड़का जो था एग्जाम हॉल में बैठा बड़ा परेशान हो रहा था। टीचर उसके पास गया, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो, आ नहीं रहा क्या, क्वेश्चन बहुत टफ है। कहता नहीं सर, परेशान इसलिए नहीं हूं कि क्वेश्चन टफ है, मैं ये भूल गया हूं कि कौन से क्वेश्चन का जवाब मैंने रखा कहां है।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। उम्मीदों का आसमान। उम्मीद अगर परिंदा है तो जिंदगी एक आसमान है, जहां वो हमेशा उड़ता ही रहता है। कभी भी नजर उठाकर देखिए, हमारे मन के घोंसले से निकले ऐसे लाखों परिंदे इस आसमान में हर समय उड़ते नजर आएंगे। हो सकता है इनमें से कुछ आपकी उम्मीदों के भी हों, जिन्हें आप होश संभालने से लेकर अब तक पालते आए हैं और जिनके मंजिल तक पहुंचने का इंतजार आपको जीने के लिए एक जायज वजह दिए हुए है। उम्मीदों के इन परिंदों को हम बड़े जतन से पालते हैं, हर बला से इनकी हिफाजत करते हैं, फिर भी कई बार ये हमारे काबू से बाहर निकल जाते हैं। कभी परवाज भरते हैं तो कभी उड़ते उड़ते बेदम होकर जमीन पर आ गिरते हैं। फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसलिए हम उन्हें हमेशा के लिए कभी मरने नहीं देते और न ही कभी अपने सोचों के पिंजरे से आजाद होने देते हैं। उम्मीदों के इस विशाल हुजूम में सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं बदलाव की। हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बदलाव के ख्वाहिशमंद नहीं होते। यह बदलाव किसी भी चीज से ताल्लुक रख सकता है, हमसे, हमारे हालात से, हमारे माहौल से, हमारे करीबियों से, हमारे समाज से, सिस्टम से। हम हर चीज को अपने मुताबिक देखना चाहते हैं। अगर वो वैसी नहीं है तो हम उसके वैसा हो जाने की उम्मीद करते हैं। दुनिया को कायम रखने वाली इन उम्मीदों को खुद कायम रखने के लिए कोई वजह या बहाना खोजने की जरूरत नहीं होती। जब भी ये कमजोर पड़ती हैं, कोई ना कोई खबर या याद उन्हें ताकत देने आ ही जाती है। उम्मीदें ही हैं जो हमें सब्र और इंतजार के सही मायने समझाती हैं, हमें भरोसा दिलाती हैं कि आज नहीं तो कल वैसा होना लाजमी है जैसा कि हम चाहते हैं। उम्मीदें हमें याद दिलाती हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं होता, जो आज है उसे कल बदलना ही होगा। बदलाव की ये चाहत और उम्मीद हमें कभी चैन से नहीं रहने देती। हमें कभी करीब और इर्द गिर्द की कोई चीज कभी संतुष्ट नहीं कर पाती। हम चीजों में नुक्स निकालते ही रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि दुनिया में कुछ भी मुकम्मल नहीं होता।

वादे करती हैं, दावे करती हैं, 100 में से एक आध बार इन दावों को साबित भी करती हैं। हमारे देखते देखते बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बदलाव की राह देख रहा है। वक्त के बहते दरिया में हमने बहुत कुछ घटते देखा है, इंसानों को समंदर की थाह लेते देखा है, पृथ्वी से अंतरिक्ष में छलांग मारते देखा है, इंसान को भगवान के बाद नंबर 2 बनते देखा है, आग से अणु तक, दूरियों से पहियों तक, भूख से अनाज तक, आंखों से रोशनी तक, अपनी हर जरूरत को पूरा होते देखा है। आवाज से भी तेज चलने वाले विमानों से लेकर धरती की सतह तले बसने वाली बस्तियों तक हमने हर नामुमकिन को मुमकिन होते देखा है, देख रहे हैं। आज हमारे पास समय को चुनौती देते हुए संसाधन मौजूद हैं। हम कुछ ही घंटों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं, पलक झपकते ही किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। जीवन को हर प्रकार के रस से भर सकने के साधन हमारे पास मौजूद हैं। फिर भी वो कौन सी कमी है जो हर पल हमें बेचैन रखती है, जिसके पूरा होने की उम्मीद साए की तरह सोते जागते हमारे साथ साथ चलती है? सब कुछ सामने होने के बाद भी कुछ भी क्यों अपना सा सच्चा सा नहीं लगता? क्यों एक खालीपन सा हमेशा हमारी जिंदगी में अपनी मौजूदगी का एहसास कराता रहता है? क्या है जिसे पाकर हम इस खालीपन को भरा हुआ महसूस कर पाएंगे? क्या इसकी वजह यह है हर उम्मीद पूरी होकर भी एक अधूरेपन के साथ बंधे रहने के लिए अभिशप्त है? शायद यही वजह है कि हम सितारों के करीब पहुंचे हैं, इंसानों से दूर हो गए हैं। हमने इंसानों को इंसान बनने में मदद करने के बजाय इंसानों से होड़ लेते रोबोट बना डाले हैं। हमने जेनेटिक फसलें इजाद की हैं, उपज को 10 गुना बढ़ा लिया है, लेकिन भूख से मुक्ति नहीं पा पाए हैं। हमने कानूनों की किताबें लिख डाली हैं, लेकिन लोगों तक इंसाफ नहीं पहुंचा पाए हैं। हमने बेशुमार समृद्धि पाई है, लेकिन अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को फैलते जाने से नहीं रोक पाए हैं। हमने प्लेग, चेचक, पोलियो, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों को शिकस्त दी है, लेकिन साथ ही साथ हमने एड्स, डेंगू, स्वाइन फ्लू जैसी अनेक बीमारियां भी इजाद कर ली हैं। हम एक समस्या का समाधान खोजने के बाद अपनी पीठ थपथपा तक नहीं पाते कि 4 नई समस्याएं हमें मुंह चढ़ाने के लिए सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। शायद इसीलिए किसी भी उम्मीद का पूरा होना हमें भले ही जीत का एहसास दे, लेकिन उस खुशी और सुकून का एहसास नहीं दे पाता जो अपना चाहा कुछ भी पा लेने के बाद मिलनी चाहिए। शायद इसीलिए उम्मीद हमेशा किसी अधूरी प्यास की तरह हमें बेचैन रखती है। हम उम्मीद करते हैं एक भय, भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त दुनिया के सृजन की। हम उम्मीद करते हैं हर प्रकार की बुराई और बीमारी से मुक्त इंसान की। हम उम्मीद करते हैं मशीनों पर इंसानी जीत की, एक हरी भरी धरती की, गरीब, अशिक्षा, अंधविश्वास से मुक्त जीवन की। हम उम्मीद करते हैं अमर होने की और अपने मर्जी से अपने तरीके से जीने के अवसर पाने की। हम सब कुछ सही होने की उम्मीद करते हैं और सही हमें वही लगता है जो हमारे अनुकूल है। ऐसी दर्जनों, सैकड़ों, हजारों, लाखों उम्मीदें हैं जिन्हें हम पूरा होते देखना चाहते हैं। किसी ऐसे रहनुमा की राह देखते हैं जो इन्हें पूरा करने में सक्षम हो, क्योंकि खुद हम सिर्फ उम्मीदें करते हैं, कोशिशें नहीं।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: देखो भैया, जो तुम्हारे नसीब में है ना, बदल तो तुम सकते नहीं। सब्जी वाले की दुकान पर जो तुम आलू छांट छांट के अलग कर देते हो, लेते नहीं हो ना, वो सब समोसे टिकिया के रूप में आते तुम्हारे ही पेट में।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। रिश्तों की जमीन पे जज्बातों के पेड़। रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं, जितने रूप हम उनके जानते हैं उससे कहीं ज्यादा रूप होते हैं इनके। परत दर परत खुलती जाती है और जिंदगी में कभी हम इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाते कि हमने किसी रिश्ते को पूरी तरह समझ लिया है। जब हमें ऐसा लगता है तभी कोई ना कोई परत उधड़ जाती है और रिश्ते का एक नया अनदेखा पहलू हमारे सामने उजागर हो जाता है। रिश्ते दरअसल इस उपजाऊ जमीन की तरह है जहां पर जज्बातों के तरह तरह के पेड़ पौधे पनपते हैं और हर पतझड़ हर बहार में रिश्तों को नई रंगत देते हैं। जब ये बहारों में झूमते हैं तो रिश्ते भी खिल उठते हैं और जब पतझड़ में ये मलिन होते हैं तो रिश्ते भी उदास हो जाते हैं। रिश्तों की जमीन पर उगी छोटी सी बगिया का एक पौधा है विश्वास। यूं तो हर पौधे की अपनी एक अहमियत एक जरूरत है, लेकिन विश्वास नाम का यह पौधा हर रिश्ते के आगाज और पुख्तगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है। विश्वास एक ऐसा पौधा है जो बढ़ता तो बहुत धीरे धीरे है लेकिन उखड़ एकदम से जाता है। कैसी अजीब बात है, जो पौधा नाजुक से नाजुक रिश्ते को एक मजबूती देता है खुद इतना नफीस और नाजुक होता है कि हल्की सी धसक इसे जड़ से उखाड़ फेंकती है और फिर भले ही उसे कितना ही अच्छे से फिर से रोपा जाए ये पहले जैसा हरा भरा नहीं रह पाता। दरअसल इस पौधे पर उगने वाले फल भी वैसे ही होते हैं, जब तक पेड़ पर लगे हैं तभी तक स्वादिष्ट और सुंदर दिखते हैं। एक बार शाख से टूटकर गिरे कि जमीन पर कांच से

छितरा जाते हैं। उम्मीद के फल, वफादारी के फल, सहयोग के फल, प्यार के फल, संभाल के फल। इसके एकदम विपरीत है शक का पौधा। पौधा क्या, विष बेल है। एक बार जड़ जमाने का मौका मिल जाए बस, तो फिर क्या मजाल कि कोई उखाड़ सके, कितना ही जतन कर लीजिए। कई बार आपको लगेगा कि आपने इसे उखाड़ फेंका है, लेकिन कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है और मौका पाकर बेल फिर से हरी भरी हो जाती है। और धीमे जहर की तरह धीरे धीरे एक दिन रिश्ते की जान ले लेती है। वैसे देखा जाए तो हर रिश्ते का अंत उसके आगाज के साथ ही तय हो जाता है। इस पर लगे हर पेड़ को एक दिन मुरझाना ही है। बस कोई जरा जल्दी मुरझा जाता है और कोई सबसे आखिरी में। ये जमीन एक निश्चित वक्त तक के लिए उपजाऊ बनी रहती है, फिर तो इसे बंजर हो ही जाना है। इसलिए रिश्तों के मरने का मातम नहीं करना चाहिए, बल्कि जब तक ये हैं तब तक इनकी खूबसूरती का पूरा आनंद लेना चाहिए। हम किसी रिश्ते को जन्म तो दे सकते हैं, लेकिन अमरत्व नहीं दे सकते। हम जो कर सकते हैं वो ये कि उस अवधि को विस्तार दें जो उस रिश्ते के लिए निर्धारित हुई है। और इसके लिए हमें बस कुछ पौधों को निरंतर खाद पानी देते जाना है और कुछ बेलों को नियमित रूप से उखाड़ते जाना है। क्या ये बहुत मुश्किल है?

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: 1992 से लेकर 1993 यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

सांप सुने सरसाए, सांप सुने सरसाए, साए साए सुरमा सा सा संग समाए, समय सबक समझाए, खोखा खोखा जी मेरा खोखा खोखा है। फांसी फंदा फुसकी फांके फुंगी फन फैलाए, फिरते फिरते फेरा फेरी

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं काजोल देवगन। शादी से पहले इनका नाम काजोल मुखर्जी था। अजय देवगन से शादी के बाद काजोल देवगन हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं काजोल की ही फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी मां तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रहीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रहीं और हमेशा हिट ही रहीं। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: एक बात तो बताओ, रंग सारे कैसे पहन लेती हो तुम एक साथ? एक ही लिबास में खुशबू सारे फूलों की कैसे महका देती हो तुम एक साथ? एक ही गहरी सांस में गीत सारे पंछियों के कैसे गुनगुना लेती हो तुम एक साथ? एक ही मुस्कुराहट में मिलके मुझसे जब पुकारती हो मुझे, सुनो, प्रेम सारी दुनिया का कैसे समेट लेती हो तुम एक साथ? एक ही शब्द में बताओ ना, बताओ तो। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय 90.8 FM की इन रूहानी लहरों पर, और आप सुन रहे हैं रेडियो SN और रेडियो टांडिया भील पर जज्बात और मोहब्बत का मुकम्मल सफर अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, अमूमन हमारा ये सफर कुछ चुनिंदा गजलों और उनके एहसासात के इर्द गिर्द घूमता रहता है, मगर आज की ये महफिल बेहद मुनफरिद है, बहुत खास है। आज का पूरा प्रोग्राम एक निहायत खूबसूरत सी डेडिकेशन है। ये नजराना उन रूहानी आवाजों और उन जहीन रहबरों के नाम जो माइक के इस पार रहकर हर दिन आपकी जिंदगी को सुरों और लफ्जों से संवारते हैं। जी हाँ, आज की ये शाम मैं मंसूब यानी डेडिकेट कर रही हूँ हमारे रेडियो स्टेशन के अजीम डायरेक्टर्स और हमारे बहुत अजीज आरजे साथियों के नाम, समीर जी, नितिन, आलोक जी, इंद्रानी, तनुषा और बासु। ये वो नाम हैं जिनकी अकीदत, जिनका फन और जिनकी मोहब्बत इस रेडियो स्टेशन की धड़कन है। आज इस महफिल में मेरे अल्फाजों के साथ आप इन अजीम फनकारों की अपनी आवाजों में भी ये सुनेंगे कि उन्हें ये गजलें जो सुरों का जामा पहने हुए हैं क्यों पसंद हैं। तो आइए इस बेहद खास और पुरखलूस शाम का आगाज करते हैं। अपनी अपनी जगहों पर काबिज हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आप खुद भी इधर उधर हिलना पसंद नहीं करेंगे। हमारे SN रेडियोज की फैमिली की पहली खूबसूरत पेशकश है दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक के इस RJ स्पेशल सिलसिले की पहली पेशकश मंसूब है एक ऐसी शख्सियत के नाम जो ना हमारे सिर्फ रेडियो स्टेशन के मेयारी डायरेक्टर हैं, बल्कि अपनी आवाज़ के सहर से आप सबको मंत्रमुग्ध करने वाले एक बेहतर

0: दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक के इस स्पेशल कारवां को आगे बढ़ाते हुए अब हमारी अगली पेशकश मंसूब है एक बहुत ही अजीम शख्सियत के नाम। वो भी हमारे SN रेडियो के मियारी डायरेक्टर हैं और एक उम्दा RJ होने के साथ साथ एक बेहतरीन गायक और रूह को सुकून पहुंचाने वाले एक बेहद अजीम हीलर भी हैं। जी हाँ, मेरे बहुत अजीज दोस्त नितिन राज, उन्होंने कई बार मेरी हीलिंग की है जब भी मैं किसी इम्तहान में फंस जाती हूँ। अब जिंदगी है तो कई इम्तहान भी देने होते हैं दोस्तों। मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने में नितिन का भी बहुत बड़ा हाथ है। समीर जी से कहा कि आरती को ऐसा काम दो कि दिन भर मसरूफ रहे, और सच में दोस्तों मैं सारा दिन के लिए मसरूफ हो गई हूँ। गजल चुनना, फिर सुनना, फिर स्क्रिप्ट तैयार करना, फिर रिकॉर्डिंग एंड ऑल, उसमें कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। शुक्रिया नितिन, मेरा इतना अच्छा दोस्त होने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी। दोस्तों, नितिन खुद संगीत की कमाल की समझ रखते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े AC हैं। फैन तो आम बात होती है, और जब गजलों की बात होती है तो हरिहरन के सुर उनकी पहली पसंद बन जाते हैं। नितिन की इस रूहानी पसंद का ये शाहकार है जिसे अजीम शायर राही मासूम राजा ने लिखा है। ये गजल नितिन के दिल के बेहद करीब है। वैसे भी जो इंसान दूसरों के दुखों को समझता हो, एक हीलर की तरह जज्बातों को सहलाता हो, उसके मिजाज की हरिहरन साहब की मखमली आवाज का ठहराव बहुत सुकून देता है। गजल का मिसरा कुछ यूं है दोस्तों, इजहारे वफा तुम क्या समझो, इजहारे वफा तुम क्या समझो, इकरारे वफा तुम क्या जानो, हम जिक्र करेंगे गैरों का और अपनी कहानी कह देंगे, समझे ना तुम जो आंखों से वो बात जुबानी कह देंगे, कुछ दूर हमारे साथ चलो। और अब आइए हमारे नितिन की ही आवाज में सुनते हैं कि उन्हें ये गजल आखिर क्यों इतनी पसंद है, और उसके बाद गजल सुनेंगे।
1: कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे, समझे न जिसे तुम आंखों से वो बात जुबानी कह देंगे, कुछ दूर हमारे साथ चलो। कुछ गजलें सुनी जाती है और कुछ महसूस की जाती है। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हरिहरन की ऐसी ही एक हमेशा याद रहने वाली बेहतरीन रचना है। अपने दिल को छू लेने वाली कविता, सुकून देने वाली धुन, और हरिहर

0: इनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज के साथ ये गजल प्यार, चाहत और किसी अपने के साथ हर पल को संजोने की इच्छा की भावनाओं को खूबसूरती से दिखाती है। हर सुर और हर शब्द दिल को छू जाता है।
1: कुछ दूर हमारे साथ चले।

0: दोस्तों अल्फाज से एहसास तक की इस खास आज स्पेशल की महफिल में अब हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां गुजरे दौर की सुनहरी यादें और क्लासिक रवायत अपनी पूरी पाकीजगी के साथ मुस्कुरा रही है। हमारी अगली पेशकश मंसूब है एक ऐसे अजीम तजुर्बेकार रेडियो आर्टिस्ट और माहिर पॉडकास्टर के नाम, जिनकी अपनी आवाज़ और पेश करने का अंदाज बरसों की साधना की गवाही देता है। जी हाँ, हमारे बेहद अजीज आलोक जी। दोस्तों आलोक जी रेडियो की दुनिया के वो पाकी मुसाफिर हैं जिनका दिल गुजरे जमाने के क्लासिक गुलुकारों के हुनर के लिए धड़कता है। अभी हाल ही में हमारी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने जिक्र किया था के एल सहगल जी, पंकज मलिक, सी एच आत्मा, के सी डे और जगमोहन जी जैसे दरखशा सितारों की गायकी उनका उड़ना बिछाना है। बहुत इनकरेजिंग मैसेजेस भेजते हैं वो मुझे, और मुझे अच्छे से ये यकीन हो चला है कि उनका तजुर्बा बहुत वसी है, बहुत कुछ सीखना है अभी उनसे भी। आलोक जी की पसंद पर आज महफिल में सजने जा रही है सुरसागर जगमोहन साहब की वो नायाब और पुरकशिश गजल जिसके सुर आज भी उतने ही तरोताजा हैं। शायर फयाज हाशमी साहब के इन मासूम और रूहानी अल्फाज को जब जगमोहन साहब ने अपनी उसी ठहराव भरी आवाज से नवाजा तो मोहब्बत का एक बेसाख्ता इकरार वजूद में आया। जहां दिल ये तो जानता है कि उसे शिद्दत से मोहब्बत है, मगर उसे उस क्यों का जवाब उसके पास नहीं होता। आलोक जी की ये पसंद आज हमारे इस महफिल को एक तारीखी गरिमा और पाकीजा सुकून बख्श रही है। गजल का एक मिसरा मुलाजा फरमाएं। रूप की कुछ कमी नहीं, रूप की कुछ कमी नहीं, दुनिया में एक तुम ही नहीं, पर मैं तुम्हारी याद में रहता बेकरार क्यों, ये ना बता सकूंगा मैं कि दिल को तुमसे है प्यार क्यों। और अब आइए आलोक जी की जुबानी सुनते हैं कि क्यों उनको ये जज्बातों से भरी गजल इतनी पसंद है, और उसके बाद गजल सुनेंगे।
1: मेरी आवाज के दोस्त हो, सबसे पहले तो आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार आपको आदाब पेश करता है, और उसके बाद आरती जी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि वो ये खूबसूरत सा प्रोग्राम बना रही हैं जो हम सबके दिल के करीब है। दोस्तों आज जिस गीत की मैंने फरमाइश की है वह है जगमोहन सुरसागर जी का एक बेहद खूबसूरत नगमा, दिल को है तुमसे प्यार क्यों ये ना बता सकूंगा मैं। जहां तक मैं सोचता हूं किसी भी गीत को पसंद करने के पीछे हमेशा उसकी धुन या उसके बोल ही कारण नहीं होते, कई बार उस गीत के साथ जुड़ी हुई यादें उसे हमारी जिंदगी का हिस्सा सा बना देती हैं। जब भी वह सुनाई देता है यादों का एक पूरा कारवां साथ चल पड़ता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मेरे बिट्स पिलानी के कॉलेज के दिनों में हमारा एक छोटा सा दोस्तों का ग्रुप था। उस दौर में जब ज्यादातर लोग नए फिल्मी गीतों की बातें करते थे, हम लोग बड़े शौक से केएल सहगल, पंकज मलिक, जगमोहन सुरसागर को सुनते थे। घंटों उनकी गायकी, उनकी अदायगी, उनके अंदाज पर चर्चा होती थी। उन्हीं दिनों से ये गीत मेरी यादों का एक स्थायी सा हिस्सा बन गया है। इस गीत की एक पंक्ति तो अब मुझे आज हो जाती है, पहले मिलन की छाओ में तुमसे तुम्हारे गांव में आंखें हुई थी चार क्यों ये न बता सकूंगा मैं। क्या खूबसूरत भाव थे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। अब आप में से कुछ श्रोता शायद ये सोच रहे होंगे आखिर इस गीत में मेरी ऐसी कौन सी यादें जुड़ी हुई हैं। तो उसका पूरा खुलासा मैं आज नहीं करूंगा। आखिर ये कार्यक्रम तो पब्लिक डोमेन के लिए है, कभी कभी मेरे पोते पोतिया भी इसको सुन लेते हैं भाई। लेकिन कहूं तो युवावस्था होती ही ऐसी है, कुछ मीठी सी यादें, कुछ मासूम से एहसास और कुछ अनकही कहानियां जो इस गीत के साथ जरूर जुड़ी हुई हैं। तो आइए इन्हीं यादों के साथ सुनते हैं जगमोहन सुरसागर की मधुर आवाज में ये अमर गीत, दिल को है तुमसे प्यार क्यों ये ना बता सकूंगा मैं। शुक्रिया।

दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक के इस बेहद खास आर्ची स्पेशल सिलसिले में अब मैं जिसका नाम लेने जा रही हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है। असम की तिनसुकिया की वादियों से हमारे कुनबे का हिस्सा बनी हमारी अगली आर्चे इंद्रानी, जिसे मैं प्यार से इंदु और लाड से बुलबुल भी बुलाती हूँ। इंदु की आवाज में एक मासूम बच्चे की चहक है। इतनी नाजुक दुबली पतली सी लड़की जो सुबह 3:30 बजे उठकर रात के 10 बजे तक मेडिटेशन, हीलिंग, संगीत टीचिंग और अनगिनत सोशल एक्टिविटीज में मसरूफ रहती है कि सुनकर हैरत होती है, मगर इस नाजुक से बदन में पैशन और हुनर का एक तूफान छुपा हुआ है। क्लासिकल म्यूजिक में विशारद इंदु जब बात करती है तो बुलबुल सी लगती है, मगर जब वो सुर छेड़ती है तो उसकी आवाज का वो आला दर्जे का शास्त्रीय निखार इंसान को हैरान कर देता है। दोस्तों, इंद्रानी एक बेमिसाल सिंगर ही नहीं बल्कि एक बेहद रूहानी हीलर भी है। जब कुछ महीने पहले मैं बहुत बीमार हुई थी तो नितिन के साथ मिलकर इंदु ने भी पर्दे के पीछे रहकर मुझे बिना बताए मेरी हीलिंग की और मैं अचानक ही ठीक भी हो गई। आज मैं माइक के इस पार से अपनी इस बुलबुल का और नितिन का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। जब मैंने इंदु से उसकी पसंद पूछी तो उसने अपनी मखमली आवाज में 7-8 गजलों की एक एक लाइन गाकर मुझे भेज दी। अफसोस कि मैं वक्त की कमी से वो सारी तो नहीं सुना सकती, मगर उन्होंने जो आखिरी गजल गाई वो सीधे मेरे दिल को छू गई। लता दी की पुरसोज आवाज में जगजीत सिंह की मौसीकी से सजी संवरी ये गजल जैसे फिजा में गूंजती है तो फिर गूंजती ही रहती है। इंदु ने जो एक लाइन ही वो मुझे सुनाई वो उसी तरीके से उसी तरह का आलम जैसे तारी हो गया। गजल का मिसरा यूं है, खड़ा हुआ आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, खड़ा हुआ आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, सवाल ये है किताबों ने क्या दिया मुझको, और फिर धुआं बना के फिजा में उड़ा दिया मुझको। नाजिर बाकिर के

दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक के इस खास आरजे स्पेशल गुलदस्ते में अब वक्त हो चुका है पिंक सिटी यानी जयपुर का रुख करने का। हमारी अगली पेशकश मंसूब है एक बेहद खूबसूरत, जहीन और बेहद सलीकेदार आरजे और माहिर पॉडकास्टर हमारी प्यारी सी तनुषा। तनुषा की आवाज जितनी दिलकश है, उनका हुनर उतना ही आला है। वो किस कमाल के साथ सिंगल हैंडेडली लोगों के इंटरव्यूज लेती हैं और अपनी बात पर बड़ी पॉजिटिव सी कमाल

0: ध्यान रखती हैं। वो उनकी सख्त मेहनत और ईमानदारी की गवाही देता है। दोस्तों, जब मेरा ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो तनुषा ने हमेशा मेरा प्रोग्राम सुना, मेरी हौसला अफजाई की और उन्होंने एक बार चैट बॉक्स में ऐसा कमेंट लिखा जो सीधे मेरे दिल के पार उतर गया। तनुषा ने लिखा था, गजल को आज एक गजल पेश कर रही है, यानी गजल को पेश करने वाली की आवाज खुद भी गजल जैसी है। तनुषा, आज मैं इस माइक के जरिए कहना चाहती हूँ कि ये मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे बेहतरीन और अजीज तरीन कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू सो मच डार्लिंग, तुम्हारे इस खुलूस ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ तब आया जब मैंने उनसे उनकी पसंद की गजल की वजह पूछी तो चैट बॉक्स में बहुत ही शर्माते हुए इमोजीज के साथ लिखकर भेजा, मैम आतिफ असलफ इज माई बचपन का क्रश। तनुषा, इसमें इतना भी शर्माने की क्या कोई बात नहीं, हम सबके बचपन के कोई ना कोई क्रश होते हैं। आज अपनी प्यारी तनुषा और उसके उसी बचपन के क्रश यानी आतिफ असलम साहब की रूहानी आवाज में सजी ये बेहद पाकीजा पेशकश आप सबके हवाले कर रही हूँ। कोक स्टूडियो का ये वो शाहकार है जो हर डूबते दिल को एक आस देता है। दोस्तों, ये ओरिजिनली साबरी ब्रदर्स की गाई हुई है, लेकिन आतिफ असलम साहब ने भी बखूबी निभाया है इसको। गजल के बोल हैं, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी समर जाएंगे, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। फिर कहते हैं, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। तो आइए तनुषा की मीठी सी आवाज में सुनते हैं उनकी जबानी कि क्या रूहानियत है इस गजल में जो उन्हें इतना मुतासिर कर गई। ओवर टू तनुषा और फिर गजल।
1: मुझे आतिफ असलम का ताजदारे हरम बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आई थिंक ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं है, इट्स एक्चुअली अ फीलिंग। और कोक स्टूडियो से मेरी बहुत यादें हैं, आतिफ असलम से मेरी बहुत यादें हैं। जब हम बड़े हो रहे थे, जब मैं 10th में थी, तब उनकी एक एल्बम आई थी दूरी, जिसके सभी गाने मुझे बहुत पसंद थे और आज भी मैं उन गानों को सुनती हूँ और गुनगुनाती हूँ और मुझे आज भी वो उतने ही पसंद हैं। तो आतिफ की आवाज़ में एक जादू है, उनकी आवाज़ बहुत सोलफुल है जो डायरेक्टली हार्ट तक पहुँचती है। आई एम श्योर सभी लोग जिन्होंने आतिफ को सुना होगा वो ये फील कर सकते हैं कि उनकी आवाज़ एक में एक झनक है, एक प्यार है, दुआ है, स्पिरिचुअलिटी का इतना ब्यूटीफुल ब्लेंड है कि वो सीधा कहीं अंदर के तार टच करती है। और मुझे लगता है ये गाना बिल्कुल उसी टोनालिटी का है, और इसमें एक ऐसा एलिमेंट है कि जिससे आप जब इसको सुनते हो, जब ये एंड होता है, तो आप डायरेक्टली उस डिवाइन को छू लेते हो। एक जो सोल जर्नी होती है उसको पा लेते हो और कहीं एक तार जुड़ जाता है आपका डिवाइन से, ऊपर कहीं किसी से। तो इस तरह का एक मैजिकल एक्सपीरियंस मुझे होता है जब भी मैं ताजदारे हरम सुनती हूँ। और कोक स्टूडियो मुझे बहुत पसंद है, कोक स्टूडियो के गाने मुझे बहुत पसंद हैं और आतिफ का ये गाना मुझे बेहद पसंद है, इसीलिए मेरी फरमाइश है कि हम ये सुनाएं हमारी रेडियो चैनल SN रेडियो पर, ताजदारे हरम बाय आतिफ असलम फ्रॉम कोक स्टूडियो। थैंक यू।

पसंद है क्योंकि मेरे पापा को ये गज़ल बहुत पसंद है। मैं तो अभी उम्र में काफ़ी छोटा हूँ तो गज़लें ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पापा ये गज़ल को बहुत सुनते हैं और पूरे घर में इसको गाते रहते हैं, तो उन्हीं को सुनते सुनते ये गज़ल मुझे भी पसंद आने लग गई। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस प्रोग्राम।

0: तो दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। किसान साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगा हुआ है। वैसे ही किसान साथियों, आज पुनः हम आपके सामने प्रस्तुत है कुछ और नए बिंदुओं को लेकर, खेती बाड़ी से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। तो आज हम चर्चा करेंगे कृषि से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और जानेंगे कैसे हम हमारी आय के स्रोतों में वृद्धि कर सकते हैं, कैसे हम हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि कर सकते हैं, कैसे हमारी आमदनी को हम बढ़ा सकते हैं और इसमें कैसे हमें एक रोजगार के अवसर कौन कौन से हैं कृषि में, और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। परंतु आज का जो हमारा विषय है वो है सब्जियों की खेती के ऊपर। सब्जियों की खेती हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है और सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी आवश्यक है, कितनी मात्रा में हमें सब्जियों का फलों को लेना चाहिए हमारे रोजमर्रा के भोजन में, आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
6: का उपयोग रोजाना के भोजन में किया जाना जरूरी है। इसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में और विटामिन, खनिज लवण और रेशा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो संतुलित भोजन का आधार है। लेकिन हमें रोजाना के भोजन में सब्जियों की प्रचुर मात्रा मिलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि सब्जियों की खेती और उनकी पैदावार अच्छी हो। सब्जी फसल की अच्छी पैदावार तभी मिलेगी जब हम फसल में समसमाय कार्य करेंगे और समय एवं मौसम के हिसाब से सब्जी फसल की देखभाल करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सब्जी उत्पादन और पोषण सुरक्षा के तमाम पहलुओं के ऊपर, करेंगे विचार विमर्श। सब्जी उत्पादन और पोषण सुरक्षा पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सब्जी विज्ञान के प्रमुख डॉक्टर बी एस तोमर जी।

0: नमस्कार।
1: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश जी
0: नमस्कार।
1: और इसके साथ ही प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सचिन सुरेश जी, और आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का बहुमुखी योगदान है, लेकिन पोषण सुरक्षा पर भी जोर दिया जाना जरूरी है। सब्जियों से विभिन्न प्रकार के औषधीय पोषक तत्व और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। सब्जियों में आलू वर्गीय, कद्दू वर्गीय, गोभी वर्गीय सब्जियों, दलहनी सब्जियों और पत्ते वर्गीय सब्जियों जैसे पालक और मेथी आदि का काफी औषधीय महत्व है। ऐसे में स्वस्थ जीवन के लिए इन सब्जियों का उपयोग औषधीय खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। सब्जियां सूक्ष्म तत्व जनित कुपोषण को दूर करने में सहायक होती हैं। इस संदर्भ में सब्जियों के उत्पादन और वर्ष भर इनके ताजे और प्रसंस्कृत उत्पाद के रूप में बाजार में उपलब्धता को सुनिश्चित करना काफी जरूरी है, और इसके लिए किसानों को न सिर्फ सब्जी फसलों की अधिक से अधिक खेती करनी होगी, बल्कि फसल की अधिक पैदावार के लिए उनमें समसामयिक कार्य भी करने होंगे। जैसे इस समय बैंगन, मिर्च व भिंडी की फसलों में निराई गुड़ाई व जल निकास एवं रोग व कीटों से रोकथाम की व्यवस्था करें। बैंगन में रोपाई के 30 दिनों बाद 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, मिर्च में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और फूलगोभी में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग प्रति हेक्टेयर की दर से करें। इस समय बैंगन में कॉक्सिनेला बीटल का प्रकोप होता है, इससे बचाव के उपाय करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में प्रति हेक्टेयर 25 किलो नाइट्रोजन या 54 किलो यूरिया को दो भागों में बांटकर बुआई के 30 या 45 दिनों बाद टॉप ड्रेसिंग करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में मचान बनाकर उस पर बेल चढ़ाने से पैदावार में बढ़ोतरी होगी और फल स्वस्थ होंगे। सभी सब्जियों में उचित जल निकास की व्यवस्था करें। पूसा संकर 3 लौकी की बुआई इस महीने की जा सकती है और इस किस्म की तुड़ाई 50 से 55 दिनों में शुरू हो जाती है। वहीं खीरा और अन्य सब्जियों को फल छेदक कीटों के हमले से बचाएं। मिर्च की फसल में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई, सिंचाई व जल निकास की उचित व्यवस्था करें। भिंडी की फसल में बुआई के 50 दिनों बाद 40 किलोग्राम नाइट्रोजन या 87 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से दूसरी टॉप ड्रेसिंग करें और भिंडी की तुड़ाई सही समय पर करें। आमतौर पर फूल आने के 8 से 10 दिनों के भीतर भिंडी की फली की तुड़ाई जरूरी है। इस तरह अगर सही समय पर सब्जियों की बुआई और उनमें समसामयिक कृषि कार्य किए जाएं, तो सब्जी फसल की अच्छी पैदावार के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है।
1: तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट, और आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं डॉक्टर बीएस तोमर का। डॉक्टर तोमर, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सब्जी उत्पादन और पोषण सुरक्षा के बारे में, तो ये हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है?
2: देखिए ज्योत्सना जी, पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे देश में कितना सब्जी उत्पादन हो रहा है और कितनी हमें और इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जी फसलों में हमारी पैदावार दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत अच्छी है
1: जी।
2: और हमारी जो आबादी है उसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये मूल्यांकन करें कि हमें कितनी सब्जियों की आवश्यकता है, अगर हम उत्पादन के आंकड़ों को आबादी के हिसाब से बांट करके देखें तो हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी के लिए तकरीबन 300 ग्राम से अधिक सब्जी की उपलब्धता आती है
1: जी।
2: लेकिन अगर उसमें से हम जो सब्जियां हमारी कटाई के उपरांत खराब हो जाती हैं या उनका प्रसंस्करण हो जाता है या उनका विदेश में निर्यात हो जाता है, उस मात्रा को अगर हम निकाल दें तो हमारी प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है सब्जियों की वो कम होती है। अब हमारी प्रश्न है कि हमारी जो कितनी सब्जियों का इस्तेमाल हमको प्रतिदिन करना है, इसमें हम बताना चाहेंगे कि हमारा राष्ट्रीय पोषण आहार संस्थान है हैदराबाद में, या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जिसको हम आईसीएमआर के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है। अगर हम ये 300 ग्राम सब्जी प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं प्रति व्यक्ति, तो निश्चित रूप से हमारी जो शरीर की पोषण की आवश्यकता है जिसमें हमें प्रतिदिन विटामिन्स, मिनरल्स, रेशा या ऐसे रसायन तत्व जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है और इस प्रकार से हमारी जो आबादी है हम उसको सब्जियों के माध्यम से बेहतर पोषण दे सकते हैं, बेहतर स्वास्थ्य देने में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। और पिछले दो सालों में जो कोरोना वैश्विक महामारी हमारे पूरी दुनिया ने देखी है उसमें निश्चित रूप से सब्जी फसलों का या बागवानी फसलों का विशेष महत्व सामने आया है, क्योंकि ये ऐसी फसलें हैं जो ना कि व्यक्तियों को या उनको स्वास्थ्य के साथ साथ देश में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करती है और हमारे उद्योगों के विकास में मददगार होती है और साथ ही साथ इनके प्रसंस्करण या इनके वैल्यू एडिशन की भी अपार संभावनाएं हमारे देश में हैं, जिससे कि हम अपनी बढ़ती हुई मांग को विशेष करके शहरी क्षेत्रों में जो हमारे दोनों परिवार के सदस्य पति पत्नी जॉब में आते हैं उनके पास सब्जियों को तैयार करने का समय कम होता है, ऐसे में ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके परिवार में भी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 300 ग्राम से अधिक सब्जियों का इस्तेमाल हो तो उसमें मूल्य संवर्धित सब्जियों का भी महत्व है, ताकि वो कम समय में उनको तैयार करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए उपलब्ध करा सके।
1: बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि जो सब्जी उत्पादन है और जो पोषण सुरक्षा है वो आपस में एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, रुक करते हैं डॉक्टर दिनेश का। डॉक्टर दिनेश, आपसे हम बात करने वाले हैं रोगों के बारे में, तो सबसे पहले हमारे जो किसान हैं उनको आप ये बताएं कि सब्जियों में किसी भी प्रकार का रोग ना लगे उसके लिए बीजोपचार जो है वो बहुत जरूरी होता है, तो किस तरह से बीजोपचार वो कर सकते हैं जिससे कि आगे सब्जियों को किसी भी तरीके का नुकसान ना झेलना पड़े।
3: ज्योत्सना जी, सब्जी उत्पादन के उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रति मतलब हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी जितनी संख्या है जनसंख्या है उसके हिसाब से हमें, जैसे डॉक्टर तोमर ने कहा कि 300 ग्राम करना है तो 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाना है, तो इसको पूरा करने के लिए बीज उपचार, क्योंकि कई बीमारियाँ होती हैं जैसे इसमें अल्टरनेरिया का जिसमें कॉलीफ्लावर आते हैं, फूल गोभी होती है उसमें बीज के द्वारा आते हैं, तो बीज का उपचार करना बहुत आवश्यक होता है जिससे कि उसका जो प्राइमरी जो इनाकुलम होता है, जो पैथोजन होता है, जो रोग फैलाता है वो बीज पे होता है, तो उसको हमको वहां से खत्म करना है जिससे कि वो आपके मेन फील्ड में न जा सके या जो आप नर्सरी डाल रहे हैं उसमें वो न जा सके। तो इसके लिए एक बीज उपचार करना दो तरह से हम कर सकते हैं। पहला बीज उपचार हम कवकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। कवकनाशी के लिए दवा जैसे कार्बेंडाजिम आती है उसका 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप कर सकते हैं, या उसमें हमारे जो थेराम है, थेराम फंजीसाइड्स हैं, उसको हम उपचार कर सकते हैं 2.5 ग्राम पर किलोग्राम बीज के हिसाब से, या उसमें होता है जैविक उपचार। जैविक उपचार का मतलब होता है कि जिसमें बायो कंट्रोल जैसे सीडोमोनास का है, ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा को आप 4 ग्राम या 5 ग्राम पर किलो जो पाउडर बन के आता है, टर्कम पाउडर बेस होता है, उसके लिए उपचारित करना चाहिए पर केजी के हिसाब से। उपचारित करने के लिए होता है कि आप बड़ा सा बर्तन ले लिए, जैसे आप क्वांटिटी आपकी बीज है सब्जियों को इसे कम मात्रा में बीज लगता है उसी हिसाब से आप वो एक बर्तन लीजिए और उसमें बीज डालिए 1 किलो, जैसे 1 किलो है या जिसके हिसाब से है उसी हिसाब से आप फंजी साइज उसमें डाल के थोड़ा मॉइस्चर कर लिए और फिर उसको मिला दीजिए ठीक से उसको और फिर थोड़ा सा छाई में सुखा के फिर आप प्रयोग करें। इसी तरह से जैविक नियंत्रक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं कि जो 4 से 5 ग्राम पाउडर बायो कंट्रोल, चाहे ट्राइकोडर्मा हो या सुडोमनास हो या बेसिलस हो, ये सुडोमनास और बेसिलस मतलब जीवाणु है और ट्राइकोडर्मा कवक होता है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि रोग जो बीज के द्वारा फैलता है वो नहीं फैलेगा, तो इससे आप नियंत्रित कर सकते हैं।
1: तो अभी बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर हमें डॉक्टर दिनेश ने दी किस तरह से आप जो है वो बीजो उपचार कर सकते हैं जिससे किसी भी तरीके का रोग जो है वो आपकी सब्जी फसल को ना लगे। कीटों के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है, तो इसके लिए आइए रुक करते हैं डॉक्टर सचिन का। डॉक्टर सचिन, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमने रोगों के बारे में जाना बीजोपचार का, क्या कीटों का प्रबंधन करने के लिए भी बीजोपचार पहले करना जरूरी है, और अगर है तो किस तरह से हमारे किसान कर सकते हैं जिससे कि कीटों का प्रकोप सब्जी फसल पे ना हो पाए और बाजार में जब उनकी सब्जी की फसल जाए तो उनको उससे आर्थिक मुनाफा भी मिले।
4: सब्जी का महत्व बहुत अभी बढ़ गया है जैसे कोरोना के बाद, जैसे अभी सब्जी और एवं फल उसका उत्पादन, और जैसे हम अभी खाने खाना भी लोगों ने ज्यादा शुरू कर दिया है क्योंकि उससे भरपूर मात्रा में विटामिन्स मिलते हैं, फिर मिनरल्स मिलते हैं
1: जी।
4: और जैसा कि सर ने बताया कि कुछ रोग, जैसे साहब ने बताया विल्ट आता है, ब्लाइट्स आते हैं, तो उसके लिए बीजोपचार किया जाता है। तो मैडम जैसे सब्जियों में जैसे बैंगन है, टमाटर है, उसमें एक सूत्रकुमी नाम का एक रोग लगता है सूत्रकुमी से, तो उससे जड़ों पे गांठे बनती है। तो मैडम अगर हम हमारे पास अगर नर्सरी के टाइम में भी अगर हम सीड डाल रहे हैं तो उसमें हम नर्सरी को भी हम उसको उपचारित कर सकते हैं। जैसे कार्बोप्यूरान नाम की एक दवा आती है, जैसे 3 ग्राम प्रति वर्ग किलो वर्ग मीटर में आपको डालनी है, तो उसके उसको गांठों को मारता है। और अगर नर्सरी अगर आपने ट्रीट नहीं की है उससे, तो आप कार्बोसल्फान नाम की दवा आती है, तो उसका ढाई ml प्रति 10 लीटर में घोल बना के जो भी आपके ट्रांसप्लांटिंग के लिए आपके पौधे तैयार है, जैसे टमाटर की है, बैंगन की है, तो उसको आप 20 से 25 मिनट उसमें डुबा के रखिए, फिर आप उसको मेन नर्सरी में लगा सकते हैं। और जैसे सब्जियों के फसल में जैसे अब इमिडाक्लोपिड नाम की एक दवा आती है, उससे हम बुरी उपचारित करते हैं, लेकिन बाकी फसलों में जैसे कपास है या अदर, लेकिन जैसे सब्जियों के फसल में मैडम जैसे पत्ती वाली सब्जी होगी तो लगाने के 20-25 दिन के बाद ही हम उसको खाने के लिए तोड़ते हैं, तो उसके लिए उसका बीज उपचारित करना अच्छा नहीं है क्योंकि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जाता है। तो टाइको सूत्रकुमी के लिए आप जरूर बीज उपचारित कर सकते हैं। जैसे आप कुछ मैंने कार्बोसल्फान बताया, तो क्लोरोपाइरीफास नाम की भी दवा आती है, उसका भी आप 2 से 2.5 ml का एक घोल बना के 10 लीटर में आप उसको भी बैंगन या टमाटर है उसके पौधों की जड़ों को आप उपचारित करके लगा सकते हैं
1: जी। बिल्कुल, और काफी अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। और हम अभी आपसे आगे ये भी जानेंगे कि कौन कौन से प्रमुख कीट हैं जिनका प्रकोप हो सकता है सब्जियों पे, लेकिन डॉक्टर तोमर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इस समय हमारे कौन कौन से क्षेत्र के जो किसान हैं कौन कौन से सब्जी फसल लगा सकते हैं।
2: देखिए, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से निरंतर रुक रुक के वर्षा होती रही है, इससे सब्जी फसलों की रोपाई एवं बिजाई में देरी हुई है या कई किसान भाइयों की पौध तैयार रही है, विशेष करके जैसे मिर्च है, बैगन है, फूल गोभी की अगेती किस्म है, या प्याज की जो पौध से रोपाई होनी है खरीफ प्याज की, या गांठों से प्याज की रोपाई होनी है, और या सीधे बिजाई होनी है मूली की, पालक की, या पत्तेदार सब्जियों में दलहनी फसलों में लोबिया, सेम आदि की जो रोपाई है उसमें कहीं ना कहीं देरी हुई है। हालांकि वर्षा किसानों के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छी है, और इससे जो जल की गुणवत्ता हमको मिलती है वो बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे कि अभी हमारे अगर हम पत्तेदार सब्जियों की बात करें तो अभी हमारे किसान भाई दिल्ली उसके आसपास या उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में पालक की जो आल ग्रीन किस्म है या भारती, पूसा भारती, इन दोनों किस्मों को बिजाई के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं दलहनी फसलों में लोबिया की, तो हमारे किसान भाई पूसा धारणी, पूसा कोमल, पूसा सुकोमल आदि किस्मों का इस्तेमाल बिजाई के लिए कर सकते हैं। अगर हम सेम की बात करते हैं तो सेम में हमारे किसान भाई पूसा सेम 3, पूसा सेम 2, और भाई हमने पूसा की एक किस्म का और विकास किया है जिसको हम पीली, थोड़ा पीलापन लिए हुए फली होती हैं, उस किस्म को भी किसान भाई DB10 के नाम से उस किस्म को हमने विकसित किया है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहाँ तक बात है मूली की, अगेती, साग सरसों की, अभी किसान भाई वर्षा के स्वभाव को देखते हुए मूली की अगेती किस्मों की बिजाई की जा सकती है, या हमारी जो स्थानीय रूप से मिलने वाली किस्में हैं शलजम की जो लाल रंग की होती हैं, उनकी बिजाई भी हमारे किसान भाई अपने खेतों में कर सकते हैं। और मूली की किस्म के बारे में हम बताना चाहेंगे, पूसा चेत की एक किस्म है जिसकी बिजाई अभी किसान भाई अपने खेतों में कर सकते हैं। अगर हम बात करें लाल रंग की छोटी मूली जिसको हम पूसा मृदुला के नाम से जानते हैं, उसकी बिजाई भी किसान भाई मेड़ों के ऊपर कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो हमारी सब्जी फसलें हैं जिसमें फूल गोभी है, अगेती उनकी पौध तैयार है, उसको खेत की तैयारी करके उसको मेड़ों के ऊपर रोपाई किया जा सकता है। और उसकी जो किस्म अभी जिसकी पौध तैयार है रोपाई के लिए, उसमें हम बताना चाहेंगे पूसा मेघना, कार्तिक संकर, या अगेहनी जो समूह की फूल गोभी की किस्में हैं, किसान भाई उसकी अभी बिजाई के रोपाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मिर्च की, बैगन की, अगर पौध तैयार है तो अभी थोड़ा देरी हुई है, लेकिन अभी भी हमारे किसान भाई मिर्च की और इसकी बैगन की रोपाई अपने खेतों में कर सकते हैं। तो ये तो रही सब्जी फसलों की बात। और अगेती जो गाजर है उसके लिए खेत की तैयारी की जा सकती है, जिसमें पूसा वृष्टि किस्म को किसान भाई लगा सकते हैं। फिर अगस्त के अंतिम सप्ताह में किसान भाई अपने खेतों में पूसा साग वन, एक पूसा की किस्म है साग सरसों की, उसकी बुआई कर सकते हैं। सफ़ेद रंग की जो सलजम होती है पूसा श्वेती, उसकी बिजाई कर सकते हैं। और प्याज जो खरीफ के मौसम में लगाने वाली पौध से तैयार है, खेत की उचित तैयारी करके उसकी रोपाई अगस्त के पहले सप्ताह में ही करने की सिफारिश की जाती है, ताकि उसके कंद नवंबर के पहले पखवाड़े में बाजार में किसान भाई बेचने के लिए तैयार कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर दिनेश, अब मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि हमें सब्जियों का अच्छा उत्पादन अगर हासिल करना है, क्योंकि इस वक्त कोरोना काल में जब हम बात करते हैं कि सब्जियों की प्रमुखता जो है वो बढ़ गई है, अब लोगों के भोजन के अंदर सब्जियों का सेवन ज्यादा होने लगा है, यहां तक कि लोग अपने घरों में भी जो है वो सब्जियों को उगाने लगे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें किसानों की, तो सब्जी उत्पादन से पहले कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो किसानों को विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है?
3: किसान भाइयों, आप अगर सब्जी उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले चीज़ आती है कि आप सिलेक्शन, आप फील्ड, आप कौन से फील्ड में आप उगाना चाहते हैं, तो ऐसे भूमि का चुनाव करें जहां जल निकास की समुचित व्यवस्था हो। दूसरा ये होता है कि आप एक ही फसल सब्जी की बार बार एक ही फील्ड में खेत में आप न लगाएं, जिससे क्या होता है कि जो मृदा वाहक जो होते हैं, रोग होते हैं, वो आपके फसल में लग जाएंगे। तीसरे है कि आप खेत को बदलते रहिए, जिसको फसल चक्र बोलते हैं, उसको आप अपनाइए। साथ में आप ये ध्यान रखिए कि आप बीज का जो आप चुनाव करते हैं वो बीज सर्टिफाइड हो, और उसमें ज़्यादा जो बीमारी बीज के द्वारा फैलती है डिजीज फ्री, मतलब रोग रहित होना चाहिए। तो इसे ध्यान में रखिए, जो आप अगर सब्जी का किसी भी सब्जी को जो आप उगाना चाहते हैं वो सब में ध्यान कॉमन होता है, रखना होता है। और दूसरे है कि आप कोशिश करिए कि रेजिस्टेंट वेराइटी जो आती हैं, जो उसके रोग रहित मतलब रेजिस्टेंट होती हैं, उसके लिए आप उगाएं, जिससे कि आपको बीमारियां कम लगे और आपका उत्पादन ज़्यादा हो। इसके साथ ही आपको जैसे बीमारी तीन तरह से फैलती है, अगर आप ध्यान रखें तो पहला ये होता है कि इसके साथ ही आपको जैसे बीमारी तीन तरह से फैलती है अगर आप ध्यान रखें तो पहला ये होता है कि मिट्टी के द्वारा होता है, तो जिससे कि आप फसल चक्र अपनाते हैं तो उससे कम कर सकते हैं। बीजोपचार करेंगे बीज के द्वारा जो फैलती हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि जो हवा के द्वारा फैलती है, जो आपके पैड़ी जो पत्तियों पर बीमारी लगती है या तने में बीमारी लगती है सब्जियों में, उसको आपको उपचारित करना है। तो सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, खेत की आप सफाई रखते रहिए, जो खरपतवार हैं उस पर उस कुल के उसके जो आप सब्जी लगा रहे हैं उस कुल के खरपतवार हैं उसको आप खेत से निकाल दीजिए, और जो फसल बची हुई पिछली फसल के हैं वो सबको वहाँ से हटा के आप उसको नष्ट कर दें, क्योंकि बीमारी जो होती है उससे आपको फैलती है। तो इसको हम बोलते हैं समेकित रोग प्रबंधन। अगर आपको लास्ट में ये होता है कि आपको अगर कोई उपचार नहीं है तब आप जाके केमिकल का चुनाव करें, या स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आप फसल का चुनाव करें और आप अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं, आप सुरक्षित उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि फसलों में जो न्यूट्रिएंट की मात्रा होती है वो आपको बचा सकते हैं और आपका अधिक से अधिक उत्पादन हो सकता है।
1: बिल्कुल, अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर सचिन का। डॉक्टर सचिन, ये बताएं कि इस मौसम में प्रमुख रूप से कौन कौन से ऐसे कीट हैं जिनका हमला हो सकता है, और सबसे जरूरी बात जानने के लिए यह है प्रबंधन के बारे में, तो हम इनके बारे में जरूर आगे जानेंगे, लेकिन पहले ये

0: हैं कि कौन कौन से बरसात के मौसम में कीट लग सकते हैं फसलों में और किसान उनको पहचाने कैसे। सबसे ज्यादा ये जरूरी होता है कि किस तरह से पहचान की जाए कि कौन सा कीट लगा है, और उसके बाद हम प्रबंधन के बारे में आपसे जरूर जानकारी लेंगे।
1: जैसे मैडम अभी बरसात का मौसम है, तो जैसे हम किसान भाई लोग जैसा कि जो गोबर की खाद डालते खेत में, तो ज्यादातर ये देखा है कि गोबर की खाद सड़ी भी नहीं होती, अच्छी सली गड़ी नहीं होती है। तो उसके जो पौधे हैं जो जिसका भी हमने ट्रांसप्लांट किया, जैसे बैंगन हो या टमाटर हो, मिर्च हो, तो उसमें सफेद गिडार नाम की एक ग्रव आता है मैडम, जो जड़ों को खाता है। तो अगर आपका अगर पौधा बैंगन हो या टमाटर हो, मिर्च हो या फिर ये हो, उसका अगर पौधा सूख गया है, तो अगर आप उसको बाहर निकालते हैं तो उसमें आपको सफेद सी गिटार, जैसे सफेद वाला नारा दिखाई देता है, तो व्हाइट ग्रव है। तो इसके लिए मैंने जैसे पहले ही बताया कि आपको जो गोबर की खाद हो वो अच्छी सली गड़ी होनी चाहिए, और आपको उसको उपचारित भी आप कर सकते हैं। जैसे आप जब खाद डालते हो तो आप उसमें मेटराइज या माइनसोप्लिए, जैसे ब्यूवेरिया बेसियाना है, जैसे जैविक कीटनाशक है, तो उसकी मात्रा आप जब आप खाद डालते हो तो उसमें आप चार से पाँच किलो मिला के, जैसे 100 किलो में आप अच्छे से मिला के फिर आप तब दोगे, जैसे 200 ग्राम प्रति वर्ग किलोमीटर में खाद दी जाती है, तो उसका नियंत्रण करता है। और जैसे बरसात का मौसम है अभी, तो सुंडियों का ज्यादा प्रकोप होता है मैडम, जैसे बालों वाली सुंडी होती है, जैसी उबड़ वाली सुंडी होती है, जैसे ऊन जैसी वो चलती है, तो ये पत्तियां खाती है, जैसे पालक में खाएगी, चौलाई में खाएगी, और बैंगन में, जैसा अभी बैंगन में कीट आता है उसको प्ररोह छेदक बोलते हैं। तो जैसे ही बैंगन हम मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे 20-25 दिन के बाद, तो जब पौध आपका मेन खेत फील्ड में जैसे 30 से 40 दिन का होता है, तो उसकी जो प्ररोह होती है, जैसे अगली शूट्स होती है, वो नीचे गिर जाती है और जैसा लगता है कि वो सूख गई है। तो अगर आप उसको तोड़ के अगर उसमें देखेंगे, तो उसमें गुलाबी रंग का एक छोटी सुंडी होती है, तो वो उसका प्ररोह छेदक।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो अपनी बातें।
0: तरह से उनकी पहचान की जाए। डॉक्टर सचिन, एक बार फिर आपके पास वापस आती हूँ और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपनी जानकारी को आगे बढ़ाएं।
1: हाँ, तो मैंने जैसे भी बताया मैडम बैंगन वाला प्ररोह छेदक का, तो ये मैडम ये कीट जैसा है कि जैसे अर्ली शूट्स को भी नुकसान देता है, तो फलों को भी मैडम, जैसे छोटे फलों या बड़े फलों, उसमें आपको छेद दिखाई देते हैं और उसमें से उसका जो विष्ठा होती है, जैसे हम उसको एक्सक्रीटा बोलते हैं, वो भी बाहर निकलती है। तो ऐसे फल आपको तोड़ के तुरंत नष्ट कर देनी चाहिए। तो और बैंगन में व्हाइट फ्लाइज, सफेद मक्खी आती है, तो छोटे छोटे व्हाइट फ्लाइज होती है, और ये जैसे ही आप पत्ती उल्टी करोगे, पत्ती के नीचे बैठते हैं, तो जैसे ही आप पत्ती को घुमाओगे तो जल्दी उड़ जाते हैं, तो इसको सफेद मक्खी बोलते हैं। फिर टमाटर में एक ब्लाइट नाम की कीट आती है, जो लाल रंग के छोटे छोटे सूक्ष्म से कीट होते हैं, जो पत्तियों के नीचे बैठकर उसमें से क्लोरोफिल को खाते हैं, तो पत्तियों को सफेद से धब्बे पड़ते हैं। अगर आप ऐसे पत्तियों पे जिसमें माइट का प्रकोप हुआ है, उसके ऐसे पत्तों को आपकी उंगली में अगर आप उसमें खींचोगे, तो आपके हाथों को भी लाल रंग दिखाई देता है। तो मैडम, और चेपा नाम का एक एफिड, जिसको हम अंग्रेजी में एफिड बोलते हैं या माउ बोलते हैं, तो ये छोटे छोटे हरे कलर के छोटे छोटे कीट होते हैं, जो पत्तियों पे या नई शाखाओं पे आके रस को चूसते हैं पत्तियों से और टहनियों से। ये बैंगन में भी आता है, और जैसे कद्दू और ये जो सब्जी है, उसमें रेड पंपकिन बीटल आता है, जिसके जो बॉडी पे जो विंग्स होते हैं वो लाल कलर की होती है, और उसका जो जो उदर भाग होता है, जो एब्डोमेन का, वो थोड़ा सा खुला होता है। और बैंगन में एक इपिलेक्ना बीटल भी आता है, जो जैसे छल्ली जैसा बना देता है पत्तियों को, पत्तियों का क्लोरोफिल खाता है, और उसमें सिर्फ लैमिनार जो वेंस होती है वही वैसी की वैसी रहती है
0: जी।
1: तो ऐसे कई प्रकार के कीट है, जैसे मैंने पहले बताया सफेद कीटा जो जमीन के मीन्स पॉलर रीजन को खाता है, फिर पत्तियों पे आने वाली सुंडी है कई प्रकार की, जैसे और भिंडी पे आती है, उसपे धब्बे वाली सुंडी आती है, उसपे वो भी प्ररोह को भी छेद करती है और नए वाले जो जो फल आते हैं उस पे भी उसके वो छेद करते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर सचिन। डॉक्टर तोमर, क्योंकि बात हो रही है पोषण सुरक्षा को लेकर और सब्जियों में किस तरह के पोषक तत्व जो है वो मौजूद होते हैं, ये जानना हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बेहद जरूरी है, तो ये बताएं कि कौन कौन सी ऐसी अच्छी सब्जियां हैं, और अब तो विदेशी सब्जियों की खेती भी हमारे देश में प्रमुख रूप से होने लगी है, तो कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिनका सेवन हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है वो है अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का, तो अगर इसके बारे में जानकारी हासिल करें आपसे तो क्या बताएंगे?
3: देखिए, जैसे हमने प्रारंभ में कहा था ज्योत्सना जी कि प्रति व्यक्ति 300 ग्राम सब्जियों का इस्तेमाल हमको प्रतिदिन करना है। इन 300 ग्राम में हमको क्या क्या इस्तेमाल करना ये भी जानना जरूरी है। 300 ग्राम में सबसे पहली बात आती है कि आप अपने खाने में पत्तेदार सब्जियों का समावेश करें और उसकी मात्रा रहेगी 125 ग्राम, और आपको 100 ग्राम सब्जियां लेनी हैं, आपको ये जो अपनी जड़ कंदमूल वाली हैं जिसमें आलू है, प्याज है, लहसुन है, शलजम है, चुकंदर है, इनका इस्तेमाल करना है
0: जी।
3: और 75 ग्राम आपको फल वाली सब्जियां जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची है, इनका इस्तेमाल करना है, और इसको नियमित रूप से इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने ले लिया और एक अगले दिन नहीं लिया, तो आपको नियमित रूप से जब आप 300 ग्राम सब्जी का इस्तेमाल करते हैं और इस अनुपात में करते हैं कि 125 ग्राम पत्तेदार सब्जियों को और 100 ग्राम आप कंद मूल वाली सब्जियों को और 75 ग्राम आप फल सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको हमारे शरीर की जो आवश्यकता होती है विटामिन्स की, मिनरल्स की, रेसे की, एंटीऑक्सीडेंट की, उसकी आपूर्ति इनसे संभव है। अब सब्जियों से क्या मिलता है ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर हम बात करते हैं पत्तेदार सब्जियों की, पत्तेदार सब्जियां विटामिन सी, विटामिन ए और इसके साथ आयरन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, इनके अंदर इनकी उपलब्धता होती है। और हमने अपने संस्थान संभाग में एक विलायती पालक की किस्म विकसित की है
0: जी,
3: जिसको हम पूसा विलायती पालक के नाम से जानते हैं, उसके अंदर विटामिन सी की मात्रा 74 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होती है, जबकि सामान्य पालक और अन्य पत्तेदार सब्जियों में इसकी मात्रा 35 से 40 मिलीग्राम के बीच में होती है
0: जी।
3: तो अगर एक व्यक्ति एक दिन में 100 ग्राम पत्तेदार सब्जी का इस्तेमाल साग के रूप में, पराठे के रूप में, दाल में डाल के, चटनी के रूप में करता है, तो उसके शरीर की जो आवश्यकता है विटामिन सी की, आयरन की, अगर ये देखें कि जो धनिया पत्ती है वो आयरन का बहुत अच्छा स्रोत मानी जाती है, और अगर हम एक चम्मच प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो प्रतिदिन की आवश्यकता आयरन की है उसकी हम आपूर्ति कर सकते हैं
0: जी।
3: और आपने बात कही थी कि अभी किसानों के अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में भी हमारे लोग जिनके पास गमलों में खेती करते हैं, सब्जियों को उगाते हैं, छत पे उगाते हैं, उनके लिए पत्तेदार सब्जियां पालक है, मिंट है या धनिया है, बथुआ है, ये बहुत अच्छी उनके लिए पसंद हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि सल्फर हमारे शरीर में वर्षा के मौसम में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है
0: जी,
3: और हमारी आपूर्ति कहाँ से हो सकती है, प्रतिदिन प्याज का इस्तेमाल करना है, हरी प्याज का इस्तेमाल करना है, लहसुन का इस्तेमाल करना है, तो उससे हमारी शरीर की जो आवश्यकता है प्रोटीन इसकी, सल्फर की, उसकी आपूर्ति हो जाती है, और हमारी त्वचा में होने वाले बहुत सारे रोगों को हम इनसे बच सकते हैं। और हमारे संभाग ने बंचिंग ऑनियन में किस विकसित की है जिसको हम पूरे वर्ष उगा सकते हैं और बिना कीड़ों के, बिना रोग के, क्योंकि उसमें कोई रोग और कीड़ा लगता नहीं है, और उसको एक बार लगा दिया तो बहुवर्षीय प्रवृत्ति होने के कारण उसको हम निरंतर उगा सकते हैं। तो जो हमारे किचन गार्डन में रुचि रखते हैं लोग शहरी क्षेत्रों में या हमारे छोटे शहर हैं, आजकल तो सब्जी उत्पादन का प्रचलन बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी फैल गया है, क्योंकि बड़े शहरों में तो आजकल धूप की उपलब्धता एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि मल्टी स्टोरी बहुमंजिली इमारतों का निर्माण हो गया, लेकिन जो हमारे छोटे कस्बे हैं, शहर हैं, उनमें अभी भी एक फ्लोर वाले मकान बनते हैं जिनमें आगे और छत के ऊपर पर्याप्त स्थान रहता है
0: जी।
3: इसके अतिरिक्त जो हमारी जड़ वाली फसलें जैसे गाजर की हम बात करें, गाजर के अंदर लाइकोपीन होता है और पीली गाजर में बीटा कैरोटीन होता है जो हमारी आंखों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अगर हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं, या काली गाजर है जिससे हमें बहुत सारे मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं।
0: बिल्कुल।
3: उसको हम कांजी के रूप में या वैल्यू एडिशन के रूप में बहुत सारी औषधियों में उसके रंग को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। या टमाटर का जो लाल रंग आप देखते हैं, ये भी लाइकोपिन की वजह से, विटामिन सी का स्रोत है। इस प्रकार से अनेकों अनेक सब्जियां हैं। बैगन जो हमारे देश की भारतीय मूल की सब्जी है, या करेला है, इनके अगर गुणों को देखें, करेले के अंदर जो कड़वापन है मेमोरडिसिन या चेरेंटिन की वजह से है, और ये हमारे शरीर में विशेष करके डायबिटीज के लिए बहुत लाभकारी है।
0: इसलिए करेले का इस्तेमाल कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर कई सारी सब्जियां हैं जो हम अपने देश में जिनकी फसल ले रहे हैं, और उनके अंदर कई तरह के गुण जो है वो मौजूद है, जिनका अगर हम प्रतिदिन सेवन करें तो हम अपने स्वास्थ्य को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर दिनेश, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि बरसात के इस मौसम को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर रोगों का जो प्रकोप है वो हो सकता है, और किसान किस तरह उनकी पहचान करें।
4: इसमें देखिए, इस बरसात में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे आप नर्सरी जब उगाते हैं तो नर्सरी में जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्च हो गया, आप फूल गोभी हो गई, ये सभी जो उगाते हैं नर्सरी में ही जो डंपिंग आपकी बीमारी आती है, और जो उसमें क्या होता है, जैसे नर्सरी आप डालेंगे तो उसमें पैचेज बन जाते हैं जिससे कि वो वहाँ पे ग्रो नहीं करता है, या तो बीज सड़ जाएगा या तो थोड़ा सा नर्सरी होएगा फिर वो पौधा गिर जाएगा। तो एक डंपिंग आपकी बीमारी होती है जो आद्र गलन बोलते हैं, वो ज़्यादातर जो नर्सरी वाले पौधे जैसे बताया हमने उसके लिए होता है। तो उसके लिए भी क्या है कि आप बीज उपचार करिए उसको, और नर्सरी जो आप उगाएंगे उसको थोड़ा सा ऊपर उठा करके, रेस नर्सरी होगा जिससे कि पानी के निकास नहीं होगा, पानी निकास हो जाएगा जिससे कि जो बीमारी डंपिंग आप होती है वो नहीं लगेगी। तो ये सभी को नर्सरी उगाने के आती है। इसके बाद जो बीमारी आती है, जैसे आपके भिंडी है, येलो मजेक की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सभी है बरसात के समय में भिंडी में येलो मजेक का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, या उसमें विल्टिंग आ जाती है, फंगस के द्वारा बीमारियाँ आती हैं। तो जैसे येलो मजेक का आता है तो उसमें वेक्टर का, जैसे व्हाइट फ्लाई है, व्हाइट फ्लाई को जैसे डॉक्टर सचिन ने बताया कि कीटों का कैसे प्रबंधन करेंगे, तो व्हाइट फ्लाई को अगर आप नियंत्रित करते हैं तो उससे आपका जो बीमारी होती है ये वायरस के द्वारा वो नहीं होगी। और दूसरे इसमें बीमारी, जैसे टमाटर अगर आप उगाना पा रहे हैं तो टमाटर में बहुत सी बीमारी लगती हैं, नर्सरी से स्टार्ट करके फलों तक में लगता है। इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम, जैसे अगर आप इस समय पहाड़ पे आप जाइए, पहाड़ी एरिया में, तो वहाँ पर आपको फाइटोथोरा की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अभी उसमें टमाटर जो आपके यहाँ आ रहा है वहीं से आता है, जो इसमें जो आ रहे हैं, तो फाइटोथोरा की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसको आप स्प्रे जैसे करेंगे, उसको छिड़काव करना है, तो मेटालेक्सिल दवा आती है या रिडोमिल की दवा आती है, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि आपको फाइटोथोरा की, या एक अल्टरनेरिया ब्लाइट टमाटर में आती है वो आती है, दूसरा एक बैक्टीरियल लीफ स्पॉट एक बीमारी आती है। तो ये सभी बहुत सी बीमारियां हैं। एक बहुत ज़्यादा इसमें फल सड़ने लगता है, जो टमाटर में मेजर प्रॉब्लम आती है, जो आई बॉट उसको कहते हैं, आई स्पॉट आती है बीमारी, वो भी फाइटोथोरा के द्वारा होती है। तो उसको जैसे अभी स्टेकिंग करके करते हैं तो रखेंगे, तो जो जमीन के सतह पर जो फल होंगे उसको अगर नहीं, जमीन पे नहीं टच करेंगे तो उससे वो बीमारी से बच सकते हैं, और साथ में मैको जो दवा आती है उसको स्प्रे करते रहेंगे तो सबसे बचा जा सकता है। जो वो इम्पॉर्टेंट है, मिर्च में भी जैसे लीफ कर्ल की बीमारी आती है, वो भी व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलती है
0: जी।
4: तो ये सभी का, सभी फसलें करीब करीब सब प्रभावित होती हैं रोगों से, और ये रोग आपके उत्पादन को कम करते हैं, साथ साथ जो न्यूट्रिएंट वैल्यू सब्जी की होती है उसको भी कम करते हैं। तो इससे अगर आप न्यूट्रिएंट को, पोषण को ध्यान में रखते हुए आपको रोगों का प्रबंधन करना बहुत आवश्यक होता है, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके सब अगर आप प्रबंधन ठीक से करेंगे तो इससे आपको अधिक उत्पादन मिलेगा, अच्छी क्वालिटी के उत्पादन मिलेगा जिससे आपको अधिक पोषण साथ साथ अधिक आपको आमदनी होगी। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए आपको ये सभी करना है
0: जी। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर सचिन का। डॉक्टर सचिन, कई बार फसलों का अधिकतर उत्पादन हासिल करने के लिए, या कहीं अधिक उत्पादन हासिल करने के लिए, जल्दी उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमारे जो किसान हैं वो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, या फिर कहें कि जैविक तरीका ना अपनाकर अगर कीटों का प्रबंधन करना चाहें तो वो अधिक मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग कर लेते हैं, हैं, जिससे कि फसल को भी नुकसान पहुंचता है और साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य को भी। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, अगर कीटों का प्रकोप हुआ है तो कीटनाशकों का प्रयोग करें या कोई जैव तरीका भी है उसका प्रबंधन करने का?
1: मैडम, जैसे कि आपने बताया कि जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम है उससे मानव स्वास्थ्य पे बहुत हानि पहुंचती है, तो सबसे पहले जब कीट लगता है मैडम तो जरूरी नहीं आपको कीटनाशकों का उपयोग करना है, क्योंकि एक आर्थिक दहल स्तर एक सीमा हमने तय की है वैज्ञानिकों ने हर क्रॉप में। जैसे बैंगन में अगर प्ररोचेदक लगा है तो उसकी अगर स्तर प्रकोप का स्तर अगर 5% से कम है तो आपको छिड़काव करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे काफी सभी डिसीजेस के लिए या फिर कीटों के लिए ये स्तर निर्धारित की गई है। तो उससे ऊपर अगर वो स्तर जाती है

0: तभी कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। और सबसे पहले जब हम कीटनाशकों का जब चयन करते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी की जो दवाएं वही खरीदें और सर्टिफाइड, और जो ताकि जानी मानी दुकानें वहां से हम दवाइयां खरीदें। और जब भी दवाइयां खरीदते हो तो उसका हम बिल लें, और दवा जैसे दवा जब बनती है मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो उससे हम 2 साल तक उसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी किसान वहां देखिए कि अगर आपके पास 2 साल है कि नहीं। ज्यादातर ये देखा है कि जब किसान खरीदता है दवा तो उसके 3 या 4 महीने बचे हुए होते हैं, तो ऐसी दवा ना ले। और जब भी दवा लेते तो रसीद ले। और जैसा आपने बताया कि बहुत सी जो जैविक कीटनाशी हमारे पास है, जैसे साहब ने भी पहले बताया ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, ये जैसे फफूंद को मारती है तो ये सूत्रकृमि के विरुद्ध भी अच्छा काम करती है। और एजरिरेक्टिन जैसे नीम ऑयल में जैसे पाया जाता है, नीम ऑयल आप मार्केट में 300 ppm का है, 10,000 ppm का है, 50,000 ppm का भी है। नीम ऑयल का आप काफी जो कीट है जैसे व्हाइट फ्लाई है, मावा है, फिर प्ररोह छेदक है, या टमाटर में फल छेदक है, फिर मिर्च में थ्रिप्स है, तो आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर 300 ppm की अगर नीम ऑयल है आपके पास तो आप 2 ml प्रति लीटर का छिड़काव कर सकते हैं। अगर 10,000 ppm है तो आप 5 ml प्रति लीटर, अगर 50,000 ppm का नीम ऑयल आपके पास तो 0.5 ml हम छिड़काव कर सकते हैं। और जो बैंगन में और टमाटर में जो फल छेदक है जैसे, उसके लिए मैडम एक न्यूक्लियो पॉलीट्रेटिस वायरस नाम का एक विषाणु है, तो आप उसका 250 लारोल एक्सट्रैक्ट का हम छिड़काव करते हैं तो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं
1: जी।
0: और जैसे सफेद गिटार का जो प्रकोप होता है आजकल बरसातों में, तो उसके लिए हमारे पास मेटराइजियम एनिसोप्लिया नाम का एक बहुत से अच्छा फफूंदनाशी है, तो हम 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के भी आप जड़ों के पास उसका डाल सकते हैं, फिर उसका आप उसको बीजों को या
2: जी हाँ बिना रुके लगातार हम यहाँ पर खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जान रहे हैं। और अभी यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइटा भील 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टाइटा भील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM

0: स्वास्थ्य को जो है वो अच्छा बना सकते हैं। डॉक्टर तोमर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि पोषण सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को?
1: देखिए, हमारा साग्य संभाग विज्ञान सब्जियों की पोषण गुणवत्ता बढ़ाने में कार्य कर रहा है और हमने इस दिशा में काफी प्रगति भी हासिल की है। हमारे संभाग में हमने बैगन की, आप आमतौर पे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बाजारों में देखते हैं कि आपको नीले रंग का बैगन ही अधिकतर मिलता है
0: जी।
1: हमने सफेद रंग का बैगन, हरे रंग का बैगन का विकास किया है जो पोषण दृष्टि से दूसरे अन्य बैगनों से बहुत बेहतर है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट की अमाउंट है
0: जी,
1: फ्रैक के माध्यम से या क्यूप्रेक के माध्यम से टोटल एंटीऑक्सीडेंट हमने इनमें देखा है। तो हमारी जो ये दो किस्में पूसा हरा बैगन, पूसा सफेद बैगन, इनको हमने पोषणता की दृष्टि से इनका मूल्यांकन करके पाया कि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बहुत अधिक है। दूसरा, हमने गाजर की किस्म में सुधार किया। जैसे आप देखते हैं गाजर कम लाल होती है, तो हमने पूसा रुधिरा एक किस्म है जो अत्यधिक लाल रंग वाली होती है जिसमें अंदर लाइकोपिन की मात्रा अधिक होती है
0: जी।
1: तो कम खाने से भी हमें अधिक पोषण मिलता है। या काले रंग की गाजर असिता हमने विकसित की है
0: जी।
1: हमने बात की कि पोषण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जैसे विलायती पालक की बात की, ऐसे तो हमारे संस्थान के द्वारा पालक में चार किस्मों का विकास किया गया है, पूसा आल ग्रीन, भारती और ये पूसा ज्योति और पूसा हरित। तो ये चारों किस्में विटामिन सी, विटामिन ए के लिए बहुत ही उत्तम है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि बथुआ एक हमारा खरपतवार होता है और उस खरपतवार को हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कई किसान भाई चारे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी उत्तर भारत की सर्दी के मौसम में प्रमुख पत्तेदार सब्जी के रूप में इस्तेमाल होती है। इसमें हमने सुधार करके दो किस्मों का विकास किया, पूसा बथुआ एक, पूसा ग्रीन। ये दोनों जो है ढाई से तीन मीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं, लंबे समय तक इनके पत्तों को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, कटाई करना उपयुक्त है और इनकी पैदावार सामान्य जो हमारा जंगली बथुआ है उसे अधिक होती है। अधिकता के स्थिति में इसका इस्तेमाल चारे के रूप में भी किया जा सकता है और इसका वैल्यू एडिशन करने की भी अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि बथुआ सर्दी के मौसम में उपलब्ध होता है, नवंबर से लेकर के फरवरी तक मिलता है। अगर हमको जुलाई अगस्त में भी बथुआ खाना है तो इसका हम सुखा करके इसका वैल्यू एडिशन करने की संभावना है। या ऐसे ही हमने साग सरसों, आमतौर पे आप देखते हैं जो बाजार में साग के लिए साग सरसों मिलती है
0: जी,
1: वो किस्में होती हैं जो हम तेल के लिए उगाते हैं और उनको जब छीदा करते हैं या उसी को सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हमने पूसा साग वन किस्म का विकास किया जिसके अंदर विटामिन सी की मात्रा अधिक है, रेशे की मात्रा कम है, गलती तैयार जल्दी तैयार होती है। ऐसे ही हमने भिंडी में एक किस्म का विकास किया, पूसा भिंडी पांच, जिसमें विषाणु रोग नहीं आता है। ऐसी स्थिति में किसान को छिड़काव कम करना पड़ता है, उत्पादक बहुत देती है और इस देश में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा इसको बड़े पैमाने पर इसका बीज उत्पादन हो रहा है और इसको हम किसानों तक ले जाने के भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी गुणवत्ता की किस्में जिसमें विषाणु रोग के प्रति रोक दे, तो किसान को कम से कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़े। और हमारी ये सोच भी है कि हम इस किस्म के साथ साथ रोग विषाणु रोग क्षमता के साथ साथ कीड़ों के प्रति भी रोग रोधिता का विकास भिंडी में करें, ताकि जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, ब्राउन प्लांट होपर है या व्हाइट फ्लाई है या जेसिड है, माइट्स हैं, उनको भी हम कम कर सकें। तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि लोबिया एक हमारी किस्म, लोबिया आग देखते हैं उसमें पीत वरण रोग बहुत प्रचलित है, बहुत नुकसान करता है। हमने किस्म का विकास किया पूसा धारणी जिसकी पोषण गुणवत्ता बहुत अच्छी है, 20 से 25 सेंटीमीटर आकार की फली होती हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा 6.5 से 7% होती है 100 ग्राम के उस पे देखें
0: जी।
1: तो ये उपलब्धि हमारे संभाग की रही है।
0: जो पोषण सुरक्षा कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। डॉक्टर दिनेश, अब आपसे मैं बहुत संक्षेप में ये जानना चाहूंगी कि जैविक तरीके से सब्जियों का उत्पादन कैसे हमारे किसान जो है वो हासिल कर सकते हैं?
2: ज्योत्सना जी, जैविक उत्पादन के लिए एक होता है कि हम जो केमिकल है उसको न प्रयोग करें, उसके जगह पे हम जैविक, जैसे आपको जैविक नियंत्रक होते हैं जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, सुडोमोनास हो गया, बेसिलस हो गए, और इसी तरह से जैसे कीट नियंत्रण के लिए बेवेरिया वैसियाना हो गया, मेटाराइजियम हो गया, ये सभी को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जिससे कि आप उसको चाहे हम उसको सीड ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग करें या उसमें मृदा में भी डाल सकते हैं। मृदा में डालने का तरीका ये होता है कि आपको जैसे फार्मुलेशन होता है ट्राइकोडर्मा का, 1 किलोग्राम फार्मुलेशन है, 100 किलोग्राम गोबर की खाद में सड़ी हुई होनी चाहिए, उसमें मिला करके 1 हफ्ते तक छाई में उसको रखिए और उसको पलटते रहिए जिससे कि उसमें एरिएशन हो और उसमें जो कवक की ग्रोथ है हरी हरी उसमें आ जाएगी। फिर उसको मिक्स करके आप उसमें खेत में डाल सकते हैं
0: जी।
2: तो करीब 3 किलो के लगभग होता है, जो 1 हेक्टेयर के लिए काफी होता है, उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो मृदा के द्वारा बीमारियां फैलती हैं जो आप केमिकल प्रयोग करते हैं उसको बचाने के लिए आप इसका ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास का फार्मुलेशन कर सकते हैं जिससे कि आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरह से स्प्रे करना है तो सुडोमोनास या बेसिलस का फार्मुलेशन आप 10 ग्राम 5 से 10 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके और उसको आप स्प्रे करिए, जब आप बीमारी लगने के पहले भी कर सकते हैं, बीमारी लगने के बाद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नियंत्रित कर सकते हैं।
0: ठीक है, तो अब आइए एक बार रुक कर लेते हैं डॉक्टर सचिन का। डॉक्टर सचिन, कीटों का प्रकोप फसल पे ना हो पाए इसके लिए कई सारे विकल्प हैं और उनमें से एक है ट्रैप्स। तो कौन कौन से ट्रैप्स हैं जिनका प्रयोग जो है वो हमारे किसान कर सकते हैं जिससे कि फसल के ऊपर कीटों का कम से कम जो है वो प्रकोप हो, बहुत संक्षेप में।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
0: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: घर सूर्य घर।
7: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
8: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबवा की आवाज। किसान साथियों, रेडियो टांडा भील 90.8 FM झाबवा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांडा भील 90.8 FM के इस खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आपको सशक्त बनाना है, साथ ही हमारी कृषि में हो रहे नए बदलावों को जानना, समझना और उसमें परिवर्तन के साथ कैसे हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, कैसे हम जैविक खेती कर सकते हैं और कैसे हम आय वर्धक खेती कर सकते हैं आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को हम जानते हैं इस खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से। किसान साथियों, खेती बाड़ी के इस कार्यक्रम में हम खेती बाड़ी से जुड़े हुए कई बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं मधुमक्खी पालन को लेकर। किसान साथियों, हमारा जो किसान है, हम सभी फूल, हमारे फसलों में फूल आते हैं और हम जानते हैं हमारे खेतों की मेड़ों पर और हमारे पेड़ों पर मधु काफी होता है। तो किसान साथियों, क्या हम मधुमक्खी पालन हम कैसे कर सकते हैं और क्या ये हमारे लिए आय का स्रोत बन सकता है, क्या ये हमारी आय में वृद्धि कर सकता है, इन सब बातों को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे। कहां से हम और कैसे इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं और कैसे एक किसान, अब अगर कोई इसके इच्छुक हो तो वो कैसे इस मधुमक्खी पालन को कर सकता है और अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो अपनी बातें।
9: जी हाँ, मधुमक्खी पालन की बात करें तो आज के

0: जो इन्हें फूलों से मिलता है। मधुमक्खी पालन की आधुनिक वैज्ञानिक विधि में कृत्रिम छत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। शहद लेने के लिए इन्हें तोड़ा नहीं जाता, बल्कि एक ही छत्ता बार बार उपयोग में लाया जाता है, जिससे मधुमक्खियों को बार बार जगह नहीं बदलनी पड़ती। ऐसे में आप मधुमक्खी पालन को अगर वैज्ञानिक तरीके से करें तो उच्च गुणवत्ता वाले शहद का उत्पादन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप ऑर्गेनिक फार्म्स में मधुमक्खी पालन करके ऑर्गेनिक शहद का उत्पादन भी कर सकते हैं, जिसकी कीमत भी बाजार में ज्यादा मिलती है।
1: रिपोर्ट देखिए, जिसमें बहुत सारी बातें हमने आपको बताया कि किस तरह की प्रजातियां हैं जिसका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं और साल भर कैसे वो हनी बी से जुड़ा हुआ जो व्यवसाय है इसे बनाए रख सकते हैं। इन तमाम बातों को और विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। बलराज जी, जैसे कि अभी हमने कहा कि हमारा विषय ही यही है कि कैसे मधुमक्खी पालन से मीठा मुनाफा हमारे जो किसान हैं या फिर मधुमक्खी पालक हैं वो अर्जित कर सकते हैं। क्या स्थिति अभी हमारे देश में मधुमक्खी पालन की और किस तरह से इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है?
2: बिल्कुल अंजू जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने मधुमक्खी पालकों के और कृषि के हित में पूछा है। तो मैं बताऊं, अगर आज वर्तमान स्थिति यह है कि लगभग देश में जो दो पालतू प्रजातियां हैं, एपिस मेलिफेरा और एपिस सेराना इंडिका, वो पालतू रूप में अपनाई जा रही हैं और लगभग 32 से 35 लाख जो है बी बॉक्सेस पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में मधुमक्खी पालन के रूप में अपनाए जा रहे हैं और वर्तमान में लगभग 2.5 लाख मधुमक्खी पालक देश में काम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में। और हमारे देश में शहद का उत्पादन अगर मैं 2000 के मुकाबले 2021 की बात करूं तो गत वर्ष हमारे देश में शहद का उत्पादन 2.25 लाख मेट्रिक टन हुआ है, जो कि 2000 वर्ष में मात्र 10,000 मेट्रिक टन या उससे नीचे था। तो बहुत प्रगति हुई है और देश से लगभग 60% जो शहद है हमारा, हनी है, उसका एक्सपोर्ट भी हुआ है, जिससे देश को एक बहुत अच्छी खासी जो है ना विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है लगभग 760 करोड़ रुपए से अधिक की। और वर्तमान में इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं, राज्य सरकारों के साथ मिलकर के इसमें काफी प्रगति हो रही है। और इसका यही नहीं, अगर हमारा शहद का उत्पादन बढ़ रहा है या दूसरे उत्पाद जो सेकेंडरी जो प्रोडक्ट्स है, बाय प्रोडक्ट्स है, उनकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कृषि की उत्पादकता और कृषि की गुणवत्ता दोनों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे देश में मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय आगे बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर इसका कृषि के ऊपर सीधा असर पड़ रहा है और उसमें उसकी उपज, उसकी उत्पादकता और गुणवत्ता, यही नहीं सिर्फ धान्य फसलों या तिलहन फसलों में, इसका योगदान जो बागवानी फसलें हैं, जैसे सेब की बात करें, अनार की बात करें, आप अमरूद की बात करें, आप लीची की बात करें और या मसालों की बात करें जिसमें जीरा है, धनिया है, तो ये सब जो ऐसी फसलें हैं जिनमें परागण के तौर पर ऐसे जो हमारे कीट है, मधुमक्खी पालक जैसे कीट, वो सक्षम परागणकर्ता के रूप में कार्य करते हैं और इसी के कारण आज हमारी उत्पादकता निरंतर जो है ना वो बढ़ने के उस पे है और भविष्य में भी अगर इसी प्रगति से हम आगे बढ़ते रहे तो मीठी क्रांति तो आएगी जिसकी आप बात कर रही हैं कि शहद का उत्पादन बढ़ेगा, साथ साथ कृषि की जब उत्पादकता और उत्पादन बढ़ेगा और गुणवत्ता बढ़ेगी तो उससे भी किसानों की आय में वृद्धि होगी और इसके साथ साथ ये प्रगति जो है ना आगे और बढ़ेगी।
1: जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि मधुमक्खी पालन से सिर्फ ये नहीं है कि आपको शहद ही मिलता है, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी हैं, उसे भी बेचकर हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं वो लाभ ले सकते हैं और साथ ही अगर किसान हैं आप तो आपको कृषि में भी इसके कई तरह के लाभ होते हैं जिसके बारे में अभी हमें बलराज जी ने बताया। आइए बात करते हैं डॉक्टर मनोज जी से। मनोज जी, जैसे कि हमने कहा कि ये एक मिशन है, अब क्योंकि देख लीजिए आप मिशन जब किसी चीज को कह देते हैं तो इससे समझ आता है कि हमारी सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है और इसे कितना रुझान इसको लेकर हम देख रहे हैं किसानों में या मधुमक्खी पालकों में। तो अभी हाल के दिनों में किस तरह के प्रयास या नए कदम इस दिशा में, इस मिशन को लेकर उठाए गए हैं?
3: भारत सरकार द्वारा अभी मधुमक्खी पालन के ऊपर पिछले 3-4 साल से काफी इस पे जोर दिया गया है कि किस प्रकार से मधुमक्खी पालक जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आमदनी में वृद्धि की जा सके। तो इसके लिए जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि स्वीट रिवोल्यूशन, मीठी क्रांति, उसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक नई स्कीम जिसको कि हम नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन

0: के नाम से जानते हैं, वो लॉन्च की गई और उसको जो इम्प्लीमेंटेड कर रही है, इम्प्लीमेंटेशन का जो उसका काम है वो नेशनल बी बोर्ड जो एक भारत सरकार की सोसाइटी है उसके माध्यम से किया जा रहा है। तो इस जो नए मिशन का उद्देश्य है कि जो हमारी साइंटिफिक बी कीपिंग है
1: जी जी,
0: इसको हम किस प्रकार से बढ़ाएं, तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि शहद के उत्पादन के साथ साथ उसके साथ जो दूसरे भी हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताए, जैसे कि रॉयल जेली है, बी पोलन है, और हमारे जो इससे दूसरे जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, उनको किस प्रकार से उनको भी शहद के उत्पादन के साथ साथ उसमें वृद्धि की जाए।
1: जी जी।
0: तो इसके मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने ये स्कीम शुरू की और इस स्कीम के द्वारा हमने पिछले 3 साल में इसको किया, लेकिन कुछ कोरोना काल की वजह से इस स्कीम में ज्यादा अभी वो नहीं हो पाया, लेकिन जो भी इसमें प्रगति हुई है वो काफी प्रगतिशील जो किसान है हमारे, उन्होंने इसका काफी लाभ उठाया।
1: जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि एक मिशन है और इससे बहुत तरह के फायदे भी हैं। देखिए, जहां किसानों की आय में वृद्धि होती है, वहीं जैसा कि बलराज जी ने बताया कि क्योंकि हम इसको विदेशों में भी बेच रहे हैं तो जो विदेशी मुद्रा है वो भी हमारे देश में आती है, तो कई तरह के लाभ इसके हैं। और मैं बात करना चाहूंगी, अब हमारे साथ जगपाल जी हैं जो कि एक प्रगतिशील किसान है, मधुमक्खी पालक है, और आपको बता दें कि इन्होंने लगभग 20-22 साल पहले सिर्फ 30 डब्बों से शुरुआत की थी और आज कहां पहुंचे हैं, किस तरह के बदलाव अपने जीवन में आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में समझते हैं। जगपाल जी, सबसे पहले मैं आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना चाहूंगी कि कैसे आपने शुरुआत की, और मुझे तो ये भी पता चला कि आप तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उसके बाद नौकरी करने का ना सोचकर, क्योंकि आप शहर के पास ही हैं, आपने मधुमक्खी पालन को अपनाया, कहां से इसकी प्रेरणा मिली, थोड़ा उसके बारे में बताएं।
2: देखिए जी, प्रेरणा तो पहले तो मन में ये था कि भाई पढ़ाई के बाद अपना खुद का व्यवसाय करना है, नौकरी की तरफ ना जाके। अमूमन हमारे देहात में ये क्या होता है कि भाई पढ़ लिख ले नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मेरे फादर साहब की ये सोच थी भी नौकरी नहीं करनी, अपना खुद का व्यवसाय करना है।
1: जी जी।
2: तो उस व्यवसाय की कड़ी में एक बार मैं अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गया हुआ था, तो उन्होंने उस समय मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू कर रखा था
1: जी।
2: तो मैंने उनका देखा भाई ये क्या है, बोला जी मधुमक्खी पालन का कार्य है। तो मैंने उनसे चर्चा की 1-2 घंटे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा और समझ में आ गया उसी टाइम। तो उसी टाइम में मैंने मन बना लिया कि भाई मधुमक्खी पालन का कार्य ही शुरू करना है, क्योंकि ये कार्य खुद को तो फायदा देता ही है
1: जी, जी।
2: और किसानों को भी पोलिनेशन से फायदा देता है, तो मुझे तो ये है कि भाई पैसा भी आएगा और पुण्य भी कमाएंगे, तो इसलिए मैंने मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया। और जी 30 बॉक्स शुरू किया था, आज भगवान की दया से मौज है सब चीजों की, अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इसमें बहुत से और भी किसानों को जोड़ के आगे बढ़ा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी दे रहा हूं मैं
1: जी।
2: और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारा यूथ जो नौकरी के पीछे भाग रहा है वो अपना व्यवसाय करे, खेती से
1: संबंधित बने, आत्मनिर्भर बने।
2: हाँ जी
1: जी जी,
2: आत्मनिर्भर बने और बहुत आसान सा व्यवसाय है जी।
1: अभी कितने डिब्बे हैं आपके पास, कितने बॉक्स हैं?
2: हाँ, मेरे पास अब 500 के करीब बॉक्स है जी,
1: 30 से शुरू किया और 500 तक पहुंच गया।
2: और मैं बता दूं जी, मैं बॉक्स से खादी को सप्लाई भी करता हूं, मेरे पास जब बॉक्स एक्सेस हो जाते हैं या और फार्मर से भी बॉक्स खादी में मैं देता हूँ, खादी की वेबसाइट पे मेरा नाम भी है कि खादी से जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो इस फील्ड में काफी अच्छा काम चल रहा है जी, और भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे साइंटिस्ट के बीच में हम हैं तो इनसे और सीखेंगे, कोई को नया और प्रोडक्ट जोड़ेंगे, जैसे बी पोलन की डॉक्टर बलाजी ने बताया, तो हम भी ये शुरू करना चाहते हैं
1: जी जी। देखो बिल्कुल, देखिए हमारा मकसद भी यही होता है और हमारा मंच भी इसीलिए कि ऐसे किसानों को मंच दिया जाए जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में या इससे जुड़े व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ बेहतर किया है, दूसरे किसानों के लिए वो सीख भी बने और साथ ही हमारे मंच से कुछ नया सीख कर जाए, कुछ आगे बढ़ाए। बलराज जी, जैसा कि अभी जगपाल जी कह रहे हैं कि इन्होंने जब शुरुआत की थी तो बहुत छोटे स्तर से की थी और आज यहां तक पहुंच गए हैं, तो जो हमारे अभी युवा किसान या फिर वो किसान या फिर वो युवा जो कि पढ़ाई करने के बाद उनके पास रोजगार नहीं है, वो कैसे मधुमक्खी पालन से रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं या फिर उनके लिए एक आय का बहुत अच्छा साधन हो सकता है, क्या इसे स्टार्टअप से भी जोड़ा जा रहा है?
3: बिल्कुल निश्चित तौर पर अंजू जी, इसको स्टार्टअप के रूप में या एफपीओ बनाकर सरकार का उस पर भी जोर है। डॉक्टर मनोज इसकी चर्चा करेंगे कि इस क्षेत्र में भी, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी अब एफपीओ की बात हो रही है और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं कई उसमें। तो जहां तक बात है मधुमक्खी पालन की, जो युवा है शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है, निश्चित तौर पर चाहे उनके पास भूमि है या भूमिहीन है, ये नहीं, जरूरी नहीं है कि उनके पास लैंड है कि नहीं है, लैंडलेस है तो भी वो इस तरीके का धंधा शुरू कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि हम जो पश्चिम के देशों में जो विकसित देश है या खाड़ी क्षेत्र में जो स्थापित देश है, इसराइल, मोरक्को ऐसे देश या अमरीका जैसे देश, वहां पे मधुमक्खी पालन एग्रीकल्चर को एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करता है, सेवा के रूप में कि पॉलिनेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो स्थिति अब हमारे देश में भी विकसित होने की संभावना है कि हमारे युवा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम खेती की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे परागण का बहुत महत्व है और उसमें ज्यादातर परागण के अंदर मधुमक्खियां योगदान देती हैं 70-75%, और जो स्वपरागित फसलें उनमें भी एडेड पॉलिनेशन की सहायता की जरूरत पड़ती है, यहां तक कि जो परपरागित फसलें उनका तो गुजारा ही नहीं हो सकता, चाहे वो तेलन हो, चाहे वो फल के वृक्ष हो, चाहे वो मसाले हो, बीजे मसाले हो, तो जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं उनमें तो आवश्यकता है ही। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बहुत अवसर है, पॉलिनेशन सर्विसेज, साथ में शहद पैदा होगा और बाय प्रोडक्ट्स के रूप में जो है रॉयल जेली की बात अभी जगपाल जी कर रहे थे, डॉक्टर मनोज कर रहे थे, पोलन की बात है, वेनम की बात है, या जो हमारे जो है ना वैक्स की बात है, या जो दूसरे और बहुत सारे प्रोपोलिस वगैरह है उनका भी उत्पाद हो सकता है। तो निश्चित तौर पर इसको युवाओं को आगे आने की जरूरत है, जगपाल जी से वो प्रेरणा ले सकते हैं कि 30 से उन्होंने शुरू किया तो पूरी, लेकिन सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है कि जब तक आप हमारे युवा जो इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन की पहले प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, जब ही वो आगे सफल होंगे और सरकार की योजनाओं का भी फायदा वो जब ही ले पाएंगे।
1: जी बिल्कुल, देखिए ट्रेनिंग से क्या होता है ना कि दक्षता आपकी बढ़ जाती है, आप जिस भी क्षेत्र में जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं अगर उसका प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं तो और दक्षता उधार दे पाते हैं आप। तो ये एक मकसद भी रहता है कि आप जो आपका इनपुट है या फिर जो आपकी ऊर्जा है, जो संसाधन है उसका वेस्टेज ना हो, उसकी बर्बादी ना हो। मनोज जी जैसे कि अभी हमें बलराज जी बता रहे हैं कि किस तरीके से इसे एक स्टार्टअप का रूप भी दिया जा रहा है। देखिए किसान जो है वो अब खेतों में तो काम करते हैं लेकिन अब वो नई दिशाएं भी तलाश रहा है, और ऐसे में जो युवा किसान है, जो पढ़े लिखे हमारे जो आपके जैसे पोस्ट ग्रेजुएट किसान है लेकिन वो गांव में रहना चाहते हैं, गांव के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, तो किस तरह की संरचना है ये पूरी और कैसे स्टार्टअप से इसे जोड़ा जा रहा है, जैसे कि बलराज जी ने अभी बताया?
0: इसमें भारत सरकार की जो NBHM मिशन है
1: जी,
0: ये 500 करोड़ रुपए का एक विशेष प्रकार की योजना बनाई गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हम जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कैसे उसमें सुधार किया जाए, तो इसके लिए हमने इस जो योजना है इसको 3 भागों में इसको बांटा है, जिससे कि इसमें जो किसानों को और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं या एक्सपोर्टर्स हैं इनको सभी को लाभ इससे मिल सके। तो इसमें हमारे 3 जो मेन कंपोनेंट हैं उसमें जैसे कि नंबर 1 पर हमने मिनी मिशन 1 रखा है। मिनी मिशन 1 के अंतर्गत हमने जो IBDC जिसको कि हम इंटीग्रेटेड बी डेवलपमेंट सेंटर बोलते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उनको विकसित किया जाए। वहां पर जो हमारी योजनाएं हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, जिसमें कि हम
4: किसान साथियों, अभी आपने मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। आपने जाना कैसे ये हमारे लिए एक आय का बहुत ही अच्छा स्रोत बन सकता है, यह कैसे हम इसमें हमारी जो आय है उसमें हम वृद्धि कर सकते हैं। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद पुनः मुलाकात होगी और हम जानेंगे कैसे हम मधुमक्खी पालन और कैसे आसानी से कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग कहाँ पर ली जा सकती है और क्या अनुदान हमें मिल सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि कौन कौन सी मधुमक्खियाँ हैं जिनका पालन हम करके हम अधिक से अधिक शहद ले सकते हैं।
5: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: ब्रेक के बाद पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका। किसान साथियों आइए जानते हैं मधुमक्खी पालन में अलग अलग वनस्पति का शहद कैसे निकाला जाता है और उसमें कौन कौन सी वैरायटीज है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मधुमक्खी में अलग अलग वैरायटीज होती है और उनके क्या क्या लाभ भी हमें मिल सकते हैं आदि जानकारियों को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं।
1: तो क्या ये संभव होता है?
3: बिल्कुल, पहले तो अंजू जी बात करेंगे कि मधुमक्खी पालन के रूप में दो मुख्य प्रजातियां हम हिंदुस्तान में भारतवर्ष में इस्तेमाल करते हैं। एक तो है एपिस मेलिफेरिया जो इटालियन बी है और इसका ये खासियत है कि इसका पोलिनेशन एफिशिएंसी बहुत बड़ी है। ये करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है फॉरेजिंग के दौरान, खाना इकट्ठा करने के दौरान। और शहद का उत्पादन भी अगर अच्छा फसल चक्र है, जैसे अभी सरसों की फसल चल रही है और अच्छा फसल चक्र साल भर है, तो लगभग 30 से 40 किलो, कई बार 50 किलो तक पर बॉक्स जो है ना इससे शहद उत्पादन होता है और बहुत सक्षम परागण करता है। दूसरी जो मधुमक्खी है हमारी वो है एपिस सेराना इंडिका, इंडिजिनस जो है वो प्रजाति है। इसके द्वारा जो है लगभग लगभग 15 से 20 किलो शहद का उत्पादन होता है पर बॉक्स पर ईयर। और ये जो है करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी खाना इकट्ठा करने के दौरान तय करती है फॉरेजिंग पीरियड के दौरान और बहुत सक्षम परागण करता है। तो उत्तर भारत के मैदानों में बड़े पैमाने पर जहां से जगपाल जी आए हैं या उत्तर प्रदेश की बात करें, सेंट्रल इंडिया की बात करें, मध्य भारत की या पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो बड़े पैमाने पर एपिस मेलिफेरा का इस्तेमाल होता है मधुमक्खी पालन के रूप में। अगर ईस्ट कोस्ट की बात करें, उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी भारत की बात करें या पश्चिमी तटों की बात करें, तो एपिस सेराना इंडिका का इस्तेमाल मधुमक्खी पालन के रूप में होता है। और जो आप बात कर रहे हैं शहद की, तो हमारे देश में जो ज्यादा उत्पादन है शहद का, क्योंकि देखिए बड़े पैमाने पर तिलन सरसों फसल का उत्पादन होता है, तो लगभग 60% या इससे ज्यादा उत्पादन शहद का वो सरसों की फसल से होता है, जिसके अंदर रेप सीड है, मस्टर्ड है, तोड़िया है, तारामीरा है, ये सब फसलें आती है। इनमें नेक्टर और पोलन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण से मधुमक्खी की जो प्रजातियां हैं, ये दोनों जो पालतू रूप में अपनाई जाती हैं, वो ज्यादा शहद का उत्पादन करती हैं। और जहां तक बात है कितने से शुरू करें, कब शुरू करें, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन के लिए एक तो ट्रेनिंग प्रशिक्षण देश भर में हमारे 25 जो केंद्र हैं अखिल भारतीय परियोजना के जो मधुमक्खी पालन के ऊपर है जो अनुसंधान का कार्य करती है, तो वो समय समय पर प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त अभी जो डॉक्टर मनोज शर्मा इस पे चर्चा करेंगे कि इन्होंने जो है जो योजना है जो अभी बता रहे थे उसमें योजना मिनी विजन 1 के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्रों को बहुत सारे प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए इन्होंने सहायता की है। तो केवी के भी आजकल जो है ना प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं, तो वो भी एक है। या दूसरे केवीआईसी के सेंटर्स हैं, नेफेड है, ये सब लोग मिलाकर के कुल मिला के और शुरुआत जो है अक्टूबर नवम्बर के महीने में अगर उत्तर भारत की बात करें तो करनी चाहिए। और कम से कम 30-40 बॉक्सेस से कोई युवा अगर इसमें आगे आना चाहता है प्रशिक्षण लेके, तो शुरुआत करे जैसे जगपाल जी से ने की थी और फिर आगे वो अपनी इच्छा के अनुसार जो स्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ सकता है। और उसमें दोनों रूप में कि सिर्फ ये नहीं कि भाई शहद का उत्पादन या जो बाय प्रोडक्शन का एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा एक क्षेत्र है।
1: और पॉलिनेशन सर्विस के बारे में भी आपने बताया, तो
3: सर्विसेज के
1: मैं इसके बारे में भी आगे आपसे बात करूंगी। लेकिन जैसे कि अभी मेरी बहुत ज्यादा यहाँ पे जिज्ञासा है कि जगपाल जी जो अलग अलग तरह के शहद लेकर आए, ये थोड़ा हमें दिखाएं। और देखिये एक बहुत यहाँ पे देख रही हूँ गाढ़े रंग में है, थोड़ा हल्का है और एक तो बिल्कुल घी जैसा शहद दिखाई दे रहा
6: है। ये घी जैसा ही दिखाते हैं। सबसे पहले ये मस्टर्ड का हानि है जो हमारे देश में सबसे ज्यादा होता है,
1: मतलब सरसों का।
6: हाँ। लेकिन एक मिथ की वजह से ये हानि हमारे देश में बहुत कम खाया जाता है कि एक मिथ क्या है हमारे देश में कि जो जम गया वो नकली है, ये गलत है। हानि सभी जमते हैं, हानि का नेचर है जमना। जैसे मस्टर्ड का आप देख रहे घी की तरह लग रहे, ये जल्दी जमता है, बाकी भी जमेंगे थोड़े टाइम के बाद। तोंजू जी इसमें हमने ये वैल्यू एडिशन किया है। वैसे मार्केट में आम आदमी जाता है तो दुकानदार से कहता है शहद दे दे, वो उठा के शहद दे देता है।
1: बिल्कुल। और देखिए मैं आपको बताऊं कि इतना जमा हुआ शहद मैंने भी नहीं देखा, और अगर मैं भी देखती तो मुझे लगता है कि शहद है ही नहीं, क्योंकि मैंने भी कहा कि ये शायद जैसे घी जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये शहद जो है ये सरसों का है,
6: सरसों का,
1: ये जम जाएगा
6: और बहुत गुणकारी है। उसका एक मोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊं, ये हमारे देश में जितना होता है उसका 80% एक्सपोर्ट होता है और उन देशों का एक्सपोर्ट होता है जो फूड के मामले में हमसे ज्यादा अवेयर है।
1: एक दूसरा ये बहुत गाढ़ा सा है ये, मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे जामुन का रस हो।
6: नीम के फूलों का है जी।
1: अच्छा,
6: लोग समझते हैं कि भाई नीम इसमें ऊपर से मिलाया गया, नहीं, मधुमक्खियों को नीम के पेड़ ज्यादा होते हैं, वहां रखते हैं उन पेटियों को और नीम के फूल से रस चूस के बनाती है, वो नीम का शहद है।
1: तो नीम में तो बहुत सारे गुण होते हैं, एंटीबायोटिक
6: है, एंटीबायोटिक है,
1: तो ये सारी चीजें इस शहद में
6: बिल्कुल
1: भी
6: जी आप खाओगे तो सारे उसके जो प्रॉपर्टी है वो इसमें शामिल है और उसका बेनिफिट हमें मिलेगा।
1: और ये हल्के रंग में कौन सा है? ये बिल्कुल बहुत हल्के रंग में यहाँ पर
6: ये मल्टी फ्लोरा है जी।
1: अच्छा, कई तरह की वनस्पति?
6: हाँ,
1: से
6: कई तरह की वनस्पति से।
1: आमतौर पर हम यही वाला?
6: हाँ, आमतौर पर कस्टमर यही लेता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है
1: जी।
6: वो जाके ले लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वैल्यूएशन करके सबको हमने अलग अलग से कलेक्ट किया है और अलग अलग से पैक करते हैं।
1: और ये थोड़ा सा लाल रंग में है, ललछर सा है, ये किस चीज का है?
6: ये अजवाइन का है जी।
1: अजवाइन?
6: हाँ, अजवाइन
1: का भी शायद होता है।
6: हाँ जी, अजवाइन की खेती होती है राजस्थान में बहुत ज्यादा।
1: अच्छा,
6: और वहाँ पे अपने हम जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो बी कीपर है वो माइग्रेट करते हैं, तो हम भी माइग्रेट करके अपने बॉक्सेस को पूरे साल भर में 5-6 जगह ले जाते हैं।
1: यहाँ पर बता दूं कि आमतौर पर जो उपभोक्ता है वो ये सोचते हैं कि अजवाइन का शहद यानी इसमें अजवाइन मिलाया हुआ है।
6: हाँ जी।
1: नीम का शहद मतलब इसमें नीम मिलाया हुआ, तो ऐसा नहीं है। दरअसल ये ऐसी जगहों पर बक्से रखे जाते हैं जहाँ पर नीम के ही पेड़ है या फिर अजवाइन की खेती है, तो जो नेक्टर होता है, जो रस जो मधुमक्खी चूसती है, वो उसी वनस्पति का चूसती है।
6: 80-90% उसी वनस्पति का चूस के वो बढ़ाते, 10% तो हो सकता है कोई और भी आ जाए, लेकिन 90% 80% वो उसी
1: मतलब
6: चीज का
1: शहद, इसमें किसी तरह की और चीज मिली
6: कोई मिलावट नहीं है। शुद्ध शहद को हम घर पे भी जांच सकते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कैसे जांचे। एक तो अंजू जी देखो, शुद्ध शहद को हम कांच के गिलास में पानी भर के ऊपर से डालेंगे तो उसका तार बनेगा, तार टूटेगा नहीं। और सेकंड क्या है, वो बॉटम में जाके और जम जाएगा, बैठ जाएगा, जब तक हम चम्मच से नहीं हिलाएंगे तब तक वो हिलेगा नहीं।
1: अच्छा, और है आपके पास, वो भी दिखा दीजिए।
6: ये हम बी पोलन कलेक्ट करते हैं, जो डॉक्टर साहब ने बताया भी है कि ये भी बड़ा अच्छा इसका बायो प्रोडक्ट है।
1: बी पोलन क्या होता है?
3: अंजू जी, परागकण जिसको बोलते हैं, और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये प्रोटीन रिच है। अगर कोई शाकाहारी है और ऐसे कोरोना काल में काफी,
1: तो इसे भी खाया जाता है?
3: बिल्कुल, इसको भी खाया जा सकता है, ये सिर्फ प्रोटीन है इसमें, और मधुमक्खियां इसको इकट्ठा करती हैं, तो इसको भी इकट्ठा करने का, एकत्र करने का एक तरीका होता है साइंटिफिक, कि हम जो ट्रैप लगाते हैं पोलन ट्रैप बक्सों के ऊपर, और जगपाल जी वही कर रहे हैं। इसकी मार्केट यूरोप के देशों में, अमरीका जैसे देशों में बहुत है।
1: नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन?
3: बिल्कुल नेचुरल सोर्स, और बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का, जिसको आप वैसे खा सकते हो, दलिया में डाल सकते हो, खिचड़ी में डाल सकते हो, ब्रेकफास्ट में ले सकते, जब चाहे, बिल्कुल प्योर है ये, और मधुमक्खियों द्वारा एकत्र किया गया है। ये जैसे सरसों का है, सौंफ का हो सकता है, अजवाइन का हो सकता है। अच्छा, सोआ का हो सकता है,
6: अलग अलग वनस्पति
3: किसी भी चीज का हो सकता है,
6: वनस्पति
3: का जैसे शहद है।
1: जी, जी। और भी कुछ अभी आप बाकी कुछ एक और आप दिखाना चाह रहे थे शायद?
6: ये शीशम का है जी।
1: शीशम का भी होता है?
6: हाँ जी, शीशम का बहुत छोटा सा फूल होता है और केवल 15 दिन के लिए फूल खिलता है। लोग ये समझते हैं कि शीशम के फूल आता है, बिल्कुल छोटा सा व्हाइट फूल आता है, और ये शहद बड़ा गजब का है जी।
1: कैसे?
6: इम्यूनिटी बूस्टर है।
1: अच्छा अच्छा,
6: आप रेगुलर इसको खाओ तो। कोरोना काल में मैंने बहुत से लोगों को खिलाया है और उनके फीडबैक आई, रिजल्ट आया है कि इस शहद से हम बचे रहे
1: जी। शहद मतलब एक ही तरह से सारे शहद को देखते हैं, तो ऐसा नहीं। अगर आप प्रोटीन रिच चाहते हैं तो प्रोटीन का भी प्रोडक्ट है, अगर आप जैसे नीम का शहद है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला भी शहद है, तो कई तरह की वैरायटी है जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। इसका बाजार भी लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि हर कोई अब अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना चाहता है। मनु जी, आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इसका प्रसंस्करण को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है?
0: सामान्य जो भी आदमी होता है वह पूछता है कि हमको शुद्ध शहद चाहिए
1: जी,
0: तो इसकी कोई साइंटिफिक कोई इस तरीके की कोई डेफिनेशन नहीं है कि भाई ये शुद्ध शहद ये है। इसके लिए भारत सरकार ने एक इस योजना के अंतर्गत, NBHM के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और इसका जो मेन उद्देश्य है कि हम टेस्टिंग, इसकी हनी की टेस्टिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए।
1: और ये भी मिनी मिशन के अंतर्गत,
0: ये मिनी मिशन के अंतर्गत है, ये जो हमारे तीनों मिनी मिशन के अंतर्गत, जो ये मिनी मिशन सेकंड और फर्स्ट में ये कवर होता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने जो किया है कि पूरे जो देश को 5 रीजनल सेंटर्स में इसको बांटा है, कि उसमें हम 5 बड़ी लैब जिसमें कि सभी प्रकार के टेस्ट, NMR टेस्ट या दूसरे प्रकार के जो भी हनी से रिलेटेड टेस्ट हैं, उनको आसानी से कराई जा सके, क्योंकि अभी तक जो हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी थी वो विदेशों के ऊपर निर्भर थी, ज्यादातर टेस्ट हमारे जर्मनी या कहीं और दूसरे देशों से आते हैं
1: और फिर कई बार वहाँ से माल रिजेक्ट भी हो जाता है,
0: रिजेक्ट भी होते हैं
1: जिससे काफी नुकसान होता है।
0: हाँ, तो मैडम इसमें जो मुख्य उद्देश्य ये है कि 5 रीजनल लैब पूरे देश में, इसमें अभी तक हमने 3 रीजनल लैब, एक हमने गुजरात में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB जो कि दूध से संबंधित बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी हमने नॉर्थ इंडिया के लिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको हम पूसा बोलते हैं वहां पर हमने एक लैब इस्टेब्लिश पर काम स्टार्ट कर दिया है, तीसरी हमने एक साउथ के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो हमारा बेंगलोर में है वहां पर हमने एक लैब स्थापित की है इसकी।
1: मनोज जी, जैसे कि आप बता रहे हैं टेस्टिंग लैब्स की जरूरत बहुत महसूस की जाए, तो इसकी मांग भी जहां तक मेरी जानकारी है काफी समय से उठ रही थी। आपने खुद बताया कि विदेशों में टेस्टिंग होती थी और कई बार उनके मानकों के आधार पर खरा नहीं उतरता था माल, तो काफी नुकसान भी रहता था। ये टेस्टिंग किस किस चीज की जाती है, मतलब इसके मानक क्या है, आप बताना चाहेंगे?
3: बिल्कुल, मैं इसमें बताना चाहूंगा। देखिए अंजू जी, क्या है जो एडल्ट्रेशन होता है 2 तरीके से होता है। एक तो मान लिया गन्ने की चीनी का एडल्ट्रेशन है, उसकी मिलावट की गई है, तो उसको हम C4 की श्रेणी में लाते हैं। अगर गन्ने की चीनी और अंतरराष्ट्रीय जो मापदंड है उनके अनुसार अगर किसी शहद में 5% से ज्यादा सुक्रोज है या चीनी है तो वो मिलावट की श्रेणी में आता है। और एक जो दूसरी बात है मॉइस्चर, नमी की मात्रा, नमी की मात्रा अगर 18% से ज्यादा है तो वो जो है ना अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप नहीं है, उसमें 18% से कम मॉइस्चर होना चाहिए। और जहां तक बात है C4 जो गन्ना है, C4 की श्रेणी में आता है, तो C4 की टेस्टिंग तो हम कर पाते थे हिंदुस्तान में, पता लगा लेते भाई इसमें चीनी का मिलावट की गई है। जैसा जगपाल जी ने बताया, आप पारदर्शी ग्लास में एक बूंद शहद डालेंगे तो तली में बैठ जाएगा, जाकर तार सा बनेगा, उसका मिलेगा नहीं जब तक आप चम्मच से नहीं मिलाएंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन अगर C3 हमारा जैसे राइस सीरम, इसकी अगर मिलावट की गई है तो राइस सिरप का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है मिलावट के रूप में, उसकी जांच हम नहीं कर पाते थे हिंदुस्तान में, उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड्स नहीं थे। तो जर्मनी से NMR या दूसरे जैसे डॉक्टर मनोज ने बताया उनके लिए जो लैब स्थापित किए हैं, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो इस योजना के तहत, मिशन के तहत किया गया है, NDDB आनंद के अंदर, दूसरा PBTI चंडीगढ़ में भी बहुत अच्छी लैब बनी है, और ये दोनों और तीसरी अभी IHR बेंगलोर में लैब स्थापित हुई, IRI में भी, पूसा में भी लैब स्थापित की जा रही है। तो निश्चित तौर पे इसको पता लगाना कि राइस सिरप का और C3 प्लांट्स की जो एक्सट्रैक्ट है उनका इस्तेमाल करके शहद में मिलावट की गई है, वो एक मुश्किल कार्य था।
1: जी बिल्कुल,
3: तो उसके लिए ये लैब स्थापित की जा रही है और सारे स्टैंडर्ड तैयार किए जा रहे हैं। और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे 25 केंद्र हैं, हम इन दोनों लैब को जो वर्तमान में इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, आनंद और चंडीगढ़ वाली मोहाली वाली, इनको हमने देश के विभिन्न क्षेत्रों से सैंपल मंगा के शहद के अलग अलग, उससे
1: यानी बलराज जी कुल मिला के बात यह है कि इससे हम और बेहतर जो गुणवत्ता युक्त जो प्रोडक्ट है वो बाजार में उपलब्ध करा सके, उपभोक्ता जो है उसके मन में भी इससे ज्यादा विश्वास भी पैदा होगा। देखिए क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि शहद को लेकर कुछ कुछ वीडियो भी वायरल होते रहते हैं कि ये नकली है ये असली है, तो जब पूरी तरीके से टेस्टिंग होगी तो वो तमाम जो आशंकाएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी।
0: इसके साथ साथ मैडम इसमें ये तो बड़ी लैब है, इसके साथ साथ हमारा जो उद्देश्य है पूरे देश में एक जो लैब्स का एक जाल बिछाया जाए, उसमें हमने अपने 3 साल का जो हमारा टारगेट है वो 100 लैब्स का है।
1: अच्छा,
0: इनको मिनी टेस्टिंग लैब बोलते हैं, इसमें बड़े टेस्ट ना होंगे, जितने नॉर्मल टेस्ट हनी से रिलेटेड हैं इनको कवर किया गया है, और अब तक लगभग 16 लैब हम स्थापित भी कर चुके हैं
1: जी।
0: और पूरे देश में नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, सभी में ये लैबों का जाल बिछाया जा रहा है।
1: टेस्टिंग पर हमने काफी विस्तार से चर्चा की। बलराज जी, एक और बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या आती है और उसमें बेचारे जो किसान है या मधुमक्खी पालक है उसका कोई गलती भी नहीं होती है, लेकिन तभी उसका माल रिजेक्ट हो जाता है। स्टोरेज, किस तरह के बर्तनों में इसकी स्टोरेज की जाए ताकि गुणवत्ता बनी रहे, और जो कई बार मिलावट जो नहीं भी करता है और लेकिन वो टेस्टिंग में उसका शहद फेल हो जाता है, थोड़ा इसके बारे में बताएं।
3: देखिए इसके लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो डॉक्टर साहब डॉक्टर मनोज ने बताया जो योजनाएं दी जा रही है, तो किस प्रकार के बर्तन उसमें होने चाहिए, प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं या ग्लास के कंटेनर्स भी हो सकते हैं, तो उनमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और यहां तक कि जैसा आपने कहा कि किसान अपने स्तर पर मधुमक्खी पालक कई बार, अब जगपाल जी तो कर रहे हैं, इन्होंने अपनी यूनिट लगाई होगी निश्चित तौर पर प्रोसेसिंग की, प्रसंस्करण की, लेकिन आम किसान नहीं कर पाता, तो ऐसे में अब इनकी योजनाओं के तहत जो केंद्र सरकार की है, जैसे KVIC ने अभी एक मोबाइल जो प्रोसेसिंग वो वैन स्थापित की है पिछले महीने, जो 300 किलो शहद को प्रोसेस कर सकती है एक दिन में, और उसमें एक मिनी टेस्टिंग लैब भी है जो चलते हुए कहीं भी मान लिया बी कीपर है वहां चली जाएगी, वहां प्रोसेसिंग कर देगी। इस तरीके से एक सबसे बड़ी दिक्कत आती माइग्रेशन में, जब मान लिया सर्दी की फसलें खत्म हुई तो इनको दूर पे लेके जाना है, तो एक ऐसी मोबाइल वैन 50 बक्सों के लिए भी केवीआईसी ने तैयार की है। तो जो आपकी योजना है केंद्र सरकार की, डॉक्टर मनोज जैसा बता रहे, उनके अंतर्गत इन सारी चीजों पे जोर दिया जा रहा है कि नॉट ओनली कि सिर्फ हम उसकी टेस्टिंग के ऊपर, मिनी टेस्टिंग लैब पर बहुत अच्छा जोर दिया जा रहा है, अगर भाई स्थानीय स्तर पर कैसे उसकी शुद्धता को जांचा जा सके और कैसे उनको आप किन किस तरीके के हमारे मोबाइल जो है ना वो होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए साधन होने चाहिए, प्रोसेसिंग होनी चाहिए, और किस तरीके के कंटेनर होने चाहिए और दूसरे इक्विपमेंट है, अब उनकी भी चर्चा उन पे भी इजाद हो रहा है, अगर भाई जो है ना पोलन ट्रैप कैसे कैसा होता है और उसको कैसे लगाया जाए, कैसे स्थापित किया जाए, और यहाँ तक कि अनुसंधान के जरिए, क्यों हमारा काम है विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करना, कैसे पॉलिनेशन एफिशिएंसी बढ़ाएं, सेब के ऑर्चार्ड हैं वहां पिछले साल का जो पोलन इकट्ठा किया है वहां पॉलिनाइजर की कमी है, अब पॉलिनेटर तो है मधुमक्खी, पॉलिनाइजर की कमी है, तो पिछले साल के पोलन को हम पोलन डिस्पेंसर्स के थ्रू या जेनेटिक स्टॉक भी अच्छा जो उसके पोलन को प्रीफर करता है एप्पल के को या दूसरे लीची के को, तो इस तरीके के अनुसंधान के जरिए बहुत अच्छा कार्य जो है प्रगति पर है और निश्चित तौर पे इसमें आगे बढ़ावा मिलेगा और ये जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो मधुमक्खी पालन में काफी इजाफा होगा और इनको मधुमक्खी पालकों को भी कृषि को भी लाभ मिलेगा।
1: बिल्कुल, जैसे कि बहुत सारी बातें बताई बलराज जी ने और माइग्रेशन के बारे में बताया कि जो मधुमक्खी पालक सोलली मतलब जो सिर्फ मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं, कृषि का कार्य उनका नहीं है, कई बार उनके सामने चुनौती ये आती है कि चलिए एक सीजन में तो आपने जिस क्षेत्र में है वहां पर आपने डब्बे रखे, माइग्रेशन में पहले जब मैंने एक बार प्रोग्राम किया था तो एक किसान ने समस्या बताई कि दूसरे स्टेट में जाना, फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर वहां पर ऐसी जगह ढूंढना, ये एक प्रैक्टिकली समस्या आती, तो क्या इसमें भी कुछ सुगमता हुई है?
6: आपने कृषि मंत्रालय ने पीछे एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि भाई जो भी किसी भी स्टेट में सरकारी लैंड जैसे रोड के किनारे, नहर के किनारे, सड़क के किनारे या रेलवे के किनारे किसी बीकीपर ने अगर अपनी मधुमक्खियां रख दी तो वहां से उनको उठवाया नहीं जाएगा जब तक कोई बड़ी समस्या या लोगों को ना हो। पहले ये था कि जहां भी हम रखते थे तो उस डिपार्टमेंट के लोग आके कहते थे उठाओ उठाओ, तो ये डिपार्टमेंट की मंत्रालय की पहल से बहुत हद तक लोगों को सुविधा हुई है, ना तो पहले रखने में ही बड़ी समस्या होती थी। कुछ मीडिया के माध्यम से, आप जैसे उनके माध्यम से लोग अवेयर भी हुए ना, हमने जब स्टार्ट किया तो लोग जेड़ी लेके आ जाते थे, पूरे रख दी सारे तेल न तो ये सूझ जाएंगी ऐसे बोलते थे, लेकिन आज लोग बुला के रखवाते हैं, मेरे को फोन आते हैं कि मेरा इस चीज का बाग है या भाई मस्टर्ड के लिए आप हमारे यहाँ आ जाओ, तो अवेयरनेस भी बढ़ी है और लोगों का नजरिया भी बदला है इसके प्रति, ये हमारे फायदे के जीव हैं, नुकसान के नहीं है।
1: जी बिल्कुल, हमारे जिसे हम कहते हैं दोस्त,
6: हाँ जी दोस्त,
1: हमारे दोस्त हैं, कृषि
6: मित्र कीट है हमारे।
3: और मैं अंजू जी बताना चाहूंगा, जब ये लोग जगपाल जी जैसे जो मधुमक्खी पालक है प्रगतिशील, जब वो अपने बक्सों को सरसों की फसल के बाद पहले यूकेलिप्टस में लेके जाते हैं, फिर वो जो है ना कहीं एप्पल ऑर्चार्ड्स में लेके जाते हैं, तो आज से 15-20 साल पहले जो सेब के बगीचे वाले जो ऑनर होते थे वो कोई पैसा नहीं देते थे, लेकिन आज वो 800 से 1000 रुपया प्रति बक्सा एक महीना वहां रखने का,
1: तो उनको पता लग गया
3: इसका क्या फायदा है, इसकी उपज बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, साइज शेप सब उससे इम्प्रूवमेंट होता है, तो काफी प्रगति है। और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब माइग्रेशन करते हैं तो केंद्र सरकार का अगर किसी के पास सर्टिफिकेट ट्रेनिंग का तो कोई रोक टोक नहीं है।
1: मनोज जी आप कुछ कहना चाहते
0: हैं? हाँ मैडम, इसमें जो मुख्य जो माइग्रेशन का सवाल उठा है इसमें भी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। इसमें भी हमने हाल में ही एक मधु क्रांति पोर्टल ऑनलाइन हमने लॉन्च किया है,
1: मधु क्रांति पोर्टल। अच्छा,
0: तो इसमें ऑनलाइन जो भी हमारे बी कीपर्स हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन पहले भी होता था, वो ऑफलाइन होता था, लेकिन अब ऑनलाइन हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया है और उसमें जो बी कीपर्स हैं हमारे उनके कॉलोनी का एक रजिस्ट्रेशन होता है, तो जो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसको कोई भी बी कीपर्स कहीं भी किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए अगर वो सर्टिफिकेट दिखाता है तो उसको सभी प्रकार

भी आप लोगों ने सुना कि कैसे पहले जब शुरुआत की गई थी मधुमक्खी पालन की, तो लोग कैसे उन्हें अपनी मधुमक्खियों को हटवाने के लिए बोलते थे। लेकिन अभी जो अवेयरनेस के माध्यम से अभी लोग जागरूक हो चुके हैं और कैसे अभी न केवल वो उनके खेत पे खुद बुलाते हैं, वरन वहाँ पर पैसे भी देते हैं। इससे जो फसलों की गुणवत्ता बढ़ती है और फसलों की पैदावार में भी यहाँ पर बढ़ोतरी होती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी जानकारी हमको यहाँ पर मिली है। तो किसान साथियों, आप भी जो भी इस कार्य के इच्छुक हैं, आप भी अपना अपने विचारों को केवीके के माध्यम से और केवीके में पहुंचा सकते हैं, वहां से ट्रेनिंग ले सकते हैं और अनुदान के माध्यम से भी हम इसको कर सकते हैं और इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद पुनः मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM में खेती बाड़ी कार्यक्रम में।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आइए जानते हैं मधुमक्खी से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अभी तक हमने बात की जो पालतू प्रजातियां हैं दो हमारी एपिस मेलिफेरा और सिराना इंडिका, जिनसे हम बक्सों में रखते हैं, शहद उत्पादन करते हैं या परागण की सेवाएं भी देते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त अंजू जी दो महत्वपूर्ण प्रजातियां और हैं, एपिस फ्लोरिया जिसको हम लिटिल भी बोलते हैं, और ये प्रजाति अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए या शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी है एपिस डॉर्साटा। एपिस डॉर्साटा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है। देखिए कहां मेलिफेरा 2 से 2.5 किलोमीटर तक जाती है, एपिस डॉर्साटा 4 से 5 किलोमीटर तक फॉरेजिंग रेंज है, अपनी दूरी तय करती है खाना इकट्ठा करने में, बहुत सक्षम परागण करता है, विषम परिस्थितियों में काम करती है। तो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात या बुंदेलखंड का क्षेत्र, ऐसे शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र है, ऐसे में जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो इन्हीं दो परागणकर्ताओं के ऊपर आधारित है। तो ऐसी स्थिति में अगर इनकी जनसंख्या कम होती, पालतू की जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन इनकी जनसंख्या कम होती है तो निश्चित रूप से कृषि का हमारा एक चुनौती है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि लोग गलतफहमी में आ जाते हैं कि जैसे जहां पेड़ है बड़े बरगद के, उन पर डॉर्साटा का कहीं छत्ता लगा है तो उसके नीचे धुआं कर दिया या उसके नीचे डीजे बजा दिया ब्याह शादियों में, वो ना करें, बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर या पानी की टंकियों के ऊपर वो अपना छत्ता बनाती है। एक फ्लोरिया जो है वो झाड़ी में, बोगनविलिया में, घास में छत्ता बनाती है और ये भी करीब 700 से 800 मीटर की दूरी तय करती है, सक्षम परागण करता है। तो इनकी जनसंख्या भी हमें कम नहीं होने देनी है, तो हैबिटेट लॉस नहीं होने देना है ये बात। और जहां तक बात है भाई इन दोनों की जनसंख्या, हम समय समय पर इनके लिए क्या करें क्या ना करें, जैसे धुआं ना करें, सामूहिक आवाज ना निकालें, भड़कीले कपड़े ना पहने, खास करके गर्मी के महीने, सर्दी में तो काम चलता, खाने की कमी नहीं, पानी के स्रोत भी है, लेकिन गर्मी अप्रैल मई जून जुलाई में जब ये दिक्कत आती है तो ऐसी स्थिति में ये सावधानी रखने की जरूरत है। और इनका जब ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से पालतू के साथ साथ अगर जंगली प्रजाति से आपने डॉर्साटा का छत्ता से शहद लेना है उसकी भी वैज्ञानिक दृष्टि से हम बताएंगे से प्राप्त कर सकते, उसको जलाना नहीं है, तो बी हंटिंग पे काम नहीं करना है और उनको जलाना नहीं है, लेकिन ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है जो हमारी जैव संपदा है उसका एक पार्ट है।
2: जैव संपदा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और जैसे कि आपने बताया कि बी हंटिंग नहीं, बी कीपिंग पर आज हम बात कर रहे हैं। मनोज जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए कोई भी व्यवसाय, कोई भी कार्य आप शुरू करने की सोचते हैं तो उसमें पूंजी तो लगती ही है, तो ऐसे में हमारे छोटे किसान बहुत, जिनके पास आर्थिक क्षमता नहीं है या फिर बेरोजगार युवा, उन्हें किस तरह से उनके हैंड होल्डिंग की जाएगी या फिर कैसे उन्हें सहारा दिया जाएगा, किस तरीके से आर्थिक मदद उन तक पहुंचाई जाएगी बी कीपिंग के लिए?
3: इसमें मैडम जो महत्वपूर्ण ये है कि इसमें हम जो हमारी स्कीम में असिस्टेंस सपोर्ट है वो जो सामान्य राज्य हैं उनमें 50% तक है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट या जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें 90% तक, और जो हमारे आजकल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम एफपीओ बोलते हैं, एफपीओ हैं, कोऑपरेटिव हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इनके माध्यम से हम 75% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए जो भी हमारे बेनिफिशरीज हैं उनका जो प्रोजेक्ट है या उनकी जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है उसको वो अपने जिले में, जो जिले के माध्यम से वो राज्य सरकार में सम्मिलित करेंगे और राज्य सरकार उनको फॉरवर्ड करके वो केंद्र सरकार में भेजती है, तो उसके अंतर्गत हम अनुदान देते हैं। तो इसके लिए जो जिस भी कंपोनेंट पर अनुदान है, हमारी वेबसाइट है नेशनल बी बोर्ड की, उस पर पूरा विस्तार से दिया गया है कि किस कंपोनेंट में कितना सब्सिडी मिलती है।
2: बिल्कुल, नेशनल बी बोर्ड की एक वेबसाइट भी है जो कि तमाम जानकारियां जहां पर उपलब्ध है आप जा सकते हैं, और आजकल तो हमारे किसान बहुत स्मार्ट हैं, ज्यादातर किसानों के पास स्मार्टफोन है, वो ऐसी सुविधाओं का इस्तेमाल भी करें।
3: एक में और एक छोटा इसमें वो है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इस मिशन के अंतर्गत किया गया है कि पूरे देश को जो 100 FPO यानी कि क्लस्टर, उसमें जो महत्वपूर्ण जहां पर शहद का उत्पादन होता है उसको वहां पर आइडेंटिफाई किए गए हैं इस स्कीम में, और जो 3 एजेंसी हमारी हैं जैसे कि नेफेड और एनडीडीबी और एक ट्राइफेड, इनके माध्यम से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है
2: जी।
3: और जब ये एफपीओ पूरे बन जाएंगे तो उसके निर्माण के बाद वहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके माध्यम से किया जाएगा। तो जो लोकल स्तर पर इन 100 जिलों के किसान या मधुमक्खी पालक हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है
2: जी।
3: तो एक बहुत ही
0: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि हम लगातार मधुमक्खी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को ले रहे हैं, जान रहे हैं और सीख रहे हैं कैसे हम मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी बात सीखी है। अधिकतर अपने गांव के लोग क्या करते हैं, जैसे कि बड़ा मधुमक्खी का छत्ता आ जाता है तो उसको धुआं करके या शोर शराबा करके वहाँ से उसको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है, इसे हमें बचा कर रखनी चाहिए। और जैसा कि हमें डॉक्टर साहब ने कहा, हमें बी हंटिंग नहीं करनी है, बी कीपिंग करना है। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया बिल 90.8 FM के साथ।
4: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
6: हर घर

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
2: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा।

0: गीत संगीत की इस महकती हुई शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम को। आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो कलाकार हमारे साथ हैं, जो टैलेंट हमारे साथ हैं, जो प्रतिभा हमारे साथ है, बहुत बहुत मजा आएगा उनको जानकर, उनसे बातचीत करके। उनका नाम है श्री विद्धू मोहन जी। विद्धू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं।
1: नमस्कार समीर जी, सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं विधु मोहन, कैनरा बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हूँ। 2014 में मैं रिटायर हो गया था और आजकल अलीगढ़ में मेरा निवास है। मैं कैनरा बैंक रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन का ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और रिटायर्ड लोगों की समस्याओं का निराकरण करने में मेरा काफी इंटरेस्ट रहता है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो, विदु जी
1: जी
0: जी, कहिए कहिए, आप कुछ कह रहे थे।
1: हाँ, तो मेरे को थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट है कि लोगों के साथ, मैं जब मैं जॉब में था तभी मैं कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी था। लोगों की समस्याएं सुनने में, उनका सुलझाने में, उनका निराकरण करने में मुझे काफी आनंद भी आता है और एक जुड़ाव भी महसूस होता है।

0: आपने बिल्कुल सही कहा विद्यु जी। लगातार बढ़ती हुई तकनीक और टेक्नोलॉजी की वजह से हम सभी बहुत जबरदस्त तरीके से महसूस तो कर रहे हैं, शायद मान नहीं रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी
1: जी
0: में हम लोगों को सबको एक दूसरे से बहुत अलग-अलग कर दिया है, बहुत दूर दूर कर दिया
1: जी
0: है। अब हम फोन में ज्यादा बिजी होते हैं रादर कि हम किसी से मिलें, किसी से बात करें, किसी किसी तकलीफ सुने, किसी के आंसू पहुंचे, हम फोन में ज्यादा
1: जी
0: घुसे रहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा।
1: जी
0: तो अगर इस दिशा में आप कुछ कदम उठा रहे हैं तो बहुत बहुत खूबसूरत।
1: निश्चित रूप
0: तो
1: से सर, मेरे यही प्रार्थना, ये तो यही कोशिश रहती
0: बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने सुना विद्यु मोहन जी कौन है, क्या करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम के तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को विद्यु मोहन जी के ही गाए हुए इस बहुत ही खूबसूरत नगमे से।

0: बहुत बढ़िया विद्यु जी, हमारे प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि हम कलाकार को जानें, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही एक इंसान है। जाहिर सी बात है वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, हमसे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, लेकिन फिर भी हमें जानने की इच्छा होती है। तो आप बचपन में क्या बनना चाहते थे विद्यु जी?
1: सर जैसा बचपन में हर व्यक्ति की इच्छा होती है कुछ ना कुछ बड़ा करने की, लेकिन समय के साथ प्रायोरिटीज बदलती चली जाती है सर
0: जी।
1: कभी क्रिकेटर बनने को मन करता जब क्रिकेटर को देखते हैं, जब बैडमिंटन खेलते तो अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बनेंगे, कभी इकोनॉमिक्स बनना चाहते हैं तो लाइक दैट, लेकिन वक्त की मार किस्मत आपको कहा ले जाती है, किस्मत मुझे बैंक में लेके आई। अब मैं बहुत ही खुशनसीब अपने को मानता हूँ, मुझे बैंक मिला क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेरा ट्रेड था और इकोनॉमिक्स में मुझे बैंक मिला, आई एम हैप्पी विद दैट।
0: तो बचपन में मतलब कोई स्पेसिफिक चाहत आपकी नहीं थी, आपका ये था कि आप जिससे भी प्रभावित हो जाते थे वैसा बनने की कोशिश करते थे। हमारे सबके साथ ऐसा ही होता है, बहुत खूब।
1: तो चलिए, उसमें एवेन्यूज नहीं थे सर।
0: बहुत खूब, तो सुना आपने दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत विद्यु जी का ही गाया हुआ।

0: बिंदु जी, अभी हम लोग बचपन में ही हैं, तो
1: जी
0: क्या आपको याद है कि आपके फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों?
1: हाँ, लेट मी रिमेम्बर। सर, हमने अपना जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया वो मुरादाबाद से किया है।
0: जी
1: वहां पर पार्क इंटर कॉलेज हुआ करता था सर।
0: जी
1: अब पार्क इंटर कॉलेज में इंग्लिश के हमारे टीचर थे मिस्टर पी पी सक्सेना जी।
0: जी
1: उनका सर इतना अच्छा तरीका उनका पढ़ाने का था कि उन्होंने जो हमको ग्रामर सिखाई वो हमने समझिए कि 70 में हमारा इंटरमीडिएट हो गया था, और आज 54 साल होने के बावजूद हमारी ग्रामर बहुत अच्छी है सर। मैं आज भी कह सकता हूँ मेरे ग्रामर बनाने का श्रेय हमारे पीपी सक्सेना जी को जाता है। और यदि हम आगे बढ़े तो मैंने जब एमए किया इकोनॉमिक्स में तो हमारे एक प्रोफेसर थे मिस्टर आर एम दुबे।
0: जी
1: तो दुबे सर ने हमें प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाया। उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका था सर, बहुत एग्जाम्पल देकर पढ़ाते थे। तो ये दोनों टीचर्स ने मेरे एजुकेशन में एकेडमिक लाइफ में बहुत कुछ इंप्रेशन डाला है, और आज जो कुछ भी मैं अपने को मानता हूँ वो इन दोनों की बदौलत ही मानता हूँ।
0: बहुत बहुत खूब विदु जी। मैं आभारी हूं आपका हमें बताने के लिए कि आपकी जिंदगी में आपके ऊपर प्रभाव डालने वाले दो टीचर्स थे, एक सक्सेना साहब और एक दुबे साहब।
1: जी
0: तो
1: सर,
0: दोस्तों, आपने सुना अगला गीत जो हम सुनने वाले हैं विदु जी की आवाज में। मैं विदु जी के ही टीचर सक्सेना साहब को और दुबे साहब को डेडिकेट करना चाहूंगा, उनको ही समर्पित करना चाहूंगा। आइए सुनते हैं
1: जी सर,
0: प्यारे से गीत को।

0: बहुत बहुत ही प्यारा गीत बिंदु जी, क्योंकि आप,
1: थैंक यू सर,
0: क्योंकि आप गीतकार हैं, क्योंकि आप गायक हैं, तो आपका सबसे पसंदीदा गायक और गायिका कौन है और भला क्यों?
1: जी सर, सर मुझे शुरू से बचपन से मैंने रफी साहब को सुना है, मैं उनका मुरीद हूँ
0: जी।
1: उनकी गायकी का, उनकी आवाज का, उनके आवाज में जो लोच आती है, क्या नहीं उनकी आवाज में, मैं कुछ कह नहीं सकता, बस मैं उनका मुरीद बनकर रह चुका हूँ। और गायिकाओं में लता मंगेशकर जी तो खैर हमारी देवी है
0: जी,
1: संगीत के भगवान है
0: जी,
1: तो ये दोनों ही मुझे बहुत पसंद है सर, रफी साहब लता जी।
0: बहुत खूब, बिल्कुल आपने संगीत की दुनिया के जो सबसे ज्यादा ऊपर चमकते हुए सितारे हैं, जो राज करते हैं संगीत की दुनिया पर, उन्हीं का नाम लिया है, रफी साहब और लता जी। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए सुने एक प्यारा सा गीत मोहन साहब की आवाज में।

0: बहुत खूब विद्यु जी, अपनी जिंदगी
1: जी
0: में
1: सर।
0: पहली बार आपने कोई खाने की चीज क्या बनाई थी और वो कैसी बनी थी?
1: ओके सर, इट्स अ वेरी फनी थिंग सर।
0: जी
1: मेरे ऊपर वाले की कृपा ये से मुझे आज तक कभी खाने बनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक ऐसा मौका मिला था जब मेरी पत्नी मायके गई तो कुछ उनसे खाने का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा चलिए मैं ट्राई करता हूँ। एंड आई ट्राइड ऑन भिंडी, लेडीज फिंगर। अब
0: ओके
1: मुझे उसका आइडिया नहीं था सर, मैंने उसमें पानी डाल दिया सब्जी में,
0: ओहो
1: और पानी जो डाला तो सूखने का नाम न ले। अब उसको मैं घोटता रहा घोटता रहा, बाद में पता चला भिंडी का हलवा बन गया। तो देट
0: ओके
1: वॉज सच ए फनी थिंग सर, मतलब ईश्वर की कृपा, उसके बाद फिर दोबारा मौका ना दिया भगवान ने, ना पत्नी ने दिया।
0: ओहो क्या बात
1: जी
0: है। देखिए, किसी महिलाओं की उंगलियों के साथ आप ऐसा मजाक कर भी नहीं सकते साहब। लेडी की
1: एग्जैक्टली
0: फिंगर आपने पानी में डाल दी, ये तो गलती हो गया ना।
1: एग्जैक्टली
0: मतलब यूं तो एक जोक चलता है, मैंने पीछे भी किसी प्रोग्राम में अचानक से याद आ गया था तो बोल दिया था कि आपने चाय दरअसल कुकर में बनाने की कोशिश की और वहीं गड़बड़ हो गई।
1: जी, वही गड़बड़ हो
0: आपको
1: गया
0: पता ही नहीं चला कि सीटियां कितनी देनी थी,
1: जी।
0: तो सब गड़बड़ हो गया। बहुत खूब बहुत खूब, बड़ी मजेदार बात। दोस्तों, आपने सुना कि आगे से आप भी ख्याल रखें, किसी भी महिला की उंगलियों से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत विद्यु जी की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया बिंदु जी, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत अनुभव के साथ हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे आपको समझने के लिए कि आपकी हॉबीज क्या हैं। जब कभी भी आपको थोड़ा वक्त मिलता है तो क्या करना चाहते हैं आप उस वक्त में?
1: सर, मेरा ज्यादातर टाइम जो जाता है वो सिंगिंग में जाता है,
0: सिंगिंग के अलावा?
1: और सिंगिंग के अलावा मेरा रीडिंग हैबिट है, और इंडोर गेम्स पे खेलना पसंद करता हूँ। चेस खेलने में मुझे आनंद आता है, कैरम खेलने में आनंद आता है। पहले बैडमिंटन खेलता था, लेकिन पैर में ट्विस्ट आने के कारण फिर बैडमिंटन बंद करना पड़ा।
0: जी,
1: और इसके अलावा सोशल सर्विस मेरा पैशन है, म्यूजिक के
0: बहुत
1: अलावा।
0: बहुत खूब। आप किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं?
1: सर, मैं जनरली फिक्शन पसंद करता हूँ, हालांकि रिलीजियस में मैंने रामचरितमानस और महाभारत, गुरुदत्त को मैंने बहुत पढ़ा है, और आचार्य चतुर्सेन को हिस्ट्री के रूप में पढ़ा है। तो ये चीज मेरी है। बाकी अब तो क्योंकि नजर थोड़ी कमजोर हो गई है तो पढ़ने पे कम ध्यान जाता है
0: ओहो, तो फिक्शन
1: जी।
0: में क्या
1: लेकिन
0: पढ़ते हैं आप?
1: फिक्शन में सर जनरली मेरे को जो पसंद है थ्रिलर्स हैं, जैसे कि हमारे इंग्लिश में एक नॉवेल था सेकंड लेडी,
0: जी हाँ,
1: वो मैंने पढ़ा था, इरविंग
0: इरविंग वैलेस।
1: वालेस का है जी,
0: जी
1: इरविंग वालेस का है।
0: जी हाँ, जी
1: और
0: हाँ,
1: उनके काफी नॉवेल मैंने पढ़े थे।
0: बहुत खूब बहुत खूब। विदु जी, आपको जरूर पता होगा क्योंकि आपने नाम लिया है, मैं अपने सुनने वालों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इरविंग वैलिस का जो ये नॉवल था द सेकेंड लेडी, उसके ऊपर हमारे बॉलीवुड में एक मूवी बनी थी जिसमें राजकुमार साहब थे और हेमा मालिनी थी और शत्रुघ्न सिन्हा थे। इस मूवी का नाम था शरारा।

0: विदु जी, चलिए कुछ मजे करते हैं, कुछ फन, मजाक।
1: जी
0: लेकिन मजाक के साथ साथ कुछ गंभीरता भी इसमें आ सकती है कि अगर आप 24 घंटों के लिए गायब कर दिए जाएं, दिखाई ना दें, तो आप उन
1: जी
0: 24 घंटों में क्या करेंगे?
1: ओ माय गॉड, 24 घंटों के लिए गायब होना। सर वैसे देखा जाए तो अपने आप में बहुत ही मेरे लिए एडवेंचर्स रहेगा, गायब हो जाना, किसी को दिखाई ना पड़ना। लेकिन
0: जी
1: जब मैं सोचता हूँ कि चलिए मैं गायब हो गया, अगर मुझे कुछ अदृश्य शक्तियां भी मिल जाती हैं
0: जी
1: तो निश्चित रूप से मैं ये चाहूंगा कि

0: जो लोग कमजोर फिजिकली भी कमजोर है, बहुत से लोग मैंने देखा था कि कमजोर के ऊपर लोग अपना जोर ज्यादा दिखाते हैं, जोर एक्चुअली कमजोर पर ही दिखाते हैं। तो मैं अध्यक्ष होकर यदि मैं हो जाता हूं तो मैं उनको जरूर निश्चित रूप से बचाऊंगा जो बिना मार के बेचारे मार खाते हैं, पिटाई करते हैं, या बहुत से लोग ऐसे जिनको कुछ नहीं मिल पाता, आई विल ट्राई टू हेल्प देम आउट।
1: कैसे, मतलब कैसे हेल्प करेंगे?
0: हाँ, दैट इज माई, क्योंकि हेल्प करने के लिए मैंने बताया ना कि मेरे पास अदृश्य शक्तियां भी यदि जाती हैं, यदि अदृश्य शक्तियां नहीं है सर तो अदृश्य होने का मेरे लिए कोई मतलब नहीं बैठता। अदृश्य होने के साथ मेरे पास अदृश्य शक्ति भी आनी चाहिए जिससे कि मैं किसी की सहायता कर सकूं। अदरवाइज अदृश्य हूं या ना हूं, इट डजंट मेक एनी सेंस।
1: तो किस तरीके की शक्ति चाहिए होगी आपको, आप बताएं।
0: हाँ हाँ शक्ति मुझे ये चाहिए कि जैसे मैं, जिसकी मान लिया किसी पास पैसा नहीं है, उसको जरूरत है कि कपड़े चाहिए, सब चाहिए, मेरी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन शक्ति की वजह से मैं उसको कपड़े ला के दे सकता हूँ, उसको पैसे दे के उसकी जगह सही कर सकता हूँ, उसको ताकत दे सकता हूँ कि भाई तू कमजोर है, आई विल मेक यू सो स्ट्रांग दैट यू कैन फाइट एनीबॉडी लाइक दैट।
1: ओके, बहुत खूब बहुत खूब। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं विधु जी की ही आवाज में।

0: विदु जी, आगे बढ़ते हुए हमें बताएं कि आपकी जिंदगी में अब तक की सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि क्या रही?
1: सर, ये बहुत ही आपका प्रश्न अच्छा है और इसके लिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ और अपनी पत्नी का कि उसने मुझे बहुत प्यारा सा बेटा दिया उपहार के रूप में। उस बेटे के साथ, उसने देने के साथ उसके एक परवरिश भी एक ऐसी की है कि नाउ ही इज सच ए गुड सन, आई कैन बी प्राउड ऑफ हिम। ये मेरे लिए सबसे गौरवपूर्ण चीज है सर, बेटा मेरा होना, बेटे का मेरे लिए इतना डिवोटेड, इतना कमिटेड, इतना ओबीडियंट होना,
0: हाँ बेटा, तुमने फोन किया
1: ये मैं सबसे गौरवपूर्ण चीज मानता हूँ सर।
0: तो आप मानते हैं कि आपका बेटा आपकी जिंदगी की सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि रही है। अच्छा
1: जी।
0: अगर ऐसा समझे तो ये गौरवपूर्ण उपलब्धि तो मैम की है, भाभी जी की है। अच्छा
1: यू कैन से लाइक दैट आल्सो सर। एक स्मरण मुझे और आता है सर,
0: जी
1: बात
0: जी
1: करते करते ध्यान आया कि एक
0: जी
1: जगह हम बैठे सर, जब मैं आपने बात बताई तो मुझे ध्यान है, मेरी अपनी पर्सनल उपलब्धि मैंने नहीं बताई है। मेरी
0: जी
1: पर्सनल उपलब्धि यह है सर कि मैं एक जगह बैठा था तो एक बंदा वहां पर आया, मुझे देख के उसने मेरे पैर छू लिया।
0: ओहो
1: मैंने पूछा क्या हुआ भाई, बोले सर आपने मेरी समय मदद की थी जब मुझे मदद करने वाला कोई नहीं था, ही वॉज इन नीड ऑफ 10,000 रुपीज ओनली,
0: ओके
1: और बैंक पे मैं बैठा मैनेजर था मैं, तो उसकी वो मेरे पास आया कि सर मुझे 10,000 लोन मिल सकता है। उसकी स्थिति देख के कोई देने को तैयार नहीं था, बट आई गेव 10,000 रुपीज एज ए लोन विच ही प्रॉम्प्टली रिपेड विद इन 2 ईयर्स।
0: ओके
1: तो देन ही ऑन दैट डे मैं भूल चुका था कि सब क्या है, लेकिन उसने जब मुझे बताया तो मुझे लगा अरे यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बैंक का पैसा, बैंक का टाइम इसने वापस किया, मैंने क्या किया, बट ही वॉज सो ओइंग टू मी, मुझे उस दिन लगा कि यस आई हैव डन समथिंग।
0: बहुत खूब बहुत खूब। ये हुई ना सर अकॉम्प्लिशमेंट वाली बात कि आपने सचमुच तहे दिल से बिना किसी स्वार्थ के किसकी सहायता करी और वो भी व्यक्ति आपके पास वापस आकर अपना कृतज्ञता आपको शो कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप ही थे
1: जी
0: वो
1: जी
0: जिन्होंने उसकी जिंदगी में ये बदलाव लाया। बहुत
1: सर,
0: खूब।
1: इसके ये आपने याद दिलाया सर, इसके लिए आपको धन्यवाद, आपने मेरा इस चीज पर ध्यान दिलाया, मैं इस चीज को दिमाग से निकल चुकी थी लेकिन एकदम याद आया कि नहीं ये चीज मुझे स्ट्राइक करा एकदम।
0: बहुत खूब। अरे सर, ये देखिए, ये बेटा बेटी जो होते हैं ये तो किस्मत से, ऊपर वाले की किस्मत से हमें
1: जी
0: मिल जाते हैं, लेकिन यूं देखा जाए तो बेटा बेटी को सिवाय पैदा करने के हमने और कुछ नहीं किया, वो तो ऊपर वाले की देन हुई। तो
1: नहीं
0: आपने
1: सर,
0: जो किसी के
1: संस्कार
0: लिए
1: देना भी एक
0: किया,
1: बड़ी चीज होती है।
0: जी हाँ जी हाँ, वो तो आपके
1: हाँ
0: जीवन शैली से ही उनको मिलने शुरू हो जाते हैं।
1: जी
0: बहुत खूब। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत विद्यु जी की ही आवाज में।

0: बहुत बहुत बढ़िया। चलिए एक और फन क्वेश्चन, एक मजेदार सवाल। क्या आप किसी अंतरिक्ष से आए हुए प्राणी से मिलना चाहेंगे और क्या पूछेंगे उससे?
1: सर जब मैंने क्रश पिक्चर देखी थी सबसे दिमाग
0: बिल्कुल
1: में मेरे घूम रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या
0: हो
1: किसी
0: सकता है
1: एलियंस
0: सर।
1: में मिल सकता हूँ।
0: जी हाँ
1: तो तब से दिमाग में था कि अगर मिलेंगे तो क्या होगा।
0: जी
1: तब दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमते थे कि भाई एलियन तुम लोग जो किस दुनिया में रहते हो
0: जी
1: वो दुनिया हमारी दुनिया से क्या कितनी अलग है, तुम लोग जैसा दिखते हो क्या इस साइंस की देन है या तुम्हारा आनुवंशिक है,
0: ओके
1: क्या तुम्हारे दुनिया में भी ऐसी एंटरटेनमेंट है जैसे हमारे फिल्म देखते हैं हम लोग अपने टीवी देखते हैं, इतने सारे एंटरटेनमेंट है, क्या तुम्हारी दुनिया में ये सब है, ये सब जानने की इच्छा रहती है सर।
0: बिल्कुल
1: अब मैं
0: सही
1: निश्चित रूप से अगर ऐसा हुआ तो मैं पूछूंगा जरूर।
0: कि आपके यहाँ मोहम्मद रफी साहब हैं।
1: जी जी एंटरटेनमेंट सर बिल्कुल, रफी साहब हैं क्या, लता जी हैं क्या।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल, बहुत खूब बहुत खूब। दोस्तों चलिए फिर एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत हो जाए विद्युत जी की आवाज में ही।

0: हमारे सुनने वालों के लिए विद्धु जी क्या कहना चाहेंगे आप, उनको कोई संदेश दीजिए।
1: हाँ सर, मेरा जिंदगी को सर बहुत नजदीक से देखा है और ये पाया है कि सफलता और असफलता, सक्सेस एंड फेलियर,

0: जिंदगी के दो पहलू हैं सर। असफलता फेलियर जो है आपको अनुभव देती है, सफलता आपको खुशी देती है। तो आपको दोनों को ही समान रूप से लेंगे यदि हम, तो जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। फेलियर
1: बहुत बढ़िया, क्या बात कही।
0: का मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो सर ये तो मेरा सबसे यही कहना था कि फेलियर सक्सेस से, आप फेलियर से घबराए नहीं, सक्सेस को सिर पे ना चढ़ देंगे।
1: भाई वाह, क्या कहा है साहब, क्या कहा है। विदु जी आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे बातें की, आपके अनुभव का लाभ उठाया हमने, आपके गीत सुने, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद समीर जी, समीर बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं को मेरा पुनः नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे सुना।
2: बेहद शानदार गायकी, बेहद शानदार टैलेंट, एक और हसीन संगीत और गीत से भरी हुई शाम के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा एक नए टैलेंट के साथ। सुनना ना भूलिएगा।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आज के कलाकार का एक और नया एपिसोड लेकर दोस्तों मैं हाजिर हूँ आपके सामने। और आज जो प्रतिभा, जो टैलेंट, जो गायिका हमारे साथ हैं, वो हैं गीता मनी जी। बाकी मैं उन्हीं से पूछूंगा, वो ही अपने बारे में बताएंगे। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे सभी सुनने वालों को अपने बारे में बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं।
1: सबसे पहले समीर जी, आपको और रेडियो एसएम के सारे श्रोताओं को और नितिन जी को मेरा धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और मुझे श्री शिव शंकर जी ने रेफर किया, उनको भी मेरा धन्यवाद। मैं चेन्नई में रहती हूँ और मातृभाषा मेरा तमिल है, पर मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो पूरी सारा कुछ दिल्ली में था। मैं बैंक में के सर्विस करती थी अप टू 2000, और 2000 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, और उसके बाद करीब 8-9 साल मैं आई वाज वर्किंग एज अ स्पेशल एजुकेटर फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। और उसके बाद अभी पिछले 5-6 साल से मैं I'm again a student after all my working life. I'm learning relearning Carnatic music. This is the gist of myself. And I'm a very spiritual. What do you say? Aastik. मैं आस्तिक हूँ, तो इसीलिए मेरा पहला गाना भी ए मालिक तेरे बंदे हम फिल्म दो हाथ
0: दो जी। तो चलिए दोस्तों शुरू करें इस प्यारे से प्रोग्राम को और सुनते हैं ये गीत जो गीता जी ने हमारे लिए प्रिपेयर किए।

0: बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हुए गीता मैम, हमें अपने थोड़ी गायन के बारे में बताइए, किस तरह की, पहली बात तो ये कि आप कब से गा रही हैं, दूसरी बात किस तरीके के गीत या संगीत म्यूजिक आपको पसंद है। आपने बताया कि आप कर्नाटक म्यूजिक सीख रही हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कर्नाटक म्यूजिक ही सीख रही हैं तो कर्नाटक ही म्यूजिक पसंद होगा, हो सकता कोई दूसरा म्यूजिक भी पसंद हो, इसको ले जाइए।
1: हाँ जी, मेरे बचपन से ही मुझे गाने का शौक था, और वैसे मेरी गायकी जो है वो मेरे माताजी से है, जो क्लासिकल सिंगर हैं कर्नाटिक शैली के, और बचपन से ही हमारे घर में वो तानपुरा के साथ गाती थी और हमने वो सब देखा है, और हम मुझे भी उन्होंने सिखाया है। तो 12-13 साल तक आयु तक तो मैंने उनसे सीखा था कर्नाटिक म्यूजिक, वो भी दिल्ली में शास्त्रीय संगीत, पर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट पूरा चला गया। आई लॉस्ट माय इंटरेस्ट इन लर्निंग कर्नाटिक म्यूजिक, सो सिर्फ फिल्मी गीत है, भजन और गीत वगैरह जो भी गजल वगैरह होते थे ना वो मैं गाया करती थी। एंड आई वॉज, एज आई टोल्ड यू, आई वॉज वर्किंग इन द बैंक, तो बैंक में अब जो बैंक में होते थे सारे कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह, उनमें सारे सब में हम पार्टिसिपेट करते थे, बट द कंडीशन वॉज वी शुड नॉट सिंग एनी फिल्मी संगीत फॉर द कॉम्पिटिशन्स, दैट वॉज अ रिक्वायरमेंट। तो आई वॉज, माई म्यूजिक वॉज गोइंग ऑन बट आई वॉज नॉट, मैं कुछ सीखती नहीं थी प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में सीखती नहीं थी, पर गायन तो होता ही था। और एक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज, आई पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोग्राम कॉल्ड लहर लहर संगीत, जो दूरदर्शन में हुआ था। वो उस टाइम में सिर्फ दूरदर्शन ही था, कोई और चैनल्स थे ही नहीं, और दूरदर्शन में उसमें ये कंडीशन था कि आपको अपनी मातृभाषा को छोड़कर किसी और लैंग्वेज में गाना है, और आई वाज, आई मीन लॉट्स ऑफ पीपल हैड कम फॉर द ऑडिशन, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट नंबर, एंड मेरी भी सिलेक्शन हुई थी भगवान की दया से, एंड आई सैंग असमीज सॉन्ग। और एक और बात था कि उस टाइम ना हमारे वहाँ काफी बंगाली लोग रहते थे जहाँ हम दिल्ली में रहते थे, दो इट वॉज नॉट ए बंगाली एरिया, तो आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बंगाली म्यूजिक ग्रुप, तो आई वॉज ओनली नॉन बंगाली देयर, सो आई कुड लर्न सम बंगाली सॉन्ग्स एंड वी यूज्ड टू परफॉर्म इन ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। दिस इज माय you know music career, but then what happened after my 30 साल के बाद ना मैं बिल्कुल I shifted to south, और फिर again my bank was continuing, तो पर कोई मेरा गायन वायन से बहुत दूर ही रह गई, कुछ I wanted to learn पर कुछ हुआ नहीं। अपने उसके बाद भी वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद भी मैंने ट्राई किया मद्रास में टू चेन्नई में टू स्टार्ट लर्निंग कर्नाटिक म्यूजिक अगेन, पर मेरे से उन लोगों ने कहा यू आर वेरी ओल्ड, यू आर ऑलरेडी इन योर लेट 30s, तो तुम तो सीख, बिकॉज इट वॉज अ यूनिवर्स यू नो मद्रास म्यूजिक अकेडमी विच इज वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड, तो उन लोगों ने कहा नहीं इतने यू नो बड़े लोगों को तो हम सिखाते नहीं है, यू हैव टू गो टू अ प्राइवेट ट्यूटर। तो उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया, एंड वेरी रिसेंटली नाउ आई एम इन माय, व्हेन आई वाज इन माय मिड 50s आई अगेन स्टार्टेड रीलर्निंग कर्नाटिक म्यूजिक, दिस इज माय म्यूजिकल द जर्नी विद माय म्यूजिक।
0: वेरी वेल, बहुत खूब। तो जाहिर सी बात है बहुत हैपनिंग जर्नी रही है गीता मैम की, और बहुत बहुत सारा प्यारा सा म्यूजिक भी गीता मैम ने प्रोड्यूस किया, परफॉर्म किया और इंजॉय भी किया। तो चलिए हम लोग भी इंजॉय करें गीता जी के गाए हुए इन गीतों को, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत बढ़िया गीता मैम। चलिए आपको थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए, आपकी म्यूजिक के बारे में हमने बात कर ली, मुझे ये बताइएगा अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म होती तो क्या नाम रखते उसका आप और क्यों?
1: That's a very interesting question, sir. Life has been very nice to me. तो जैसे वो हमेशा एक जैसे ही नहीं रहा, तो ऊपर नीचे, तो मेरे को हमेशा लगता है या जैसे एक यात्रा होती है या सफर, या मोर अप्रोप्रिएटली लेकर ECG मशीन ECG चार्ट देखते हैं ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो दैट इज हाउ माई लाइफ हैज बीन, बट इट्स बीन वेरी एंजॉयबल, शानदार, यादगार, कुछ भी रख लो। सो
0: ओके, या तो यादगार या शानदार। हाँ
1: हाँ जी, कुछ डिपेंड्स।
0: ओके चलिए दोस्तों, शानदार यादगार इस फिल्म को देखते हैं, इस फिल्म का ही इस नामकरण करते हैं जो गीता जी पर आधारित है, उनकी जिंदगी पर आधारित है। चलिए बात तो म्यूजिक की है, सुनते हैं ये गीत और इसके बाद गीता जी से और बातचीत करते हैं।